मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। श्रोताओ, आज सोमवार है, शक सम्मत 1948 के ज्येष्ठ मास की

ग्यारहवीं तिथि तदनुसार 1 जून सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारी स्टूडियो घड़ी में भोर के 5:56 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है इस मंगल ध्वनि के साथ।

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। इस समय भोर के 6 बजने को हैं। अब पहले हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार

के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, ये भक्ति रचनाएं आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। हमारे मीटर्स हैं मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स, DRM 909 किलोहर्ट्स, FM 100.1 किलो मेगाहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आप हमारे प्रसारण सुन पा रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुनते हैं आज का चिंतन। विषय है मन की प्रसन्नता। वाचक स्वर जशपाल सिंह राठौड़ का।
1: भगवान महावीर ने कहा है, अपने आप को सदा प्रसन्न रखो। प्रसन्नचित्त व्यक्ति की जहाँ कार्य क्षमता बढ़ती है, वहीं उसकी आयु में भी वृद्धि होती है और बुद्धि विकसित होती है। प्रसन्नता का अर्थ मात्र सुख, हर्ष या खुशी नहीं है, वह सब पदार्थ सापेक्ष है। पदार्थ से जुड़े सुख, हर्ष आदि के साथ दुख और विषाद भी निश्चित होते हैं।

0: प्रसन्नता वस्तु निरपेक्ष होती है, वह चित्त की पवित्रता या स्वच्छता का पर्याय है और उसका उदय होता है राग द्वेष मुक्त चेतना में। राग द्वेष और मोह चेतना जितनी क्षीण या मंद होती है उतनी ही प्रखर होती है प्रसन्नता की अनुभूति। मानव मन की दो अवस्थाएं होती हैं, प्रफुल्लता या उदासीनता। ये उदासीनता मध्यस्थता या समता से भिन्न है, यह है निराशा की संतति है। खिले हुए और मुरझाए हुए फूल में जितना अंतर होता है उतना ही अंतर होता है प्रफुल्लता और उदासीनता में। प्रसन्नता चित्त का विस्तार है और उदासी चित्त की सिकुड़न। अधिकांश व्यक्तियों की यह धारणा है कि प्रसन्नतादायक परिस्थितियां हों, सुखद अनुकूल और सफलता भरे अवसर हों, तभी प्रसन्न हम रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। पर यह पूरा सत्य नहीं है। यदि चित्त को प्रसन्न रखने का स्वभाव बना लिया जाए तो अनेक समस्याओं से हम मुक्त रह सकते हैं। परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल, विवेकशील व्यक्ति सदा प्रसन्न ही रहते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा की स्थिति से वे बहुत ऊपर रहते हैं। सही माने में इंसान वो है जो हर हाल में हर परिस्थिति में खुश रहे, हंसमुख रहे, प्रसन्न रहे। बहुत से लोग बस दुखों के गीत गाते हैं, कोई भी पर्व हो खुशियों का वो दुख ही मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती है हरदम। मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती है हरदम जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं। मनोविज्ञान का निष्कर्ष है जो व्यक्ति प्रसन्नचित्त और नम्र होते हैं उनके हर काम में सफलता मिलती है। जिस तरह सागर की सतह पर उठने वाला हर बुलबुला उछलता हुआ दूर तक चला जाता है, वैसे ही मुस्कान का प्रभाव भी दूर तक चला जाता है। मुस्कुराहट मन आंगन घर आंगन को प्रसन्नता से भर देती है, मित्रता के संसार को समृद्ध करती है। भौतिक प्रतिस्पर्धाओं के इस युग में जिंदगी के तनावों दबावों को कम करने और आनंदित जीवन जीने का मंत्र है प्रसन्नता।
1: अभी आप आज का चिंतन सुन रहे थे। विषय था मन की प्रसन्नता, वाचक स्वर जशपाल सिंह राठौड़ का, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

हमारी आज की तीनों सभाओं में प्रसारित मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय 7:10 पर खेतीहरा वास्ते कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा बीजोपचार से लाभ सावधानी। दोपहर 12:50 पर ग्राम श्रोता सुना करते हैं खेत खलिहान कार्यक्रम, जिसमें आज सुनेंगे श्रोता जानकारी इस माह के कृषि कार्य। रोज की भांति चौपाल कार्यक्रम होगा शाम 7:00, जिसमें आज ग्रामीण श्रोता सुनेंगे जानकारी हमारे ग्रामीण खेत नरमा कपास में समसामयिक कार्य और दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे करें। मानस गान आप सुना करते हैं 7:20 पर। आज इस कार्यक्रम में कलाकार रहेंगे रंजना जोगलेकर और श्रीकांत परगावकर। आप सुनेंगे भाग संख्या 261। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल आप हमारे केंद्र से सुना करते हैं 9:10 पर। इस कार्यक्रम में आज नूर मोहम्मद लंगा और साथियों को आप सुन सकते हैं। प्रोग्राम फिल्म संगीत होगा 9:30 पर। प्रोग्राम सुप्रभात 7:30 पर। दिन में 10:00 फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा एक ही फनकार। कुछ और फिल्म रंग में आप सुनेंगे दिन में 11:00। 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। कुछ और फिल्मी रंग में दोपहर बाद 2:30, शाम 7:45 पर आप सुन सकते हैं। प्रोग्राम एक ही फिल्म से होगा रात 8:00।

0: दिन में 11 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत बहार झोंक माही थी। प्रोग्राम सराइकी होगा संध्या 6 बजे। युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम होगा शाम 5 बजे, जिसमें आज आओ जाने राजस्थान के पैरा खिलाड़ियों के बारे में, सभ्यता स्थल कालीबंगा का महत्व, युवा जीवन में तनाव से बचाव के उपाय, साइबर क्राइम से सुरक्षा और टुडे हिस्ट्री विषय पर जानकारी। बहनों के लिए उनका अपना कार्यक्रम महिला जगत होगा दोपहर 1:05 पर, जिसमें बहनें सुनेंगी जानकारी किश्तों पर खरीदारी कितनी सही, ग्लोबल पेरेंट्स डे विषय पर जानकारी, गर्मी में रखे विशेष ध्यान, व्यंजन विशेष भेलपुरी विषय पर जानकारी बहनें अपने कार्यक्रम में सुन सकती हैं। सुगम संगीत का कार्यक्रम 12:30 पर और रात 9:15 पर होगा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक, आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रात 10 बजे खेल जगत और 6:40 पर जिले की चिट्ठी लिखी जाएगी। अभी आप सुन रहे थे हमारी आज की तीनों सभाओं में प्रसारित मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 6:55 होने को हैं। अब पहले संस्कृत में समाचार, उसके बाद हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग लाइंग इत्यनेन सह चर्चां करिष्यति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च संबंधान इतोपि सुदृढीकरणाय वार्तालापः भविष्यति। वार्तालापावधौ म्यांमार भारतयोः मध्ये सुरक्षा संपर्कौ च समेत्य संपूर्णेषु विभिन्नेषु विषयेषु चर्चाः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः गतरात्रौ दिल्ल्याम् अतिथिगणमान्यैः सह मेलनं विहितवान्।

0: अवधेयं यत् म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः शनिवासरे भारतस्य पञ्चदिवसीय यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्तवान् आसीत्। म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतेः भारतस्य आधिकारिक यात्रायाः कारणात् उभयोः देशयोः मध्ये बहुपक्षीय सम्बन्धः इतोपि सुदृढः भविष्यति इत्यपेक्षास्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रकृति संरक्षणे स्थानीय समाह्वानानां निराकरणे अन्य सामाजिक कार्येषु च तेषां प्रेरक उपक्रमाणाम् उपलब्धीनां च विषये अनेकेषां नागरिकाणाम् उत्कृष्ट योगदानाय प्रशंसा कृता। आकाशवाण्याः स्वकीये मासिक कार्यक्रमे मन की बात इत्यनेन कार्यक्रमेण राष्ट्रम् अभिसंबोधयन् श्रीमोदी झारखण्ड राज्यस्य रांचीनगरे आयोजिते राष्ट्रिय वरिष्ठ एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धायां उदयोन्मुख क्रीडकानाम् उत्कृष्ट प्रदर्शनस्य प्रशंसाम् अकरोत्। प्रवर्तमानायाः उष्णतरङ्गस्य स्थितिं प्रति चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमन्त्रिणा जनान् अधिकृतान् उपदेशान् अनुसृत्य सुरक्षितं स्थातुं पूर्वसूचनानुसारं कार्यं च कर्तुम् उद्बुद्धवान्।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। पञ्चत्रिंशत् नूतनाः मन्त्रिणः मन्त्रिमंडले समाविष्टाः भविष्यन्ति। शपथ ग्रहणं प्रातः एकादशवादने लोकभवने भविष्यति। नूतनेन समावेशेन शुभेंदु प्रशासने महत्वपूर्णरूपेण संवर्धनं भविष्यति, येन मई मासस्य नवमे दिनांके पञ्चमन्त्रिभिः सह कार्यभारं स्वीकृतमासीत्। अनेन विस्तारेण राज्यमन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणां कुलसंख्या एकचत्वारिंशत् यावत् वर्धिता भविष्यति। निर्वाचनायोगेन दश राज्यानां चतुर्विंशतिः राज्यसभासदस्यानां द्विवार्षिक निर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य घोषणा अद्य क्रियते। भूतपूर्वः प्रधानमन्त्री एचडी देवगौड़ा, केन्द्रीयमन्त्रिणौ जॉर्ज कुरियन तथा रवनीतसिंहश्च तेषु सदस्येषु अन्तर्भवन्ति। आन्ध्रप्रदेशे, गुजराते तथा कर्णाटके प्रत्येकस्मिन् राज्ये चत्वारि चत्वारि आसनानि सन्ति। राजस्थाने तथा मध्यप्रदेशे प्रत्येकस्मिन् राज्ये त्रीणि त्रीणि आसनानि सन्ति। झारखण्डे द्वे आसने स्थः, मणिपुरे, मेघालये, अरुणाचलप्रदेशे च, मिजोरमे च प्रत्येकस्मिन् राज्ये एकैकम् आसनं रिक्तमस्ति। आयोगस्यानुसारं जूनमासस्य अष्टादशदिनांके मतदानं भविष्यति। मतगणना अपि तस्मिन्नेव दिने भविष्यति। महाराष्ट्रस्य, तमिलनाडुराज्यस्य, ओडिशाराज्यस्य च प्रत्येकस्य एकस्य आसनस्य कृते राज्यसभायाः उपनिर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य अपि आयोगेन घोषणा क्रियते। एतत् निर्वाचनमपि अग्रिममासस्य अष्टादशदिनांके भविष्यति। एकोननवतिवर्षीया प्रख्यातगायिकायाः सुमनकल्याणपुरस्य मुम्बईनगरे स्वनिवासस्थाने मृत्युः अभवत्। 50-अधिक-ऊनविंशतिशततमात् वर्षात् 70-अधिक-ऊनविंशतिशततमं वर्षं यावत् चलचित्रसङ्गीतस्य स्वर्णयुगे नैकासु भारतीयभाषासु कृतकार्याणां कृते एषा वयोवृद्धगायिका प्रसिद्धा आसीत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अन्तिमस्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं पञ्चस्तोभैः पराजित्य गतविजेतृदलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन अस्य वर्षस्य श्रृंखलापि विजिता इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों

0: को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्मी संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंधन तेगचिनलिंग मठ में अहर्त सारिपुत्र और अहर्त महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोदसुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मोगली वेंकटरामन ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ये इस वर्ष की प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। रिले स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भूमिका, ताहुरा, सेहनूर और नीरू की महिला टीम ने 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 3:38.07 के समय के साथ चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी बनाया। काजल, भावना, आरती और निपम ने 4x100 मीटर में 45.05 के समय के साथ रजत पदक जीता। पीयूष राज, सैयद सबीर, रंजीत कुमार और मोहम्मद अशफाक की पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया। ये चैंपियनशिप विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। विश्व चैंपियनशिप 5-9 अगस्त तक अमरीका के ओरेगन में यूजीन में आयोजित होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली ने नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in New Delhi last evening. The Myanmar president will also travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and side visits. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will launch the Khet Bachao Abhiyan from Raisen district in Madhya Pradesh today.

0: के तहत कीटनाशी जैविक कीटनाशी की निर्धारित मात्रा बीजा ने समान रूप से उगने में महत्वपूर्ण भूमिका निभावे, जबकि देश के बहुत सा किसान इसे जगह बीज उपचार से अनभिज्ञ है, बन पूरी जानकारी कोनी और ई प्रक्रिया ने वह अपनावे कोनी। अगर किसान ई प्रक्रिया ने अपनावे तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि आ एक वैज्ञानिक खेती के अंतर्गत जानकारी आ जाए और बीजा ने उपचारित करके ही बुआई करना चाहिए और बन बीज उपचार को महत्व जानना चाहिए। किसान भाइयों, बीज उपचार कीट और रोगों से छुटकारो पाने को एक आसान तरीको है, बहुत ही सस्तो तरीको है, बहुत ही कम खर्चीलो तरीको है। इन अंतर्गत दवाई की 2-10 ग्राम प्रति मिलीलीटर मात्रा प्रति किलो बीज के वास्ते पर्याप्त सर है। और इशु वातावरण पर कम से कम दुष्प्रभाव है, आ सबसे बड़ी बात है, पर्यावरण प्रदूषण को नहीं होनी। तो आपने किसान भाइया ने मामूली सी दवा लेगी और बीज उपचार करके और बुआई करना चाहिए, कोई भी फसल को बीज उपचार करे बे तो बहुत ही बढ़िया बात है। ई महत्व ने समझना चाहिए, ई बात ने जानना चाहिए। किसान भाइयों, वो देखी गई है कि किसान 70% खुद को उत्पादित बीज, चाहे वे कोई भी फसल बुआई करे, यानी खेत के वहाँ जकी फसल बीजी और बीच जकी जो अन्न प्राप्त हुए या जकी भी चीज़ प्राप्त हुई, फसल प्राप्त हुई, बिंगो ही बीज लेकर इस्तेमाल करे, जको के आम खास आप देखा कि वो उपचारित कौन ही होनी और किसान भाई बिना उपचारित भी कौन करे नहीं और सीधो ही खेत के वहाँ बुआई कर दिए, तो भी बाद के माँ फसल के माँ अनेक भांत का कीट, अनेक भांत का रोग जगह वे आ जाए। किसान भाइयों, आम खास देखी गई है कि बीज उपचार के वास्ते बीज उपचार ड्रम को प्रयोग करना हुए, जगह से बीज ने अच्छी तरह आप उपचारित कर सका, बीज के ऊपर दवाई की पतली परत बन जाए, तो ई बात ने समझना चाहिए किसान भैया ने, आ एक महत्वशाली बात है, जानकारी होनी चाहिए। बीज उपचार के टाइम शरीर ने पूरा ढकन वाला कपड़ा, यानी कि पूरा बाजू का कपड़ा, बाजूदार कपड़ा, कमीज, पूरी पैंट, चश्मा, दस्ताना, चेहरे पर मास्क आंगो जरूर प्रयोग करना चाहिए। खुले मुंह या खुले चेहरे से आपने वो बीज उपचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दवाइयां जो की है बांगो जहरीलो प्रभाव जो है वो अपने शरीर पर पड़ सके। अगर आप पूरा बाजू की कमीज, पूरी पैंट, चश्मा, दस्ताना पहन गए और फिर आप काम करेंगे तो कोई नुकसान को नहीं हुए नहीं। किसान भाइयों, बीज उपचार से बीजांगो अच्छो अंकुरण हुए, अच्छी बढ़वार, कीट और बीमारियां पर रोकथाम पहले दिन से शुरू हो जाए, परिणाम वो है कि स्वस्थ पौधा तैयार होएगा और उत्पादन अपनों बढ़ेगा। तो इन वास्ते किसान भाइयों, ये महत्व ने जानना चाहिए कि फसलों को बीज उपचार करके आप बुआई करा। ऐ सारी बातों ने ध्यान में रखता थका आपने देश की सरकार देशव्यापी अभियान चला के भी खरीफ फसलों को बीज उपचार करने को एक सुनिश्चित तरीको अपनावे और बहुत ही बढ़िया बात है, ईश्व अपने किसान भाइयों लाभ मिले। सगड़ा कीटनाशी उद्योग संगठन, आत्मा, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि क्लब, महिला संगठन, स्वयं सहायता समूह, पंचायती राज संस्थान, राज्य कृषि विश्वविद्यालय से अनुरोध है कि वह भी खुद ये अभियान ने सफल बनाने वास्ते सक्रिय भूमिका निभागी और अपने किसान भाइयों को पूरा सहयोग करें तो कितनी बढ़िया बात हो जाए। ईशु आम और खास किसान ने पूरी जानकारी हो जाए तो वह ये बात ने समझ लिया और पूरी तरह बीज ने उपचारित करके फिर खेती करे तो लाभ ज़्यादा मिले। और इन अलावा जरूरी बात आई कि किसानों ने चाहिए कि देश हित में, खुद के हित में और पूरे समाज के हित में इन बात ने जाने बे और बीज ने बिना उपचारित करे कतई खेत में न बुआई करे। इन काम खातर नज़दीक को कोई कृषि अधिकारी है, कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि अनुसंधान केंद्र है तो बठूँ, या कोई और संगठन है तो बठूँ भी आपने किसान जगह वह सहायता प्राप्त कर सके, लाभ ले सके। तो आप आता का ध्यान जरूर आपने किसान भाई रखेगा, पर अब है किसान भाइयों हूँ चालू, राम राम सा राम राम।
1: बीजोपचार के लाभ व सावधानी, इस विषय पर ग्रामीण श्रोता भी जानकारी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुनते हैं मुखराम परिहार की आवाज में ये लोक भजन।

मुकरम परिहार की आवाज़ में। अभी आपने ये लोक भजन सुना। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए कार्यक्रम सुने मानस गान। आज सुने भाग संख्या 261, मुख्य स्वर रंजना जोगलेकर और श्रीकांत परगांवकर का।

नवधा भक्ति का उपदेश देकर शबरी का उद्धार करने के पश्चात श्री राम तथा लक्ष्मण पंपासर नामक सरोवर की ओर अग्रसर हुए। गहन वन के अभेद्य रास्ते पार करते हुए अरण्य की शोभा अनायास ही मन को हर लेती है।

विशाल वृक्षों से लिपटी लताएं ऐसी मालूम होती हैं जैसे विभिन्न आकार प्रकार के तंबू तान दिए गए हों। वृक्ष रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए हैं। कोयल कूक रही है। ढेक और महोक पक्षी को देख ऊंट और खच्चर का बोध होता है। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो कामदेव की सेना में अश्वों की भूमिका निभा रहे हैं। पर्वतों के शिलाखंड, रथ और उनसे उत्पन्न निर्झर नगाड़ों का नाद उपस्थित करते हैं। ऐसी दृश्यावली में जहां कामदेव की सेना प्राणी मात्र के हृदय में काम का संचार करती है, गोस्वामी तुलसीदास ने कामी लोगों की विवशता तथा धीर और विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य दृढ़ करने वाली श्री राम भक्ति की महिमा का गान प्रस्तुत किया है।

मानस का नभी आपने सुना। आज आप सुन रहे थे भाग संख्या 261। मुख्य स्वर था रंजना जोगलेकर और श्रीकांत प्रगामकर का। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। कार्यक्रम सुनिए सुप्रभात। बात करेंगे आज भारतीय कृषि का महत्व विषय पर। श्रोताओं, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश के कुल निर्यात व्यापार में कृषि उत्पादित वस्तुओं का प्रतिशत काफी ज्यादा है। भारत देश में आवश्यक खाद्यान्न को लगभग सभी प्रकार की पूर्ति कृषि के द्वारा की जाती है। वर्तमान समय में भी एक बहुत बड़ी आबादी को कृषि के माध्यम से रोजगार प्राप्त है। भारतीय कृषि को देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि यही वो उपाय हैं जो देश को खुशहाल बनाता है। दोस्तों, कृषि उद्योग भारत की ज्यादातर जनता को रोजगार प्रदान करता है। भारत देश की 52% आबादी प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में अनेक उद्योगों में इस्तेमाल कर लाखों व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। इसके अलावा परिवहन कंपनियों को कृषि पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफी मुनाफा होता है। इस तरह भारतीय कृषि देश के निवासियों के लिए जीवन निर्वाह का काफी महत्वपूर्ण साधन है। भारतीय खाद्यान्न की जरूरत लगभग 100% पूर्ति भारतीय कृषि

द्वारा ही की जाती है। विश्व की सबसे बड़ी कृषि संबंधी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है भारतीय कृषि। भारत के कुल निर्यात व्यापार में कृषि वस्तुओं का प्रतिशत काफी ज्यादा रहता है। श्रोताओं, भारतीय किसानों की मेहनत की वजह से ही भारतीय कृषि ने इतनी सफलता पाई है।

आवाज़ किशोर कुमार और आशा भोंसले की फिल्म का नाम पराया धन। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त हरप्रीत।

दोस्तों, अंग्रेजी हुकूमत की वजह से भारत में बहुत बदलाव आए, लेकिन सबसे बड़ा जो बदलाव अंग्रेज हमें दे गए वह था रेल परिवहन यानी ट्रेन। आजादी के समय भारत में 37 रेलों की व्यवस्था थी। भारत सरकार ने सभी रेलों के सुधार के लिए इसे 17 क्षेत्रों में बांटा, जिससे कि सभी क्षेत्रों का सुधार समय से हो सके। ट्रेनें यानी रेलगाड़ी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहीं भी हमें जाना हो, मालगाड़ी के द्वारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना हो, ये सभी कार्य ट्रेन से ही संभव है। सामाजिक क्षेत्र में रेल का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो लोग गांव से बाहर दूर दराज के राज्यों में काम करने जाते हैं, जिससे शहर के साथ गांव का विकास रेलों के जरिए होने लगता है। श्रोताओं, दुनिया का सबसे बड़ा और विख्यात रेलवे नेटवर्क हमारे देश भारत में है। रेलवे की वजह से पूरा भारत देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हर वर्ग, जाति, समुदाय, क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करती है रेल। अगर रेल इतनी महत्वपूर्ण है, तो हमारा कर्तव्य है कि रेल में सफर के दौरान हम अपनी ट्रेन को, अपनी रेल को साफ सुथरा रखें।

दहलीज फिल्म में भी आपने महेंद्र कपूर और आशा को सुना। श्रोताओं, रीति रिवाज और परंपराएं हर किसी की व्यक्तिगत आस्था है। हमारे बहुत से रीति रिवाजों का आधार गहरा और विस्तृत है। हर रिवाज अपने साथ गहरे मतलब लिए हुए हैं। गीत संगीत हो या पूजा अर्चना, जो भी रीतियां हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाई हैं वो सालों से चली आ रही हैं। हर चीज के गहरे मायने हैं और अधिकतर के वैज्ञानिक आधार भी हैं। हाथ जोड़कर नमस्कार करने से सम्मान तो देते ही हैं, साथ में एक्यूप्रेशर भी हो जाता है। पैरों की हाथों की उंगलियों में अंगूठियां पहनना, कान छिदवाना, ये भी एक प्रकार का एक्यूप्रेशर या एक्यूपेंचर है। तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल करना, जिससे हमारे स्वास्थ्य में सुधार होता है। भोजन में मसाले पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं। प्रकृति की आराधना करना, पेड़ पौधे पंछी नदियां पहाड़ सभी को भगवान मानकर उनकी पूजा करने से हम प्रकृति की सुरक्षा करते हैं। हमारे तीज त्योहारों से मेल मिलाप बढ़ता है। लोग अपने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं। ये सभी रीति रिवाज खास है, क्योंकि ये यूं ही नहीं बनाए गए। इनके गहरे भावों के पीछे छिपा है रहस्य। समाज की भलाई के लिए ये रीति रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी हम पर पहुंचे हैं, इसलिए ये क्षेत्र की पहचान भी है। बदलते जमाने के साथ बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं और बदल भी रही हैं, लेकिन हम सभी कोशिश करें कि जो रीति रिवाज

हमारी पहचान है, जो हमारे समाज के लिए लाभदायक है, उसे हम संजोए रखें और जीवित रखें। सुप्रभात कार्यक्रम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल से आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त हरप्रीत।

प्यासा सावन फिल्म में अभी आपने सुरेश वाडकर और लता को सुना। गीत संतोष आनंद का था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओ, किसी को माफ कर देना ये बहुत बड़ा गुण है। क्षमा आपके लिए है, भले ही दूसरा व्यक्ति उसे मांगे या ना मांगे। अपनी भूल स्वीकार करे या ना स्वीकार करे, ये आपकी स्वास्थ्य, कुशलता और आने वाले जीवन के लिए है। जो लोग क्षमा छोड़ बदले की भावना रखते हैं, उनमें हृदय गति का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर या इसे रक्तचाप कहते हैं, उसका बढ़ जाना देखा जाता है। अपनी गलती स्वीकार कर लेना एक कला है। हमें इस बात का ख्याल रखने की कोशिश करनी चाहिए कि माफी हमारे भले के लिए है। चोट को दिल में रखना किसी और से ज्यादा अपने आप को तकलीफ पहुंचाना है। यह आपको अपने इस वर्तमान को पूरी तरह से जीने से रोकता है, जिसे आप शांति और कल की नकारात्मक यादों को भूल कर जी सकते हैं। इसलिए लोगों, शांति प्रिय व्यक्ति शांतिपूर्ण जीवन ही जीता है और गुस्सैल व्यक्ति एक क्रोधित दुनिया बनाता है। मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो।

आवाज़ें किशोर कुमार और लता की फिल्म का नाम रामपुर का लक्ष्मण। यह है प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। सुप्रभात कार्यक्रम से अपने दोस्त हरप्रीत को अनुमति दें और आप सुने ये गीत।

अभी आप कार्यक्रम सुप्रभात सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर, 8 बजे समाचार प्रभात और 8:30 पर खबरनामा। थोड़ी देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत

0: संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमा भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमा के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
5: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं और ये बुढ़ापे में

0: जो 3,000 रुपए के इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से है।
1: वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
3: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है। सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसोर अबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में पांचवां एफटीए, पश्चिम एशिया संकट के बीच दोगुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों की राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिंट लांग से बातचीत करेंगे। राज्यसभा के दो साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। मरकज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेगा। एक माह तवील इस मुहिम का मकसद कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल को फरोग देना है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी 35 वजीरों को अपनी काबीना में शामिल करेंगे। मारूफ गुलूकारा सुमन कल्याणपुर का मुंबई में इंतकाल हो गया। और क्रिकेट में अहमदाबाद में आईपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिंट आउलोंग से बातचीत करेंगे। ये बातचीत दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रिश्तों को मजीद मुस्तकम बनाने और ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे पर की जाएगी, जिसमें हिफाजत और राबते भी शामिल हैं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कल शाम नई दिल्ली में मेहमान शख्सियत से मुलाकात की थी। सदर ऊ मिंट आउलोंग ने म्यांमार भारत तजारत फोरम से भी खिताब किया। म्यांमार के सदर भारत के 5 रोजा दौरे पर हफ्ते के रोज बिहार के शहर गया पहुंचे थे। उनके हमरा एक आला सतह का वफद भी है, जिसमें बहुत से काबीना वजरा, सीनियर अफसरान और सरकर्दा ताजिर शामिल हैं। जनाब ऊ मिंट का सदर की हैसियत से भारत का ये पहला दौरा है। वो तिजारत और सनत की सरकर्दा शख्सियतों से बातचीत करेंगे और बहुत सी जगहों का दौरा करने के लिए कल मुंबई जाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।

0: म्यांमा के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वो कौमी राजधानी में राय पिथौरा सकाफती मरकज में लाइट एंड लोटस एक जागे हुए शख्स की बाकियात की नुमाइश से भी महजूज होंगे। इस नुमाइश में गौतम बुद्ध से वाबस्ता मुकदस पिपरावा बाकियात और नादिर अशिया को नुमाया किया जा रहा है। म्यांमा भारत की पड़ोसी मुकदम एक्ट ईस्ट और महासागर पॉलिसियों में शामिल है। उम्मीद है कि सदर ऊ मिन के भारत के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम और गहराई पैदा होगी। न्यूज डेस्क से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: राज्यसभा के 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट के लिए चुनाव होंगे। साबिक वजीर आजम और जेडीएस के रहनुमा एचडी देवेगौड़ा, मरकजी वुजरा और बीजेपी रहनुमा जॉर्ज कुरियन नीज रवनीत सिंह, राज्यसभा में अपोजिशन रहनुमा और कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे उन अरकान में शामिल हैं जिनके ओहदे की मुद्दत इस माह खत्म हो रही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए भी नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। ये सीटें महाराष्ट्र के नायब वजीर आला सुनेत्र अजीत पवार और तमिलनाडु से AIADMK मेंबर पार्लियामेंट CV शनमुगम के हाल ही में रियासती असेंबली में मुंतखब हो जाने की वजह से खाली हो गई थी। ओडिशा के BJD मेंबर पार्लियामेंट देवाशीष सामंतरे ने भी इस्तीफा दिया था। इन इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। पोलिंग इस माह की 18 तारीख को होगी और वोटों की गिनती उसी रोज की जाएगी। ज़िराअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेंगे। 1 महीना तवील यह मुहिम 30 जून तक जारी रहेगी। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: इस मुहिम का मकसद सरई जमीन का तहफ्फुज और किसानों में साइंसी तर्ज की ज़िराअत के बारे में बेतारी पैदा करना है। इस मुहिम में ज़िराअत से मुतालिक यूनिवर्सिटीज, ज़रई तहकीक की भारतीय काउंसिल, कृषि विज्ञान केंद्र और अवामी नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। किसानों को मिट्टी की जांच, कुदरती ज़िराअत, कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल और पानी की बचत के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें नकली कीमियावी खादों, बीजों और जरासीम कुश दवाओं की शिनाख्त भी बताई जाएगी। मुहिम के दौरान PM किसान सम्मान निधि, फसल बीमा स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी स्कीमों, नीज, खेतों में मशीनों से कामकाज किए जाने के फायदे से भी किसानों को वाकिफ कराया जाएगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
1: मगरबी बंगाल के वजीरा शुभेंदु अधिकारी आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। वजीरों की इस काउंसिल में 35 नए वजीर शामिल किए जाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब लोक भवन में दिन के 11 बजे मुनाकद होगी। शुभेंदु अधिकारी ने बुनियादी तौर पर 5 काबीना वजीरों के साथ 9 मई को हलफ लिया था। इस तौसी के बाद रियासती काबीना के वजीरों की तादाद 41 हो जाएगी, जो 294 रुकनी मगरबी बंगाल असेंबली का आईनी उसूल के तहत 15% है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मार्लिस आज नई दिल्ली में 2रे भारत ऑस्ट्रेलिया दिफाई वजरा डायलॉग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। वजारत दिफा ने बताया कि इस डायलॉग के दौरान बातचीत में दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक तआवुन को मुस्तहकम बनाने, फौजी इंटर ऑपरेबिलिटी और मुश्तरका तरक्की और मौकों की मुश्तरका पैदावार समेत सनती इश्तराक पर खास तवज्जो दी जाएगी। तवक्को है कि इस मीटिंग से दोतरफा दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे, स्ट्रेटेजिक एतमाद और बाहमी तआवुन में इजाफा होगा, भारत बहरुल काहिल खत्ते में इस्तेहकाम और सिक्योरिटी को फरोग हासिल होगा और दिफा और सिक्योरिटी मामलात में इश्तराक के नए मौकों को उजागर किया जाएगा। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मिसाली क़यादत में गुज़श्ता 12 साल में भारत में नुमाया तब्दीली रुनुमा हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उसूल इस तब्दीली का मुहर्रिक रहा है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों पर मरकूज मुतअद्दिद पहलुओं का आगाज और नफाज किया है। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़श्ता 12 साल में कलीदी शोबों में किए गए हुकूमत के इकदामात पर एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम किसानों की फलाह व बहबूद के लिए किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं।

0: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता 12 साल में किसानों की बहबूद और उनकी आमदनी में इजाफा करने के लिए मुतअद्दिद पहल कदमियों का आगाज किया है। इन इकदामात में सबसे नुमाया पीएम किसान स्कीम का आगाज रहा है, जो मुल्क में फलाह बहबूद से मुतालिक सबसे बड़ी पहलों में से एक है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बेहद सूदमंद है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
0: फसल बीमा योजना से तकरीबन 23 करोड़ किसानों 1,92,000 करोड़ रुपए मालियत के बीमा दावों से मुस्तफीद हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के छोटे और हाशिर बरादर किसानों को 3,000 रुपए की यकीनी माहाना पेंशन मिल रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के एक रिहायशी ने कहा कि मजकूरा स्कीम से किसानों को रोजगार में मदद मिलेगी।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से,
0: कम से कम इमदादी कीमत MSP किसानों के लिए लाइफलाइन बन गई है, क्योंकि हुकूमत ने MSP को पैदावार से मुतालिक अखराजात का 1.5 गुना कर दिया है। आकाशवाणी न्यूज से दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
3: मशहूर और मारूफ गुलकारा सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई में उनकी रिहायशगाह पर इंतकाल हो गया। वो 89 बरस की थी। उन्हें 1950 से 1970 की दहाई के दरमियान, जिसे फिल्म मौसीकी का सुनहरा दौर कहा जाता है, हिंदी, मराठी और बहुत सी दीगर भारतीय जबानों में उनकी गुलुकारी के सबब जाना जाता है। सुमन कल्याणपुर के बारे में कुछ तफसील।
4: सुमन कल्याणपुर 28 जनवरी साल 1937 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पैदा हुई थीं। उन्होंने हिंदी फिल्मों में पहली बार 1950 की दहाई के वस्त में गाना गाया था। उनकी आवाज लता मंगेशकर की आवाज से काफी मिलती जुलती थी। उन्होंने अपनी बेहद खूबसूरत आवाज में, दिल को छू लेने के अंदाज में तारीख साज मौसीकारों, गुलकारों, खासतौर पर मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गाने गाए। उनके मकबूल तरीन गानों में से कुछ गाने ये हैं।

0: महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे और सुनेत्र पवार, नीज मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में मौसीकी के मैदान में उनके तआवुन को उजागर किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला इंतजामिया, रिलीफ कमिश्नर दफ्तर और मुतालिका महकमों को हिदायत दी है कि वो रियासत के कई अजला में तूफान, बारिश और इंतहाई खराब मौसमी हालात पर मुसलसल नजर रखे, किसी भी हादसे की सूरत में फौरी इकदाम को यकीनी बनाए। कल राजधानी लखनऊ समेत कई अजला में मौसम में तब्दीली आई जिससे लोगों को शदीद गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसमियात महकमे ने रियासत के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसराइली फौज ने जुनूबी लबनान में दिफाई एतबार से अहम ब्यूफोर्ट कासल इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। इसराइल की दिफाई फौजों ने बताया कि ब्यूफोर्ट रिज और वादी अल सलूकी में फौजी दाखिल हुए और इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है जिनमें यह कहा गया है कि ईरान के साथ उनके मुजवजा माहदे में न्यूक्लियाई मामलात का जिक्र नहीं है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने बताया कि इस माहदे में वाजे किया गया है कि ईरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करना नहीं दिया जाएगा और इस माहदे में न्यूक्लियाई सरगर्मियों से मुतालिक तफसीली कवानीन शामिल हैं। क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। बीसीसीआई सदर मिथुन मन्हास और सेक्रेटरी देवजीत साइकिया ने आईपीएल 2026 की बाबकार ट्रॉफी आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को पेश की। तफसील हमारे नमा निगार से।
1: For a second time running, Royal Challengers Bengaluru back-to-back winners of the Tata IPL.
2: कल रात उस वक्त आरसीबी के हर फैन का ख्वाब पूरा हो गया जब विराट कोहली ने गेंद को हिट करके

0: बाउंड्री से बाहर पहुंचाकर टीम को जीत दिलाई। गुजरात टाइटंस की तरफ से दिए गए 156 रन के निशाने को आरसीबी ने विराट कोहली के 42 गेंद पर 75 रन की मदद से बआसानी हासिल कर लिया। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 8 विकेट के नुकसान पर महज 155 रन बनाए। गुजरात टाइटंस की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर सबसे ज्यादा 50 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कोनन हैदर।
1: आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे शदीद गर्मी के दौरान महफूज रहना, एहतियात, तैयारी और हिफाजत के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। ये मुजाकरा नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन से वाबस्ता डॉक्टर रूपाली मलिक के साथ किया जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं नीतिका त्यागी।
2: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 134वीं किस्त से खिताब करने से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम ने मन की बात में समाजी खिदमत, तालीम और माहौलियात के मैदान में नुमाया काम करने वालों की सताइश की, साथ ही अवाम से अच्छे कामों से जुड़ने की अपील की। एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन बने बहरिया के 27वें सरबराह, इस खबर को सभी अखबारों ने अहमियत के साथ पहले सफे पर शाई किया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की जगह ली है। पीएम स्वनिधि स्कीम के 6 साल मुकम्मल, ये खबर भी तमाम उर्दू खबरों में नुमाया है। और अखबारात में शाये होने वाली अहम बैनुल अक्वामी खबर है कि अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का मुश्तरका दिफाई प्लान, साल 2027 तक जेरियाब ड्रोन्स तैयार करने का ऐलान।
1: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिन आउलोंग से बातचीत करेंगे। राज्यसभा के 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। मरकज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेगा। 1 माह तवील इस मुहिम का मकसद कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल को फरोग देना है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी 35 वजीरों को अपनी काबीना में शामिल करेंगे। मारूफ गुलूकारा सुमन कल्याणपुर का मुंबई में इंतकाल हो गया। और क्रिकेट में अहमदाबाद में आईपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। कार्यक्रम समाचार तरंग आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिलीज किया जाएगा।

0: हमारा देश भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए दुनिया भर में विख्यात है। और जब राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ के किले, महल, मंदिर और ऐतिहासिक स्थल हमारी गौरवशाली परंपरा के जीवंत प्रतीक माने जाते हैं। इन्हीं धरोहरों की संरक्षण और इनके संवर्धन के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण योजनाएं और पहलें संचालित की जा रही हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोधा जी से। मनीष जी, आकाशवाणी स्टूडियो पधारने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
1: नमस्कार श्रोताओं।
0: मनीष जी, राजस्थान जो है विरासत की दृष्टि से बात करें तो बहुत ही समृद्ध राज्य माना जाता है और केंद्र सरकार यहाँ के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, स्मारक हैं, उनके संरक्षण में किस प्रकार का विजन लेकर काम कर रही है?
1: देखिए, राजस्थान देश के उन राज्यों में शामिल है कि जहाँ पे टूरिज्म प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जाए तो शायद एक समंदर नहीं है। बाकी सब चीजें जो एक पर्यटक को चाहिए देखने के लिए, वो चाहे रेगिस्तान हो, चाहे झीले हो, चाहे नदियां हो, चाहे किले हो, चाहे
0: प्राचीन
1: मंदिर हो, चाहे ग्रामीण जीवन का अनुभव लेना हो, चाहे हवेलियां हो, वो सब कुछ जो एक विदेशी पर्यटक या देशी पर्यटक कोई भी देखना चाहता है वो राजस्थान में मिल जाता है। उस दृष्टि से राजस्थान देश के पर्यटन नक्शे में बहुत बड़ा स्थान रखता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और अजमेर जैसे अभी प्रसाद योजना में शामिल है, जयपुर का जो परकोटा शहर है उसको यूनेस्को ने

0: विश्व धरोहर सूची में शामिल किया हुआ
1: जी
0: है। जयपुर में ही जो है जंतर मंतर और इस तरह के जो स्थल हैं विश्व धरोहर सूची में शामिल है यूनेस्को की।
1: झालावाड़ में चाहे गागरौन का
0: हाँ,
1: किला
0: गागरौन
1: है,
0: का
1: चाहे
0: किला है,
1: चित्तौड़गढ़ है,
0: ये
1: ये
0: सभी
1: सभी
0: चीजें विश्व विरासत
1: विश्व
0: सूची में शामिल हैं। तो
1: विरासत
0: राजस्थान उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और अच्छी बात यह भी है कि जो पर्यटन मंत्री हैं देश के, वो भी राजस्थान से जाते हैं, गजेंद्र सिंह
1: सूची
0: शेखावत। तो अलग अलग योजनाओं में, प्रसाद योजना हो, चाहे हृदय योजना हो, चाहे पर्यटन सर्किट्स, क्योंकि जयपुर आप देखिए कि जयपुर एक उस गोल्डन ट्रायंगल पे है, जयपुर आगरा और दिल्ली को मिलाकर के एक ट्रायंगल जो बनता है उसका एक यहाँ पर बना हुआ है। उसके अलावा पर्यटन मतलब धार्मिक सर्किट के इतिहास से भी देखा जाए तो राजस्थान के जितना भी ये जो आपका खाटू श्याम जी का इलाका है, सालासर बालाजी है, उसके अलावा बाकी जो आसपास के धार्मिक स्थल हैं, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पुष्कर है, पुष्कर को जो है विश्व मतलब देश में सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। पुष्कर के साथ अजमेर में दरगाह है, तो
1: जी
0: वो एक बहुत पूरा एक ऐसा बुके है अपने आप में कि जो एक पर्यटक को धार्मिक अनुभव भी देता है यदि वो धार्मिक स्थल पे धार्मिक यात्रा के हिसाब से आना चाहता है, और यदि वो मतलब घूमने के लिहाज से आना चाहता है तो उसकी दृष्टि से भी बहुत अच्छा अनुभव राजस्थान में पर्यटकों को और जो भी विदेश से जो लोग आना चाहते हैं उनको बहुत अच्छा।
1: सर, अभी आपने जिक्र किया प्रसाद योजना का, तो आपको क्या लगता है कि इसके माध्यम से धार्मिक स्थलों के संरक्षण में हमें क्या बदलाव देखने को मिल रहा है?
0: इसमें एक सरकार ने एक जो बहुत बड़ा काम किया है, जो भी इस तरह के धार्मिक स्थल थे जैसे पटना साहिब हो गया, कामाख्या मंदिर हो गया, इस तरह के जो पर्यटन स्थल थे उनके आसपास जो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, होना चाहिए, जो कि जो एक पर्यटक के लिए बहुत ज़रूरी है, जो वहाँ पे लोग आ रहे हैं उनके लिए एक ईजी पहुँच हो जाए, वहाँ पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम ना रहे, उनके स्टे की कोई दिक्कतें ना रहे, उसको लेकर के पूरा एक सारी योजना इसको लेकर के चलाई गई है। और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी दिख रहा है। जो अलग अलग कॉरिडोर्स बनाए गए, जैसे आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, महाकाल में जो इस तरह का कॉरिडोर बना है, कामाख्या मंदिर में कॉरिडोर बन रहा है, पुष्कर के लिए इसी तरह की बात चल रही है कि यहाँ भी इस तरह का एक पूरा विकसित किया जाएगा। तो इस तरह से वहाँ पे अब तक जो दिक्कतें आ रही थी, अतिक्रमण की वजह से दिक्कतें थी या और दूसरी वजहों से दिक्कत थी कि लोग आते थे, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था, और आप देखिए कि जितना भी जो हरिद्वार से ऊपर का इलाका है वहाँ की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर बना दी गई है पहले के मुकाबले। जितना भी मतलब आप चाहे चार धाम की यात्रा करने जाएंगे तो पहले जितना समय लगता था उसके मुकाबले उसको बहुत कम समय कर दिया गया है, वहाँ पर सड़कें बहुत बेहतर बना दी गई हैं। तो ये जो पूरा काम हो रहा है प्रसाद योजना के तहत अलग अलग सेगमेंट में, उसके तहत लोगों को मतलब एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी भी मिली है और जो उनका आने जाने का समय है वो भी बहुत बचा है, और वहाँ पे जो ठहरने की व्यवस्थाएं हैं, जो स्टे की व्यवस्थाएं हैं, वो भी पहले के मुकाबले काफी बेटर हुई
1: यानी
0: हैं।
1: ये जो धार्मिक हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं और विरासत स्थल हैं, उन तक लोगों की पहुंच को सुगम किया गया है, लोगों के लिए उन वहां पर सुविधाओं को और
0: बेहतर
1: बेहतर
0: बनाया
1: बनाया
0: गया है।
1: गया है।
0: जी,
1: अगर हम बात करें हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना यानी हृदय की, तो इसके तहत राजस्थान में कौन-कौन से काम किए गए हैं?
0: देखिए राजस्थान में मुख्य तौर पर अजमेर को इस योजना में शामिल किया गया था, और अजमेर में चूंकि दो बड़े पर धार्मिक स्थल हैं, एक तो पुष्कर है और दरगाह है, तो जिनमें कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो वहाँ पे इस तरह का काम, उसके डेवलपमेंट का काम उसके तहत चल रहा है हृदय योजना के तहत। और उसके अलावा देश के बाकी जो शहर हैं उनमें भी जो है, जैसे अमरावती है वहाँ पे इसको चुना गया है, द्वारका है गुजरात में उसको चुना गया है, गया है बिहार में, ये सब कुछ शहर हैं, एक वाराणसी है, बनारस जो कि खुद प्रधानमंत्री जी का
1: निर्वाचन क्षेत्र
0: निर्वाचन
1: है
0: क्षेत्र भी है,
1: जी।
0: मथुरा है, तो ये पुरी है उड़ीसा में। धार्मिक महत्व के जो ये जितने भी शहर हैं उनमें सरकार वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रही है, वहाँ पर उन जो है वहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि सैनिटेशन का प्रॉब्लम है वहाँ पे, पानी की दिक्कत है या सड़कें हैं या स्वच्छता की बात है, उन सारी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। और जैसे अजमेर में है लगभग काफ़ी काम इसके तहत हो रहा है, पुष्कर को डेवलपमेंट का काम चल रहा है, वहाँ पे पुष्कर कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, दरगाह स्थल के आसपास भी इस तरह का डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक काफ़ी एक अलग उद्देश्य के साथ शुरू की गई योजना है।
1: मनीष जी, अगर हम देखें पुराने स्थलों को, तो तब से अब तक चाहे शहरीकरण हो, चाहे आबादी का बढ़ना हो, बहुत से ऐसे कारण रहे हैं कि ये स्मारक जो है अतिक्रमण से भी घिर गए हैं और आबादी बढ़ने के साथ ही ये उनका जो

0: उन तक पहुंच है वो इतनी आसान नहीं रही है। तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार के लिए या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के लिए भी ये काम बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण में आमतौर पर किस तरह की चुनौतियां सामने आती हैं?
1: सबसे बड़ी चुनौती अतिक्रमण वाली। ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पहले जब ये जिस जमाने में कभी धार्मिक स्थल या ऐतिहासिक स्थल बनाए गए होंगे तब आबादी इतनी नहीं थी, पर धीरे धीरे समय के चक्र में चलते चलते आप लंबे समय तक तो वहां पर आसपास बहुत अतिक्रमण भी हो जाता है, व्यापार एक अलग तरह की अर्थव्यवस्था वहां पर डेवलप होती है। उन सब को हटाना, विस्थापित करना और बेहतर उसको बनाना वो बड़ा मुश्किल काम होता है। ये चीज हमने काशी में भी देखी, वहां भी जब जिस तरह की जब हटाए गए थे लोगों को तो बड़ा एक विरोध भी सामने आया था, उतना आसान नहीं था। ये अयोध्या में भी हुआ, बहुत दिक्कतें आई वहां पे भी। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है अपने आप में। अल्टीमेटली फायदा वहां के लोगों को होता है क्योंकि जब वो एक बेटर एक प्लेस बन जाएगा, वहां पे व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएंगी तो नेचुरल लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे वहां पे
0: और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा
1: मिलेगा। लेकिन एक बार को बहुत डीस्टैब्लिश होते हैं, मतलब
0: फॉर अ टाइम बीइंग उन्हें थोड़ी परेशानी,
1: दिक्कत होती है और ये बहुत बड़ी चुनौती है लोगों को इसके बारे में समझाना, क्योंकि लोग बरसों से वहां पर टिके हुए हैं, रहे हैं, उनको हटा करके दूसरी जगह यदि ले जा रहे हैं तो उनके लिए एक दिक्कत का काम होता है। तो ये एक चुनौती है इसमें निश्चित रूप से। दूसरी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि जो उसका स्वरूप है, मूल स्वरूप उस जगह का, उसका बनाए रखना, उसको बनाए रखना कि वो जिस उद्देश्य से बनाया गया किसी जमाने में हमारे फोर फादर्स ने या जब भी हमारी पूर्वजों ने जो उसको चीज को बनाया वो अपने मूल स्वरूप में बनी रहे, उसका जो अतिशय है, उसका जो एक जिसको कहते हैं कि आप उसको चमत्कार से जोड़ लीजिए या किसी भी तरह से जोड़ लीजिए, वो एक बना रहे उसका, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। ASI अच्छा काम करती है उसको मूल स्वरूप में बनाए रखने के लिए, पर उसके साथ साथ उसमें उसकी मरम्मत की जरूरत भी होती है, उसकी देखभाल की जरूरत भी होती है, पर वो इस ढंग से हो कि उसका मूल स्वरूप नष्ट ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो देखने आ रहे हैं लोग वो उसकी प्राचीनता देखने के लिए आ रहे हैं, उसको मतलब वो देखने नहीं आ रहे कि वहां पे आपने क्या नया बना दिया, नया कंस्ट्रक्शन देखने नहीं आता, जो भी आ रहा है वो देखने के लिए आ रहा है कि उस जमाने में क्या बनाया गया, तो उसको उसी स्वरूप में बनाए रखना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है।
0: सर, अगर राजस्थान के परिदृश्य की बात करें तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल राजस्थान में कई हैं, 8 यहाँ पर इस तरह की धरोहर हैं, तो उनके संरक्षण के लिए सरकार की ओर से क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
1: देखिए, इसमें यूनेस्को के कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के आधार पे ही यूनेस्को उसको विश्व धरोहर सूची में लेता है। जैसे जंतर मंतर है हमारे यहाँ से, या मान लीजिए जयपुर के परकोटा शहर को उन्होंने यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में लिया है, तो उसके लिए कुछ शर्तें रखी गई थी
0: जी,
1: कि आप जो इसका जो मूल स्वरूप है वो बनाए रखेंगे, जो इसका जैसे मान लीजिए जो परकोटे का बाजार है उसका फसाद जो है वो आप उसी स्वरूप में रहना चाहिए, उसी कलर में होना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे मामले, और वो स्थल के हिसाब से होता है कि जो जो भी स्थल है उसकी जो प्राचीनता है, उसका जो एक जो पुराना स्वरूप था वो उसको मेंटेन आप रखेंगे, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा, कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। इस तरह के बहुत सारे उसके पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पे वो लोग किसी भी स्थल के लिए उसको सूची में शामिल भी करते हैं और उसका रेगुलर मॉनिटरिंग भी करते हैं। जैसे अभी भी जयपुर शहर के लिए भी इस तरह की बात आई थी कि जयपुर शहर देखने के लिए मतलब वो
0: जो यूनेस्को की कमेटी ही उनका जायजा लेती है,
1: वो आके देखती है कि किस तरह का हम जो चीज सोच के गए थे वो हुई कि नहीं हुई, अब तक जो काम हम बता के गए थे वो उस तरह से हुए हैं कि नहीं है, तो एक वो पूरा चलता है। तो वो हमारे जितने भी स्थल हैं इस तरह के उनको रेगुलर वो मॉनिटरिंग उसकी यूनेस्को की जो कमेटी है उसके अंडर में रहते हैं, वो समय समय पर उसको आके देखती भी है। और ये ऐसे ही की जिम्मेदारी होती है और जो स्थानीय प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो जिन शर्तों के आधार पे वो बनाया गया, उसको जो धरोहर सूची में रखा गया वो बना रहे।
0: सर, अगर हम तकनीक की बात करें तो आजकल हर क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, तो अगर हम संग्रहालयों या और स्थलों की बात करें तो उनके भी नेचुरली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वर्चुअल टूर भी अवेलेबल हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि तकनीक का इस क्षेत्र में कितना उपयोग हो पा रहा है?
1: ये एक ऐसा सेक्टर है कि जो तकनीक के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यदि आप इसमें तकनीक ने जितना बड़ा रोल प्ले किया है उतना शायद मुझे नहीं लगता कि किसी सेक्टर में और में किया होगा, क्योंकि ब्लॉगर्स के जरिए, यूट्यूब, सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम आज देख पा रहे हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं थे, जो कहीं दुबी छुपी थी, वहाँ पे नए लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी वीडियोज़ डाल रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, और सबसे अच्छी बात कि बहुत सारे लोग मतलब वॉलंटरली ये बताते हैं कि आप यहाँ पर

0: से पहुंचें, यहाँ पर आप क्या ध्यान रखें, ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये अल्टीमेटली उन स्थलों को फायदा कर रही हैं।
1: जो हमारा निजी क्षेत्र है उसकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जा सकती है और स्थानीय समुदाय की भी इसमें बड़ी भूमिका है, तो उसे भी कैसे तय किया जा सकता है।
0: केंद्र सरकार ने एक अडॉप्ट मॉन्यूमेंट एक स्कीम शुरू की हुई थी, उसमें शायद अभी तक 21 के आसपास MOUs हुए हैं, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर एक मॉन्यूमेंट को अडॉप्ट करता है, उसका सारा देखभाल उसमें करता है। तो देशभर में करीबन अभी अभी शायद 21 के आसपास उस में MOUs सरकार के साथ हुए हैं। तो वो एक अच्छा तरीका है कि आप सिर्फ सरकार नहीं, प्राइवेट जो लोग हैं वो भी उस मॉन्यूमेंट को देखें और संभालें। इसके अलावा स्थानीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका इसीलिए होती है कि जो भी इस तरह के स्थल हैं वो अल्टीमेटली वहाँ की इकोनॉमी को बहुत इम्पैक्ट करते हैं, लोकल इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लोगों की वहाँ की जो आजीविका है उसको बढ़ाने में बहुत सहायता करते हैं। तो उनकी सहायता मिलना, वो उसको बना करके रखें, जैसे कि उदयपुर के लोगों ने अपने शहर को बहुत अच्छे ढंग से संजो के रखा हुआ है, तो इस तरह का एक इनिशिएटिव मुझे लगता है कि पूरे देश में अलग अलग समुदायों में होना चाहिए, अलग अलग शहरों में होना चाहिए, कि जो वहाँ के लोग हैं वो उसको बहुत अच्छे ढंग से संभाल के रखें, ताकि वो उनको भी फायदा दे और देश को तो फायदा दे।
1: मनीष जी, विरासत संरक्षण के कामों पर ये सारी जानकारी हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन अंत में हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आम नागरिक या स्थानीय समुदाय या युवा वर्ग किस तरीके से अपनी भागीदारी इसमें सुनिश्चित कर सकता है, इन सब श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा?
0: देखिए, मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि आपका शहर, आपकी जो भी विरासत है उसको यदि संभाल के नहीं रखेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी जड़ें हैं, तो जड़ें जब तक नहीं सींचेंगे तब तक पेड़ बड़ा नहीं हो सकता। तो इसको संभाल के रखिए, इसको संजो के रखिए, इसको देखने लोग आएंगे तो वो आपको भी फायदा देंगे और आपकी खुद की जो एक सांस्कृतिक पहचान है जो देश की, वो बनी रहेगी। कम से कम खुद की पहचान बनाए रखने के लिए इस विरासत को संभाल के रखिए।
1: मनीष जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, वाकई जो हमारी धरोहर है वो केवल अतीत की पहचान नहीं है बल्कि हमारे भविष्य की दिशा भी तय करती है। इनका संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग सहयोग रहा सुदर्शन नाहर, तकनीकी सहयोग सुप्रियो बैनर्जी, संपादन रितिका गुप्ता और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना।
2: अभी आप सुन रहे थे समाचार तरंग, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में मृदा स्वास्थ्य को बेहतर करने, खेती की लागत कम करने तथा रासायनिक खाद के संतुलित उपयोग के उद्देश्य से आज से खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी होगी, इसमें प्रदेश की 3 सीटें शामिल। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में आंधी बारिश का सिलसिला जारी, 4 जून तक हीट वेव से राहत के आसार। और विश्व दुग्ध दिवस आज, इस साल की थीम महिला किसानों का सम्मान रखी गई है। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। देश में आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से इसका शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग बढ़ाना, मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच किसानों को समय पर सलाह देना और पंचायत स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अभियान में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
4: अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड के असंतुलित उपयोग के कारण ये धरती माता बीमार हो रही है। इसकी

0: उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। इस अभियान के तहत आपके गांव में कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के विद्वान, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी गांव-गांव जाएंगे और हमारे खेत की आवश्यकता के हिसाब से संतुलित कितना खाद डालना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। नकली पेस्टिसाइड के बारे में बताएंगे कैसे पहचाने और अलग अलग योजनाओं के पात्र लाभार्थी भी चिन्हित किए जाएंगे।
1: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी की जा रही है। इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड में 2, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट शामिल है। राजस्थान में 3 सदस्यों भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत तथा कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। चुनाव के लिए नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब तक 1 आरए सहित 20 अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया है। वहीं 332 कार्मिकों को निलंबित किया गया है। साथ ही 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी कर भ्रष्टाचार के आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में लाया गया है। 17 कार्मिकों की पेंशन भी बंद की गई है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन उनकी प्राथमिकता है। आईआईटी रुड़की की ओर से जेईई एडवांस 2026 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। इस साल 56,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में क्वालिफाई किया है। दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने जेईई एडवांस में पहला स्थान हासिल किया है। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम बनाई है। बोर्ड ने कहा कि वह पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिससे हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने बताया कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और आईआईटी के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुष्कर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे पार्टी के राष्ट्रीय चिंतन शिविर के समापन समारोह में भाग लेंगे। इस दौरान वे राजस्थान और दिल्ली के जिलाध्यक्षों को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि 10 दिन का ये चिंतन शिविर पुष्कर में आयोजित किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश का मौसम बदला हुआ है। लगातार पिछले 2 दिनों से आंधी बारिश के दौर से तापमान में 6 डिग्री तक की गिरावट आई है। बाड़मेर और जैसलमेर को छोड़कर बाकी जगह अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे मापा गया। नागौर में तड़के 4 बजे से शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है। बारा और भीलवाड़ा में भी अलसुबह हल्की बारिश हुई। वहीं कल जैसलमेर में रेत का बवंडर उठा और दिन के समय ही अंधेरा छा गया। आसमान से दूर ही धूल का गुबार नजर आया। जिले के नाचना, सुल्ताना और मोहनगढ़ में बवंडर का काफी असर रहा। नाचना में ओले भी गिरे। वहीं मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर और हनुमानगढ़ के संगरिया सहित कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई है। सबसे ज्यादा 5.5 सेंटीमीटर बारिश कोटपुतली के शाहपुरा में दर्ज की गई। आंधी बारिश के प्रभाव से अगले 4-5 दिनों तक हीट वेव से राहत बनी रहने के आसार हैं। प्रदेश में आए प्रचंड तूफान और बारिश के कारण जयपुर विद्युत वितरण निगम के तंत्र को व्यापक क्षति पहुंची है। जयपुर और कोटा जोन में बड़ी संख्या में बिजली पोल, ट्रांसफार्मर और फीडर प्रभावित हुए। इनमें से 387 गांव में बिजली सप्लाई पर भी असर पड़ा है। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने बताया कि इनमें से 366 गांव में बिजली आपूर्ति बहाल की जा चुकी है। वहीं 21 गांव में सप्लाई सुचारू करने के लिए टीमें जुटी हुई हैं। आज विश्व दुग्ध दिवस है। ये दिन वैश्विक स्तर पर

खाद्य और पोषण के स्रोत के रूप में दूध के महत्व को पहचान देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम महिला किसानों का सम्मान रखी गई है। ये डेयरी उत्पादन सतत कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं की भूमिका को मान्यता देती है। विश्व दूध दिवस के मौके पर देश में अनेक स्थानों पर डेयरी और कृषि संस्थानों में सम्मान समारोह और जागरूकता शिविर रखे गए। उधर प्रदेश में पाली जिले के सादड़ी में विश्व दूध दिवस के मौके पर ऊँटनी के दूध का निःशुल्क वितरण कर इसके महत्व के बारे में बताया जा रहा है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। उन्होंने 1950 से 1970 के दशक में हिंदी, मराठी और अन्य कई भारतीय भाषाओं में फिल्मी गीत गाए। उन्होंने दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया और मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी के साथ भी सैकड़ों गीत गाए।

0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
1: प्रदेश में आज से बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी तथा मानव तस्करी के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान पुलिस का ये अभियान 30 जून तक संचालित होगा। इसके लिए हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अभियान के तहत होटलों, ढाबों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और फैक्ट्रियों में काम करने वाले बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार खिताब जीत लिया है। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में आरसीबी गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर चैंपियन बनी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास और बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया ने आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार को आईपीएल 2026 का खिताब दिया।
2: Six. It's back-to-back titles for RCB. They won it after 18 years. They win it in the 19th. RCB, RCB all the way.
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में मृदा स्वास्थ्य को बेहतर करने, खेती की लागत कम करने तथा रासायनिक खाद के संतुलित उपयोग के उद्देश्य से आज से खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। इसमें प्रदेश की 3 सीटें शामिल। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में आंधी बारिश का सिलसिला जारी। 4 जून तक हीटवेव से राहत के आसार। और विश्व दुग्ध दिवस आज, इस साल की थीम महिला किसानों का सम्मान रखी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मुरमंगल कार्यक्रम में लीजिए सुनिए नूर मोहम्मद लंगा के गाए लोकगीत।

मरुमंगल कार्यक्रम में अभी आप नूर मोहम्मद लंगा को सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। कार्यक्रम सुनिए फिल्म संगीत। गीत हम आपको सुनवा रहे हैं राजकुमार फिल्म से, आवाजें सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सुमन कल्याणपुर ने 1960 और 1970 के दशक में मशहूर गायिका लता मंगेशकर की आवाज के साथ एक भ्रम पैदा किया। वे एक बहुत अच्छी गायिका थी। उन्होंने हिंदी, मराठी, कन्नड़, गुजराती और बंगाली समेत लगभग 3000 से अधिक गीत गाए। उनका जन्म 28 जनवरी 1937 को हुआ और उनकी मृत्यु 31 मई 2026 को हुई। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी के साथ उनका ये युगल गीत। फिल्म का नाम राजकुमार, गीत के बोल हसरत जयपुरी के और संगीत शंकर जयकिशन का।

राजकुमार का ये गीत आपने सुना। आवाज़ें थी सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की। बात कर रहे थे हम सुमन कल्याणपुर, पार्श्व गायिका, जो कि अब हमारे बीच नहीं हैं। उनके गायन करियर की शुरुआत 1954 में फिल्म मंगू से हुई। इसी वर्ष उन्होंने दरवाजा फिल्म में तलत महमूद के साथ एक युगल गीत गाया। उन्होंने कई सदाबहार गीत गाए जिनमें अक्सर लोग उन्हें लता मंगेशकर का गीत समझ बैठते हैं। उनके सबसे लोकप्रिय गानों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, जो कि ब्रह्मचारी फिल्म से है, नाना करते प्यार फिल्म, जब जब

खिले का ये गीत जो कि आज भी लोगों की जुबान पर है। बहुत से गीत इन्होंने गाए अनेक भाषाओं में, कुछ मराठी गीत उनके यादगार रहे। उनका पहला सुपरहिट मराठी गीत बसंत प्रभु के संगीत निर्देशन में फिल्म पसंत आहे मुलगी के लिए गाया गया। महान गायक मोहम्मद रफी के साथ 140 से अधिक युगल गीत उन्होंने गाए, और जैसा कि हमने बताया कि 89 वर्ष की उम्र में 31 मई 2026 यानी बीते हुए कल लोखंडवाला आवास पर उनका निधन हो गया। बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उनका निधन हुआ। तो दोस्तों, गीत हम उन्हीं का आपको सुनवा देते हैं। जब जब फूल खिले फिल्म से मोहम्मद रफी के साथ उनका ये युगल गीत सुनिए।

श्रोताओं, सुमन कल्याणपुर का विवाह के पूर्व का नाम था सुमन हेमाती। उनका जन्म 28 जनवरी 1937 को अविभाजित भारत के ढाका, जो कि अब बांग्लादेश में हुआ था। उनके पिता शंकरअब हेमाती सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत थे। 1943 में उनका परिवार मुंबई आ गया। सुमन को बचपन से ही संगीत और कला का शौक था। उनकी आवाज की पहचान उनके पिता के दोस्त पंडित केशवराव भोले ने की थी। इसके बाद उन्होंने उस्ताद खान अब्दुल रहमान खान और मास्टर नबरंग जैसे दिग्गजों से

संगीत की बारीकियां सीखी। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की ही आवाज में ब्रह्मचारी फिल्म का गीत सुनिए।

0: सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
1: मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर को आप सुन रहे हैं ब्रह्मचारी फिल्म में।

श्रोताओ, सुमन कल्याणपुर ने जहां हिंदी फिल्मों में अपनी आवाज़ दी, वहीं उन्होंने मराठी संगीत में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने निम्बो नीचा जदा मागे, अरे संसार संसार संसार और रिमझिम झरती श्रवण धारा जैसे कि प्रसिद्ध मराठी गीतों को अपनी आवाज़ दी, जो आज भी महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय है। इसके अलावा उन्होंने असमिया, बंगाली और कन्नड़ जैसी भाषाओं में कई सदाबहार गीत रिकॉर्ड किए। सुमन कल्याणपुर को 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें महाराष्ट्र सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार और बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सुमन कल्याणपुर जी ने अपनी सुरीली आवाज के दम पर भारतीय संगीत प्रेमियों के दिलों में एक कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी है।

श्रोताओं, कला कभी मरती नहीं, और जो कलाकार अपनी कला से लोगों के दिलों में बसते हैं वे हमेशा अमर हो जाते हैं। सुमन कल्याणपुर जी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। श्रोताओं, इस

नश्वर संसार से भले ही उन्होंने विदा ले ली हो, लेकिन उनके गाए गीत पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में बसते रहेंगे। सितारे जमीन पर उतरते नहीं, बस कुछ समय के लिए रोशनी बिखेर कर लौट जाते हैं, अलविदा उस महान कलाकार को जिनकी कला हमेशा हमारे दिलों में धड़केगी।

सुमन कल्याणपुर पर यह विशेष कार्यक्रम आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत गढ़ से सुन रहे थे। गीत आप सुने मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। इस कार्यक्रम में गीतों का संकलन भाई नवीन सिसोदिया ने किया और मैं हूं आपका दोस्त हरप्रीत।

सुमन कल्याणपुर पर अभी आप विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आप सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम एफएम 100.1 किलो मेगाहर्ट्ज, डीआरएम मोड 909 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप हमारे प्रसारण सुन पा रहे हैं। हमारी स्टूडियो घड़ी में इस समय दिन के ठीक 10 बजे हैं। प्रोग्राम सुनिए एक ही फनकार। हमारे आज के फनकार हैं संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

प्रोग्राम आप सुन रहे हैं एक ही फनकार। हमारे आज के फनकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इनका संगीतबद्ध किया। अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज़, फिल्म का नाम मेरे हमदम मेरे दोस्त।

लता की आवाज, फिल्म का नाम प्रतिज्ञा। गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त हरप्रीत।

अनजान का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की, फिल्म का नाम आशा ज्योति।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: पारसमणि फिल्म में लता और मुकेश को सुनिए।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, फिल्म का नाम अनजाना। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीतबद्ध की यह फिल्मी नकमी प्रोग्राम एक ही फनकार के अंतर्गत।

लता की आवाज़ फिल्म का नाम एक दूजे के लिए। लता का साथ दिया है एसपी बाला सुब्रमण्यम ने। एक ही फनकार फिल्म में आप आज सुन रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीतबद्ध किए फिल्मी नक में।

0: अमर अकबर एंथोनी।
1: इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी को सुनिए।
0: एक ही फनकार कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीतबद्ध किए फिल्मी नक में।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

मोहम्मद रफ़ी के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम आज के फ़नकार यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। लीजिए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

डॉक्टर कमलेश अवस्थी, अनवर और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में फिल्म नसीब का ये नगमा भी आपने सुना, और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन, बेबी जानविका, गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवन रिणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम, दतरेंगी भाटावारा से छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल वर्मा, गांव खोखरावाली से इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी थी विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा और शगुन बाराशा ने। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर को। फिल्म का नाम है फ़र्ज़ और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। चक 5 MD पत्रोड़ा से मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर इंदु, डॉक्टर सुनील। चक 15 PS से सर्वजीत सिंह जोसन, सर्वजीत कौर जोसन, गुरमन जोसन, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल सिंह जोसन, रॉबिन सिंह जोशन। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू ने।

लीजिए अब सुनते हैं फिल्म ब्रह्मचारी का ये नगमा। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की है, गीत हसरत जयपुरी का है और संगीत शंकर जयकिशन का। और सुनना चाहा है आप सभी ने गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल देवांगन। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जसवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से इसी गीत को सुनना चाहा है शुभचंद्र बजाज ने, साहिल बजाज और बिट्ठा बजाज ने।

आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म मनचली का ये नगमा। गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और इस गीत के लिए चिट्ठी हमें लिख भेजी है मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, वड़िंगखेड़ा से पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बागड़िया, क्रियांश, योगेश, रजत और बेबी गरिमा बागड़िया, गांव न्योला रामपुरा से सुरेंद्र डिडन, सकीला, संदीप, अनवर, अकू बावरा, उच्च भट्टी बिलासपुरा छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या।

0: और अनु गोस्वामी ने।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा जी,

लीजिए, अब सुनते हैं फिल्म हसीना मान जाएगी का ये नगमा। आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की है, गीतकार अख्तर रोमानी है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना।

शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना और निवान शर्मा ने चंडीगढ़ से इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, तनुजा, ईशांत। व्यास कलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, संतोष शाही, राजश्री और गौरव शाही ने। नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, पवन सुथार, शंकर बिहारी, शिव कुमार, सोनू मिस्त्री, महेंद्र सुथार, कालू मिस्त्री। फिफाना नोहर से जय सिंह धामू, धर्मेंद्र सुथार और मदन सुथार ने।

कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिल्म कारवां का ये नगमा। गीत के बोल मजरूह के हैं, संगीत आर.डी. बर्मन का और आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है केसरी सिंहपुर से राजकुमार ठठई, कमल ठठई, मगनलाल सोमानी, बिंदा टेलर, मुंशी राम महिंद्रा, हीरा लाल गजरा, अशोक मित्तल, ताराचंद दाइमा, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युधव कड़वासरा, कुंदन जाखड़, लीलाधर स्वामी, किरसन मायल, किडूराम जोया, हनुमान सहारन और सुनील पाईवाला शर्मा। सादुल शहर से इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है राम कुमार रिवाड़ ने, चंद्रकला रिवाड़। गांव जोगीवाला श्रीगंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारण ने।

पत्थर के सनम, लीजिए सुनते हैं इस फिल्म का ये नगमा। शब्द रचना मजरूह की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की। और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है अनूपगढ़ से रमेश कुमार, पारुल, अंशुमन, समीर, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कमल चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान, पूजा परिहार, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन, गांव टोरोवाल जिला नवा शहर से गगनदीप, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी ने, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल, कुणाल मेहरा,

लता मंगेशकर के साथ लीजिए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी को। गीत के बोल मजरूह के हैं, संगीत आर डी बर्मन का और फिल्म का नाम है प्यार का मौसम। और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या बिजारनिया, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी, कृष्णा केवट, डोगर गांव से राष्ट्रपाल राधिका, नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तौशीव तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी, बठिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, फाजिलका पंजाब खेड़ा परिवार से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी,

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म राजकुमार का ये नगमा। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख, गांव ढाणी लाल खां, नोहर जावेद खां, अरमान खां, इमरान खां, सीमा बानो, विनोद खां, मुखराम जी, आशिफ खां, इयान खान, अरशद खान, अरमान खान, बिरमगाम गुजरात से अजीत भावासर, प्रमीला, प्रवीण सुल्ताना, ग्राम पंचायत बठेना पाटान जिला दुर्गा छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, बंटी बबली वर्मा, ऊपर कोड मोहल्ला चुखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनाबाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा, चंडीगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहा है राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु, रिहान खुराना।

मोहम्मद रफ़ी के गाए इसी गीत के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

आज दिन में 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सुगम संगीत में कुछ गजलों का आनंद आप लेंगे 12:30 पर। किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलियान 12:50 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे दिन में 1:00। 1:05 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। दोपहर 2:00 का समय रहेगा समाचार का। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और उर्दू सर्विस आप सुनेंगे दोपहर 3:00।

शाम 5 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम युववाणी का। कार्यक्रम विवरण आप सुन सकते हैं शाम को 6 बजे। 6:05 पर आप सुनेंगे सिराई की। हिंदी में प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा 6:30 का। जिले की चिट्ठी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:40 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे राजस्थानी में 6:45 पर। शाम 7 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम चौपाल का।

शाम 7:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। एक ही फिल्म से जानकारी और गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8 बजे। 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन। समाचार संध्या का समय रहेगा 8:45 का। 9:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। पब्लिक स्पीक, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर। रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल जगत। कुछ फिल्मी नगमे आप सुनेंगे 10:30 पर। और हिंदी में समाचार का समय रहेगा रात्रि 11 बजे का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रश्मि छाबड़ा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं फिल्म लोफर का ये नगमा। आवाज़ लता मंगेशकर की है, गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था लव इन टोक्यो, गीत हसरत जयपुरी का था और संगीत शंकर जयकिशन का। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिल्म दिल तेरा दीवाना का ये नगमा, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की हैं।

तीसरी मंजिल, लीजिए सुनते हैं इस फिल्म का ये नगमा। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की है, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी है और संगीतकार आर डी बर्मन।

0: सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की गाई कुछ गज़लें। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:50 हुए हैं। अब किसान भाई सुने कार्यक्रम खेत खलियान। जानकारी का विषय है इस माह के कृषि कार्य।
1: कार्यक्रम सुनेनिया सगले परिवारा ने भाई राजन का घना घना राम राम, मोकड़ा मोकड़ा राम राम। बात करें भाई लोगों का ई महीना आगे आने वाले टाइम में किसान भाई अपने खेती पाती में कि कुछ काम धंधा करने वाला है। तो आप फसल उत्पादन पर सबू पहले बात करें तो खरीफ फसला में खास तौरू दलहनी फसला में कातरा को प्रकोप ई टाइम पर आपने देखने मिले। कीट की जिकी लटाली अवस्था हुआ है वामे फसला ने काफ़ी नुकसान पहुँचा हुआ है। ये कीट का पतंगा है जिका पने नष्ट करण खातरा पा प्रकाश पास को उपयोग कर सका हाँ। जिन खातरा पा मानसून की पहली बिरखा होता ही खेत की मेड़ और चारागाह पर गैस की लालटेन या बल्लब लगा सका हाँ। और इंगे नीचे आपा 5% माटी को तेल पानी का मामिल आ गए कोई भी बड़ा बर्तन में रख सका हाँ। प्रकाश पर जिया ही कातरा का पतंगा आकर्षित होगा धीरे धीरे नीचे माटी के तेल में पड़ गए आप ही खत्म हो जाएगा। इनके अलावा रासायनिक अगर नियंत्रण की बात करें तो कातरा की छोटी अवस्था की लटा जिकी भी आपने फसल में दिखाई देवे तो बिंग खातरा पा क्यूनालफोस 1.5% या मिथाइल पैराथियन 2% गो 25 किलो धूड़ो प्रति हेक्टेयर की दरों फसल पर भुरकाव कर सके हैं। ज्वार की फसल में तना मक्खी कीट के नियंत्रण खातर अपने किसान भाई मानसून की पहली बिरखा होने के 1 हफ्ता के अंदर अंदर बीजांत करते हुए देरू बोयड़ी कोई भी फसल है बिंगमा फोरेट 10 जीकण या कार्बेफ्यूरोन 3 जीकण 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दरों डाल गए बिंग बाद बीजांत कर सके हैं। सिंचित मूंगफली की बीजांत खातर अपने किसान भाई सब उपयुक्त टाइम अब ओ जून का मिला गो पहले हफ्तों ले गए दूसरों हफ्तों है। मिट्टी जांच के आधार पर आपा आखिरी जुताइयों पहले प्रति हेक्टेयर 250 किलोग्राम जिप्सम मिलाते हुआ मूंगफली के खेत में आपा प्रति हेक्टेयर 60 किलो फास्फेट और 15 किलो नाइट्रोजन बुआई के पहले नायला में उड़ गए दे देवा। फास्फेट तत्व की पूर्ति आपा सिंगल सुपर फास्फेट द्वारा भी करा तो सब ज़्यादा उचित है। इनके अलावा आपा इनकी किस्मा की बात करें तो RG 382 जकिन आपा दुर्गा नाम भी जाना M13 गिरनार 2 RG 425 जिकिन है राज दुर्गा नाम भी आपा जाना ए काफ़ी फैलने वाली किस्मा है। और आगे सागे देखा तो RG 141 प्रताप मूंगफली 1 प्रताप मूंगफली 2 और प्रताप राज मूंगफली ए प्रमुख इनकी झुमका किस्मा है। मूंगफली में कई बार के गलगट रोग जिको है अपने किसान भाइयों ने काफ़ी परेशान करे जिका नापा कोलर रोट के नाम भी जाना और ई रोग के बचाव खातर किसान भाई बीजान तो पहले प्रति किलो बीज ने 3 ग्राम थायराम 75% WP या 2 ग्राम मैनकोजेबू उपचारित करें बिंग बाद ही अपने खेत में आपा बीजांत करा। रासायनिक फफूंद नाशी को आपा अगर कम प्रयोग करना चाहवा तो बीज ने के थायराम 1.5 ग्राम और ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम इंगे सागे राइजोबियम कल्चर 3 पैकेट की मात्रा है जिकी आपा मिला गए प्रति किलोग्राम बीज दर उपचारित कर गए फिर भी बीजांत आपा कर सका। जिका गमा थायराम की मात्रा 1.5 ग्राम ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम और राइजोबियम कल्चर का 3 पैकेट प्रति किलोग्राम बीज दरों आपा रला गए और बीहू बीज ने उपचारित कर सका हम। इंगे सागे ही बीजांत तो पहले ट्राइकोडर्मा 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दरों 500 किलोग्राम गोबर की खाद में मिला गा आपा जमीन गमा भी मिला सका हम। मूँगफली की फसल में बात करें तो दौड़ती लट की रोकथाम खातर आपने किसान भाई क्लोथियनिडिन 50 WDG 2 ग्राम दवाई प्रति किलो बीज की दरों उपचारित कर गए और उपचारित बीज ने 2 घंटा अच्छी तरीकों छाया में सुखा गए बिंग बाद बीजांत करें। या इनके अलावा अपने किसान भाई 80 किलो बीज में 2 लीटर क्यूनालफोस 25 EC या इमिडाक्लोप्रिड 20

200 ml 240 ml मिला के बीजांत करें। कपास के फसल में धूड़ती माखी, ग्रेवी विल, जेसिडिया, थ्रिप्स को नियंत्रण जब आपने करना हुआ है और आपने कीड़ा है जिसका साफ दिखाई देने लग जाए तो ये टाइम पर डाईमिथोइट 30 EC दवाई या मिथाइल डिमिटोन 25 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दरों आप छिड़काव कर सका हाँ। या इनके अलावा आप मिथाइल पैराथियन 2% इंगो 20 किलोग्राम धूड़ो प्रति हेक्टेयर की दरों आपके खेत में बुरकाव भी कर सका हाँ। बागबानी में बात करा तो आपने बेर में काट छाट आप ही टाइम पर कर सका हाँ। जो के है कि नई शाखा कोई बढ़न लाग रही तो भी मैं ज़्यादा संख्या में फूल और फल आ सके हैं। काटेड स्थान पर फफूंदनाशी जिको बोडोक्स मिश्रण है बिंगो भी आपा लेप करते वहाँ। नींबू वर्गीय फलदार जितना भी पौधा है भाई लोगों भी मैं फल गिरण की समस्या की रोकथाम खातर अपने किसान भाई प्लेनोफिक्स हार्मोन को 3 ml घोल 15 लीटर पानी का माँ मिला गए अच्छी तरीके में बना गए और फसल के ऊपर छिड़काव कर सके हैं। नींबू वर्गीय पौधा में पर्ण खनक या सिट्रसिला कीटा की रोकथाम खातर अपने किसान भाई एसीफेट 75 SP 1 ग्राम प्रति लीटर पानी या मिथाइल डिमेटोन 25 EC 1 ml प्रति लीटर पानी की दरों घोल बना गया बिंगो भी छिड़काव कर सके हैं। छायादार और शोभाकारी जिका भी अपना दरखत है बने लगाणु पहले आपने फलदार वृक्ष की तरह रेखांकन कर गए और अच्छी तरीका गड्ढा खुदाई को आपा काम कर लेवा। आंवला गमा बोरेक्स को 0.4% और जिंक सल्फेट को 0.2% को घोल बना गए छिड़काव आपा कर सका हाँ। बेर के पौधा में बिरखा गए शुरुआत होता ही खाद और उर्वरक आपा दे सका हाँ। नींबू गमा भाई लोगों कैंकर रोगों आपने किसान भाई कई बार परेशान रहे तो इंगू निजात पान खातर आपने किसान भाई बोडो मिश्रण या स्टेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम दवाई लगभग 4-5 लीटर पानी गमा घोल बना गए 20-25 दिन के अंतराल पर छिड़काव कर सके और कैंकर रोग को समाधान कर सके। अंगूर ने जल्दी पकाने खातर और डिंगी मिठास बढ़ाने खातर आपने किसान भाई एथीफोन 50 ml और बोरेक्स 100 ग्राम 100 लीटर पानी में घोल बना गए पाकने के बाद लगभग 15 दिन पहले छिड़काव करें और ई टाइम पर सिंचाई एजी की बा पूरी तरीकों बंद रखें। सब्जियां में आपा बात करें तो जिकी भी आपने बेल वाली सब्जियां हैं जिका गमा कद्दू बीटल है हाड़ा बीटल है आंगी रोकथाम खातर डाईमिथोइट 30 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दरों छिड़काव कर सका हम। कुकुर बिट्स है बैंगन है या टमाटर में कई बार के आपने माइट्स की समस्या बहुत देखने मिले और आंगी रोकथाम खातर आपने किसान भाई मिथाइल डिमेटोन 25 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दरों आपके खेत में छिड़काव कर सके है। इनके अलावा डाइकोफोल 18.5 EC दवाई लगभग 1.25 लीटर पानी का माँ मिला गए 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दरों भी छिड़काव कर सके हैं। बेल वाली सब्जियां में भाई लोगों आपा कई बार देखा फल माखी की रोकथाम खातर आपने किसान भाई मेलाथियन 50 EC या डाईमिथोइट 30 EC दवाई है जिकी 1 ml प्रति लीटर पानी गमा प्रति हेक्टेयर की दरों घोल बना के छिड़काव कर सके हैं और यूं हरा तेलिया और मोयला गोभी नियंत्रण काफ़ी हद तक हो जावे हैं। फूल गोभी की जिकी अगेती किस्म है अरली कुंवारी है इंगो 650 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दरों आपा नर्सरी में लगा के तैयार कर सका हाँ और बीजांगी बीजांत उठड़ी क्यारियां में आपा करा इंगे सागे थायराम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दरों भी आपा इन्हें उपचारित कर लेवा। भिंडी की खरीफ फसल की बीजांत आपा अब जून महीना में कर सका हाँ। भिंडी की अर्का अभय परभनी क्रांति पूसा मखमली पूसा सावनी अर्का अनामिका ऐसी किस्म है जकी को 10-12 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दरों आपा लगा गए बीजांत कर सका हाँ। बिरखा ऋतु खातर टमाटर की अविनाश 2 रूपाली पूसा संकर 1 पूसा संकर 2 कर्नाटक हाइब्रिड सोनाली पूसा 120 ऐ प्रमाणित किस्म है और आगो चयन आपने किसान भाई कर सके हैं। इनके अलावा भी आपा देखा तो आपने किसान भाइयों ने खेती पातियों संबंधित या आप गए खेती पाती के अलावा भी कोई भी जानकारी लेनी हो पशुधनु संबंधित जानकारी लेना हो तो आप अपने नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र पर जाके कृषि वैज्ञानिकों आपकी सारी बात समझ सका हाँ सारी जानकारी ले सका हाँ और कोई भी समस्या है तो भी वो समाधान आपा पा सका हाँ। तो आज सारी जानकारी अपने किसान भाई ध्यान रखें आज खातर ही तो ही।

0: अब भाई राजन ने आज्ञा दो, राम राम।
1: किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलियान। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने वाला है, कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

आकाशवाणी के प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये नियुक्तियां की है। विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हाइंग के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए चर्चा हुई। म्यांमा के राष्ट्रपति शनिवार को 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है। यह उनकी पहली भारत यात्रा है। म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। उनका व्यापार और उद्योग जगत के साथ बातचीत के लिए कल मुंबई जाने का कार्यक्रम है। देश में आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से इसका शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग बढ़ाना, मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच किसानों को समय पर सलाह देना और पंचायत स्तर पर जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अभियान में शामिल होने की अपील की है। व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। इनकी कीमतें 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपये से लेकर 53.5 रुपये तक बढ़ गई है। 19 किलोग्राम वाले ये सिलेंडर होटलों, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों में उपयोग लिए जाते हैं। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत के दाम अब 3,113.50 रुपये होंगे। व्यावसायिक एलपीजी की कीमतों में यह बढ़ोतरी अमेरिका और ईरान में संघर्ष के बीच पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा लागत में वृद्धि के मद्देनजर हुई है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जा रही है। इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। जून महीने को राष्ट्रीय एंटी मलेरिया माह के रूप में मनाया जाएगा। मानसून पूर्व मलेरिया और अन्य मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया है। इस दौरान पूरे महीने मच्छरों की रोकथाम और जन जागरूकता के विशेष कार्यक्रम होंगे। जयपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि जल भराव वाले स्थानों की पहचान कर सोर्स रिडक्शन कार्रवाई की जाएगी, साथ ही एंटी लार्वा उपाय किए जाएंगे। प्रदेश में साफ पीने के पानी की निर्बाध आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियानों से अब तक 15,000 से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से चलाए गए 6 विशेष अभियानों से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। इसके तहत 3,000 से ज़्यादा हैडपम्पों की मरम्मत और 1,600 से अधिक पाइपलाइन लीकेज दुरुस्त किए गए। इसमें विशेष टीमों ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों

0: पाइपलाइन नेटवर्क और जलापूर्ति व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण कर समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया। साथ ही विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 325 अवैध जल कनेक्शन हटाए। भरतपुर में आज दुपहिया वाहन चालकों को निशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। यातायात पुलिस ने भामाशाहों के सहयोग से ये वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान प्रमुख चौराहों पर वाहन चालकों को हेलमेट की उपयोगिता बताई गई, साथ ही यातायात नियमों की पालना करने की सीख दी गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। अब बहने सुने अपना कार्यक्रम महिला जगत।

हर खुशी अपनी वो हम पर वार देते हैं, बिन मांगे ही वो सब कुछ दे देते हैं। थक जाते हैं कमाते कमाते दुनिया में सब, पर एक पिता है जो कभी थकान नहीं देखते हैं। चोट हमें लगती है और रोती माँ है, ऐसे निस्वार्थ प्यार की कोई सीमा कहाँ है। ढूंढते हैं लोग पत्थरों में भगवान को, मेरे घर में तो साक्षात भगवान रहते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महिला जगत और मैं हूँ आपकी सखी दिव्या मुद्गल। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उन दो अनमोल हस्तियों से जिसके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है, हमारे माता पिता। हर वर्ष मनाया जाने वाला ग्लोबल पेरेंट्स डे हमें ये अवसर देता है कि हम अपने माता पिता के प्रेम, त्याग और समर्पण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकें। बहनों, माता पिता हमारे जीवन की वो नींव हैं जिन पर हमारे सपनों का पूरा महल खड़ा होता है। वे हमारी पहली पाठशाला हैं, पहले शिक्षक और सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं। उनकी दुआओं में वो ताकत होती है जो जीवन की कठिन से कठिन राह को भी आसान बना देती है। माँ की ममता और पिता का विश्वास, यही है जीवन का सबसे सुंदर एहसास। माँ वो रिश्ता है जो बिना कहे हमारी हर बात समझ लेती है, हमारे हर दर्द को अपना दर्द बना लेती है। माँ की दुआ वक्त तो क्या, किस्मत भी बदल सकती है, लेकिन बहनों, जीवन की राहों पर हमें मजबूत बनाने में पिता की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। पिता का स्नेह भले ही कम शब्दों में दिखाई दे, लेकिन उनकी हर मेहनत और हर संघर्ष अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए होता है। आइए अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जो माता पिता को ईश्वर का स्वरूप मानकर उन्हें श्रद्धा अर्पित करता है।

बहनों, कितना सुंदर संदेश देता है ये गीत। वास्तव में माता पिता धरती पर भगवान का ही रूप है। उनका सम्मान और सेवा करना हम सभी का पहला कर्तव्य होना चाहिए। पिता वो छत है जो धूप, बारिश और आंधियों से अपने परिवार की रक्षा करते हैं। बहनों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने माता पिता के साथ समय बिताना भूल जाते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खुशी हमारी सफलता नहीं बल्कि हमारा साथ और हमारा प्यार होता है। जिस घर में माँ बाप मुस्कुराते हैं, वहाँ खुशियाँ खुद रास्ता ढूंढ लेती हैं। बहनों, आज का ये दिन केवल एक दिन नहीं है बल्कि अपने माता पिता के प्रति प्रेम, सम्मान और आभार व्यक्त करने का एक सुंदर अवसर है। आज यदि संभव हो तो अपने माता पिता के साथ कुछ समय बिताइए, उनसे दिल खोल कर बात कीजिए और उन्हें ये एहसास दिलाइए कि वे आपके जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। माता पिता का साथ किसी दौलत से कम नहीं, उनकी दुआ किसी इबादत से कम नहीं। माता पिता ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी दुनिया उसके माता पिता से ही शुरू होती है। उनके निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती। बच्चों के सुरक्षित भविष्य और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने में माता पिता की भूमिका सबसे अहम होती है। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए और उन्हें भरपूर प्यार दीजिए, क्योंकि वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। माता पिता का प्यार वो अनमोल उपहार है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। तो आइए सुनते हैं अभी अगला सदाबहार गीत।

ज़रूरतें पूरी करना समझदारी है, लेकिन इच्छाओं के पीछे भागना कभी कभी भारी पड़ सकता है। अब हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय की जो आज के समय में लगभग हर घर से जुड़ा हुआ है, किश्तों पर खरीदारी कितना सही। बहनों, समय बदल रहा है और उसके साथ हमारी जीवन शैली भी। पहले लोग किसी चीज़ को खरीदने से पहले उसके लिए पैसे बचाते थे, लेकिन आज EMI यानी आसान मासिक किश्तों ने खरीदारी को बेहद सरल बना दिया है। मोबाइल फोन, TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बाइक, कार और यहाँ तक कि फर्नीचर भी अब आसानी से किश्तों पर उपलब्ध है। किश्तों पर खरीदारी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमें

एक साथ बड़ी रकम खर्च नहीं करनी पड़ती। जरूरत की वस्तु तुरंत मिल जाती है और भुगतान धीरे-धीरे किया जा सकता है। लेकिन हर सुविधा के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती है। कई बार आकर्षक ऑफर्स और विज्ञापनों को देखकर लोग ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें वास्तव में जरूरत नहीं होती। उस समय तो खरीदारी खुशी देती है, लेकिन बाद में हर महीने आने वाली किश्तें बजट पर असर डाल सकती हैं। कमाई सीमित हो सकती है, लेकिन इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले ये जरूर सोचें कि वो आपकी जरूरत है या सिर्फ एक इच्छा। बहनों, ईएमआई बुरी नहीं है, लेकिन बिना योजना के ली गई ईएमआई परेशानी का कारण बन सकती है। यदि आपकी आय स्थिर है और आप आसानी से किश्तों का भुगतान कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा विकल्प है। लेकिन यदि हर महीने किश्त भरने की चिंता होने लगे, तो समझिए कि कहीं न कहीं आर्थिक संतुलन बिगड़ रहा है। और अब वक्त है एक गीत का, तो सुनते हैं फिल्म रोटी का ये लोकप्रिय गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बहनों हम बात कर रहे थे आर्थिक संतुलन की, तो समझदारी केवल कमाने में नहीं बल्कि सही तरीके से खर्च करने में भी होती है। आजकल अभी खरीदें बाद में भुगतान करें जैसी सुविधाएं लोगों को काफ़ी आकर्षित करती हैं, लेकिन किसी भी निर्णय से पहले अपनी मासिक आय, खर्च और बचत का आकलन करना बेहद ज़रूरी है। बहनों हमारे बड़े बुजुर्गों का मानना है कि हमें अपनी आय का एक हिस्सा बचत के लिए भी ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थितियां आ सकती है जब बचत ही सबसे बड़ा सहारा बनती है। ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझना ही आर्थिक समझदारी है। खुशहाल जीवन का मतलब केवल अधिक सामान होना नहीं है बल्कि आर्थिक रूप से सुरक्षित होना भी है। जीवन एक खूबसूरत सफ़र है और इस सफ़र को आनंदमय बनाने के लिए आर्थिक संतुलन बेहद ज़रूरी है, तो वर्तमान भी सुरक्षित रहता है और भविष्य भी मजबूत बनता है। किश्तों पर खरीदारी सही है या गलत, इसका जवाब पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। खरीदारी से पहले खुद से 3 सवाल ज़रूर पूछें। क्या ये वस्तु मेरी ज़रूरत है? क्या मैं इसकी किश्तें आराम से भर सकती हूँ? क्या इससे मेरी बचत प्रभावित तो नहीं होगी? यदि इन सवालों के जवाब संतोषजनक हैं तो आपका निर्णय सही हो सकता है। किश्तों पर खरीदारी एक सुविधा है, लेकिन इसका उपयोग सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। ज़रूरतों को प्राथमिकता दें, बजट बनाकर चलें, बचत की आदत बनाए रखें और अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार ही निर्णय लें। और अब सुनिए ये खूबसूरत गीत।
3: Drop the needle.

धूप चाहे कितने भी तेज क्यों ना हो, सावधानी की छांव हमें सुरक्षित रखती है। गर्मी का मौसम अपने साथ तेज धूप, गर्म हवाएं और बढ़ता हुआ तापमान लेकर आता है। ऐसे में अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही डिहाइड्रेशन, लू और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती हैं। बहनों, कहते हैं कि स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर शरीर स्वस्थ होगा तभी हम अपने जीवन के हर सपने को पूरा कर पाएंगे। इसलिए गर्मी के मौसम में सबसे पहले अपने शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी देना ज़रूरी है। दिन भर में समय समय पर पानी पीते रहें। इसके अलावा नींबू पानी, छाछ, लस्सी, नारियल पानी और बेल का शरबत जैसे पेय पदार्थ शरीर को ठंडक पहुंचाने के साथ साथ ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। गर्मियों में खान पान का विशेष ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पानी पीना। इस मौसम में तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और आम जैसे मौसमी फलों का सेवन शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता और हमें तरोताज़ा बनाए रखता है। वहीं खुले में रखे खाद्य पदार्थ, बासी भोजन और कटे हुए फलों से बचना चाहिए, क्योंकि गर्मी में भोजन जल्दी खराब हो जाता है और कई बीमारियों का कारण बन सकता है। बहनों, गर्मियों में कपड़ों का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हल्के रंग और सूती कपड़े शरीर को आराम देते हैं और गर्मी से बचाने में मदद करते हैं। अब समय है एक और गीत का, जो जिंदगी को खुशी के साथ जीने का संदेश देता है।

हम चर्चा कर रहे थे गर्मी से बचाव की। बहनों, यदि किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़े तो सिर को टोपी, छाते या दुपट्टे से ढक कर रखें। धूप का चश्मा भी आँखों को तेज धूप से बचाने में सहायक होता है। दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच धूप सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए कोशिश करें कि इस समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया। बहनों, गर्मी के मौसम में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वे गर्मी के प्रभाव से जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। उन्हें समय समय पर पानी पिलाएं और अधिक देर तक धूप में रहने से बचाएं। यदि किसी व्यक्ति को अत्यधिक प्यास लगे, चक्कर आए, सिर दर्द हो या कमजोरी महसूस हो तो ये लू के लक्षण हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में उसे तुरंत छायादार स्थान पर ले जाएं और पानी या ओआरएस का घोल दें। गर्मी हमें ये भी सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में

0: धैर्य और सावधानी कितनी जरूरी होती है। थोड़ी सी समझदारी और कुछ अच्छी आदतें हमें स्वस्थ और सुरक्षित रख सकती हैं। गर्मी के मौसम में ठंडक और ताजगी बनाए रखने के लिए ठंडे या सामान्य पानी से स्नान करना भी एक अच्छा उपाय माना जाता है। नहाने से शरीर की थकान दूर होती है और त्वचा को राहत मिलती है। मन भी तरोताज़ा महसूस करता है और अब इसी खूबसूरत एहसास को सुरों में महसूस करने का समय आ गया है। आइए सुनते हैं ये लोकप्रिय गीत।
1: ठंडे ठंडे पानी।

0: पड़ोसियों से
1: क्या
0: झांके न खिड़कियों से,
1: दरवाजा खटखटाया लगता है कोई आया,
0: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब नहा रहे हैं।

बहनों, भारत की गलियों का स्वाद जितना रंग बिरंगा है उतना ही दिलचस्प भी। जब भी चटपटे और मज़ेदार व्यंजनों की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले ज़ुबान पर आता है, भेलपूरी। कुरकुरी, मुरमुरे, खट्टी मीठी चटनियाँ, ताज़ी सब्जियों की महक,

ऊपर से सेब का स्वाद, बस नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। भेलपूरी केवल एक व्यंजन नहीं, बल्कि भारतीय स्ट्रीट फूड संस्कृति की पहचान है। बहनों, चाहे समुद्र किनारे की शाम हो, किसी मेले की चहल पहल हो, या दोस्तों के साथ बिताए गए कुछ यादगार पल, भेलपूरी हर मौके को खास बना देती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये हर उम्र के लोगों को पसंद आती है। कहा जाता है कि भेलपूरी की शुरुआत मुंबई की चौपाटी से हुई थी। धीरे धीरे इसका स्वाद देश के कोने कोने तक पहुंच गया और आज ये भारत के सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड्स में गिनी जाती है। भेलपूरी में मुरमुरे, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, नींबू और विभिन्न चटनियों का एक ऐसा मेल होता है जो स्वाद का अनोखा अनुभव देता है। इसमें मिठास भी है, खट्टापन भी, तीखापन भी और कुरकुरापन भी। बहनों, जीवन भी कुछ भेलपूरी जैसा ही है। इसमें भी कई रंग, कई भावनाएं और कई अनुभव मिलकर एक खूबसूरत सफर बनाते हैं। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा सदाबहार गीत जो दोस्ती और जिंदगी की खूबसूरती को बखूबी बयान करता है। इस मधुर गीत का आनंद लीजिए।

बहनों, भेलपूरी की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण इसकी सादगी भी है। बहुत साधारण सामग्री से बनने वाला ये व्यंजन स्वाद के मामले में किसी बड़े व्यंजन से कम नहीं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भेलपूरी को अलग अलग अंदाज में बनाया जाता है। कहीं इसमें मूंगफली डाली जाती है, कहीं अनार के दाने और कहीं विशेष मसालों का प्रयोग किया जाता है। भेलपूरी हमें ये भी सिखाती है कि छोटी छोटी चीज़ें मिलकर भी कुछ बड़ा और शानदार बना सकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे समाज में हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है, भेलपूरी केवल स्वाद का नाम नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, सादगी और विविधता का भी प्रतीक है। इसमें शामिल हर सामग्री अपनी अलग पहचान रखती है, लेकिन जब सब एक साथ मिलती हैं तो एक नया और अनोखा स्वाद पैदा होता है। यही संदेश हमें जीवन में भी अपनाना चाहिए। जब हम सब मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और सहयोग करते हैं, तब समाज और भी सुंदर बन जाता है। तो अगली बार जब आपको कुछ हल्का, स्वादिष्ट और चटपटा खाने का मन हो तो भेलपूरी का स्वाद ज़रूर लीजिएगा और अपने प्रियजनों के साथ उस पल का आनंद भी उठाइएगा। तो बहनों, माता पिता का आशीर्वाद, सेहत का ख्याल और जीवन में सही फैसले, यही खुशहाल जीवन की पहचान है। इसी सोच के साथ आज का सफ़र यहीं तक। आपका साथ और प्यार हमें हमेशा प्रेरित करता है। मैं दिव्या आपसे विदा चाहूँगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी, नए गीतों और नई बातों के साथ। नमस्कार।

0: बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजे
1: गुड
0: हैं
1: आफ्टरनून,
0: अब।
1: दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President Aung San Suu Kyi are

0: वुमेन ऑनलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति वुमिन ऑनलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताएं, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में सपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,370

0: करोड़, राज्य जीएसटी का 45,143 करोड़ और एकीकृत जीएसटी का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। जीएसटी रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
2: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रुपये होगी। मुंबई में 43.50 रुपये की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067.50 रुपये होगी। कोलकाता में 53.50 रुपये की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255.50 रुपये होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपये होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
2: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
0: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमा के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था हमशक्ल। इन्हीं आवाज़ों में आइए सुनते हैं एक और नगमा। फिल्म का नाम है आया सावन झूम के।

लता मंगेशकर के साथ मुकेश को अभी आपने सुना। गीत मजरूह का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम था धरती कहे पुकार के। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिल्म पराया धन का ये नगमा। आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं, गीत आनंद बख्शी का और संगीत आर डी बर्मन का।

लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार को भी आपने सुना। फिल्म का नाम था गैम्बलर, गीतकार नीरज थे और संगीतकार एसडी बर्मन। लीजिए अब सुनते हैं जीने की राह फिल्म का ये नगमा। आवाज़ लता मंगेशकर की है, गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं। लीजिए अब सुनते हैं उर्दू सर्विस।

मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हो चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

19 तमगे जीते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर ऊ मिन आउं लाइंग ने आज नई दिल्ली में दो तरफा बातचीत की। इस बातचीत में दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी राबतों को मजीद मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज की गई। भारत और म्यांमार के दरमियान वसी तर शोबों में अच्छे ताल्लुकात हैं, जिनमें सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी शामिल हैं। म्यांमार के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। उनका कौमी राजधानी में राय पिथौरा सकाफती कॉम्प्लेक्स में एक नुमाइश देखने जाने का भी प्रोग्राम है। इस नुमाइश में गौतम बुद्ध से वाबस्ता पवित्र पिपरा व बाकयात को रखा गया है और इसके साथ साथ इससे वाबस्ता कुछ कदीमी चीज़ें भी नुमाइश के लिए रखी गई हैं। म्यांमार भारत की पड़ोस मुकदम मशरक़ी मुल्कों से रबते बढ़ाने और महासागर पॉलिसियों के सिलसिले में अहम मकाम रखता है। सदर ऊ मिन आउं लाइंग के भारत के दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान कसी रुखी ताल्लुकात के मजीद मुस्तहकम होने का इम्कान है। म्यांमार के सदर भारत के 5 रोज़ा दौरे के तहत हफ्ते के रोज़ बिहार के गया पहुँचे थे। म्यांमार के सदर कल मुंबई भी जाएंगे, जहाँ वो कारोबारियों और सनअतकारों से बातचीत करेंगे और मुख्तलिफ मकामात देखने जाएंगे। 10 रियासतों में राज्यसभा की 24 सीटों के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हर 2 साल बाद होने वाले इस चुनाव के तहत पोलिंग इस महीने की 18 तारीख को होगी। इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट शामिल है। साबिक वजीर आजम और जेडीएस के रहनुमा एच डी देवगौड़ा, मरकजी वजीर और बीजेपी के लीडर जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह, राज्यसभा में अपोजिशन के रहनुमा और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे उन अरकान में शामिल हैं जिनकी रुकनियत की मुद्दत इस महीने मुकम्मल हो रही है। मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की सरबराही वाली काबीना ने 35 नए वजीरों को शामिल करके तौसी की गई है। रियासत के गवर्नर आर एन रवि ने कोलकाता में लोक भवन में वजारती कौंसिल के नए अरकान को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तपस रॉय और शंकर घोष उन अरकान असेंबली में शामिल हैं जिन्हें काबीना वजीर की हैसियत से हलफ दिलाया गया है। नए वजीर रियासत के मुख्तलिफ खितों की नुमाइंदगी करते हैं और इसमें तजुर्बेकार अरकान असेंबली के साथ साथ पहली बार वजीर का ओहदा संभालने वाले अरकान भी शामिल हैं। सामान और खदमात टैक्स GST की मजमूई वसूलियाबी में गुज़श्ता महीने 3.2% का इजाफा हुआ और ये 1,94,000 करोड़ रुपये से तजावुज़ कर गई। सामान और खदमात की फराहमी में बेहतरी, नीज दरामदाज से होने वाली वसूलियाबी लगातार बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है। पिछले साल मई के महीने में GST की मजमूई वसूलियाबी 1,88,000 करोड़ रुपये थी। गुज़श्ता महीने अंदरून मुल्क लेन देन से मरकजी GST की वसूलियाबी 37,397 करोड़ रुपये रही, जबकि रियासती GST की मालियत 45,143 करोड़ रुपये रिकॉर्ड की गई। मरबूत GST 51,990 करोड़ रुपये रही। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ओमान जामे इकतसादी शराकतदारी माहिदा सेपा आज से नाफिज हो गया है। कॉमर्स और तिजारत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि यह मुआहदा दोनों मुल्कों के दरमियान इकतसादी और किलीदी राबतों को मुस्तहकम करेगा। एक कौमी रोजनामे में शाये एक मजमून में जनाब गोयल ने कहा कि इस मुआहदे से खासतौर से मुल्क के तलबा, दस्तकारों, खवातीन, किसानों, माहीगीरों और MSME इदारों को फ़ायदा होगा और इसके तहत नए बाजारों तक रसाई मुमकिन हो पाएगी, बरामदात को फरोग हासिल होगा, सरमायाकारी रागिब होगी और रोजगार के मौके पैदा होने में तेजी आएगी। भारत के ओमान के साथ गहरे इक्तसादी और अवाम से अवाम के दरमियान रबते हैं, जहां तकरीबन 7 लाख भारतीय आबाद हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि ओमान में आबाद भारतीय शहरी सालाना तकरीबन $2 अरब की रकम अपने घरों को भेजते हैं, जबकि 6,000 से ज्यादा भारतीय इदारे वहां काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों का तकरर किया गया है, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद भारत के चीफ जस्टिस समेत 37 हो गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और इंसाफ के वजीर

0: अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि सदर जमहूरिया ने भारत के चीफ जस्टिस के साथ सलाह मशवरे के बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की तकरीरी की है। वजारत कानून की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली को सुप्रीम कोर्ट में जज मुकर्रर किया गया है। अमेरिका ने खत्म हफ्ता पर ईरान के रडार और ड्रोन कंट्रोल मराकज पर हमले किए हैं, जिससे मगरबी एशिया खत्ते में फिर से कशीदगी बढ़ गई है। बैन अलाक्वामी आबी हदूद के ऊपर परवास करने वाले अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन को ईरान की जानिब से मार गिराए जाने के बाद अमेरिका ने यह फौजी कार्रवाई की है। ईरान ने जवाबी हमला करने की बात कबूल की है और उधर कुवैत ने कहा है कि उसके फिजाई दिफाई निज़ाम के जरिए मिज़ाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया जा रहा है। हालिया हमलों से जंगबंदी के कमज़ोर होने का इशारा मिलता है। कशीदगी में लगातार इजाफा हो रहा है क्योंकि इसराइल ने लितानी दरिया से भी आगे तक लबनान पर अपना कब्जा बढ़ा दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड माल्स आज नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया दिफाई वुजरा डायलॉग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगी। वजारत दिफा ने बताया है कि इस मुजाकरात के दौरान बातचीत में दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को मुस्तहकम बनाने, कौमी इंटरऑपरेबिलिटी और मुश्तरका तरक्की और मौके की मुश्तरका पैदावार समेत सनअती इश्तराक पर खास तवज्जो दी जाएगी। मलेशिया में आज से उन जाब्तों का इतलाक हो गया है जिनके तहत 16 साल से कम उम्र के लाखों बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स रखने पर पाबंदी होगी। इन जाब्तों के तहत तकरीबन 80 लाख सारिफीन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी उम्र की तस्दीक से मुतालिक निज़ाम का तरीक़ाकार मुकम्मल करना होगा। हुकूमत ने कहा है कि इस इकदाम का मकसद बच्चों को नुकसानदेह कंटेंट, साइबर बुलिंग और दीगर खतरात से तहफ्फुज़ फराहम करना है। हांगकांग में 20 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 10 तमगों समेत 19 तमगे जीते हैं। इस तरह भारत ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया और मजमू एतबार से दूसरे मकाम पर रहा। भारत को चांदी के 5 और कांसे के 4 तमगे भी मिले। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19 तमगे जीतने पर भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। इधर वियतनाम के दानांग में 17 साल तक की उम्र की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय खवातीन कुश्ती खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया और कुल 10 तमगे जीते, जिनमें सोने के 2, चांदी के 3 और कांसे के 5 तमगे शामिल हैं। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर ऊ मिन आउंग लाइन ने नई दिल्ली में दो तरफा बातचीत की है। भारत और ओमान के दरमियान जामे इकतसादी साझेदारी समझौता नाफिज हो गया है। अमेरिका ने ईरान पर रडार और ड्रोन कंट्रोल मराकज पर हमले किए हैं, जिससे मगरबी एशिया खत्ते में कशीदगी फिर से बढ़ गई है। मलेशिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है और हांगकांग में 20 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 10 तमगों समेत 19 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। सामईन, आज के प्रोग्राम में हमने नगमे लिए हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज में, क्योंकि कल ही 89 साल की उम्र में उनका मुंबई में इंतकाल हो गया। सुमन कल्याणपुर अपने ज़माने की मारूफ गुलकारा रही हैं, जिन्होंने सिर्फ हिंदी, मराठी बल्कि दूसरी जबानों में भी बहुत से नगमे गाए और वो नगमात आज भी अमर हैं।

मेरी सूरत तेरी आंखें, इस फिल्म में आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर के साथ मुकेश की आवाज में नगमा, जिसे मौसीकी सजाया था एसडी बर्मन ने। आज की मेरी पसंद प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुमन कल्याणपुर की गाई गीत। प्रोग्राम की अगली पेशकश मन मंदिर फिल्म का ये नगमा सुमन कल्याणपुर की आवाज में।

गोपी यानी सुनील दत्त और राधा यानी नूतन एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। एक दिन उनकी मोहब्बत रंग लाती है और वो शादी के पाक रिश्ते में बन जाते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो इस मोहब्बत को कभी नहीं भूलेंगे और प्यार के नगमे जन्म जन्म तक गुनगुनाते रहेंगे।

गोपी और राधा एक मोटरबोट में सफर कर रहे थे। अचानक गोपी ड्राइवर से कहता है कि मोटरबोट को आगे मत लेकर जाए क्योंकि आगे एक भंवर है। मगर ड्राइवर बताता है कि वहां कई साल पहले एक बांध बना दिया गया है। मगर गोपी का डर नहीं निकलता और वो ड्राइवर को एक किनारे पर ले जाने के लिए मजबूर कर देता है। किनारे पर उतरते ही उसे एक पुरानी हवेली नजर आती है और वो राधा को बताता है कि वो इस हवेली को पहचानता है। वो बताता है कि इस हवेली में बीबी जी रहा करती थीं, जिन्हें वो नाव में बिठाकर नदी के पार पहुंचाता था। राधा को गोपी की बातें अजीब सी लगती हैं और वो परेशान हो जाती है। गोपी हवेली में जाता है, वहां उसे एक चौकीदार मिलता है। गोपी चौकीदार से पूछता है कि इस गांव में एक गोरी नाम की लड़की रहती थी। चौकीदार बताता है कि वो एक मंदिर में दीवानगी की हालत में अपने महबूब गोपी का इंतजार कर रही है। चौकीदार ये भी बताता है कि कई बरस पहले नाव वाला गोपी और जिम्मेदार की बेटी बीबी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। गोपी गौरी के पास जाता है और गौरी गोपी की बाहों में दम तोड़ देती है।

गोपी का ये दूसरा जन्म है और उसे अपने पिछले जन्म की तमाम बातें और वाकयात अचानक याद आ जाते हैं। वो राधा को अपने पिछले जन्म की रुदात सुनाता है। गोपी राधा को बताता है कि इस गांव में एक सीधा साधा और भोला भाला नाव वाला रहता था जिसका नाम भी गोपी था। वो हर रोज गांव के जिम्मेदार की इकलौती बेटी राधा को अपनी नाव में बिठाकर नदी के दूसरे किनारे पर छोड़ता था ताकि वो कॉलेज जा सके। वापसी में राधा को वापस हवेली छोड़कर आता था। इसी गांव में एक बेहद चंचल और शरीर चरवाहिन रहती थी जिसका नाम था गौरी। गौरी गोपी से बेहद प्यार करती थी और उसके प्यार में हर वक्त झूमती गाती रहती थी।

जिम्मेदार यानी सुरेंद्र अपनी इकलौती बेटी राधा से बेहद प्यार करते हैं और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। राधा की सौतेली माँ यानी श्यामा भी राधा का बहुत ख्याल रखती है, इसके बावजूद कि वो उसकी सगी बेटी नहीं है। राधा की माँ का भाई राजू यानी प्राण शहर से गांव आता है और ये ऐलान करता है कि अब वो गांव में ही रहेगा और अपने बहनोई के कारोबार को संभालेगा, क्योंकि अब वो काफी बीमार रहने लगे हैं। जिम्मेदार साहब को कोई एतराज नहीं होता और वो सब कारोबार राजू के हवाले कर देते हैं। राजू एक शातिर और उबाश किस्म का इंसान है। राजू की नजर गौरी पर पड़ती है तो वो उसे हासिल करने के लिए बेचैन हो जाता है, मगर गौरी बहुत तेज और तर्रार लड़की है और राजू के काबू में नहीं आती। एक रोज राधा गोपी से कहती है कि उसके कॉलेज में लोकगीतों का मुकाबला होने जा रहा है, इसलिए वो उसे एक लोकगीत सिखा दे। गोपी दिलोजान से राधा को गीत सिखाने में लग जाता है।

राधा मुकाबले में अव्वल आती है और कालिश का हर फर्द उसकी तारीफ करता है, मगर वो कहती है इस तारीफ का असल हकदार गोपी है। राधा का एक हम जमात राम बाबू यानी देवन वर्मा राधा से बेहद प्यार करता है और इस प्यार का इजहार भी कर देता है, मगर राधा उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेती। मगर राम बाबू हिम्मत नहीं हारता और इसी जस्तुयु में लगा रहता है कि राधा उसके प्यार को कबूल कर ले। राधा वापसी में वो फूलों का हार जो उसे पहनाया गया था गोपी को पहना देती है। गोपी खुशी से पागल हो जाता है। गोपी गौरी को हार दिखाकर चढ़ाता है और गौरी कहती है कि एक दिन वो भी गौरी को शादी का हार जरूर पहनाएगा, मगर गोपी को भी गौरी में कोई इस तरह की दिलचस्पी नहीं है। हाँ, वो उसकी बेइंतहा कदर करता है। मंदिर की सालाना पूजा में गौरी और गोपी नाचते और गाते हैं।

एक रोज राधा गोपी का खाने का डिब्बा ले जाती है। गोपी उसका डिब्बा लेकर कॉलेज पहुंच जाता है, मगर राधा मना कर देती है और कहती है कि वो भी वही खाना खाएगी जो गोपी खाता है, और उसे वापस भेज देती है। राम बाबू गोपी से मिलता है और उसको एक खत देता है गोरी के लिए। सीधा साधा गोपी वो खत शाम को वापसी में राधा को देता है। राधा इस खत को पढ़कर परेशान हो जाती है और बदनामी का खौफ उस पर तारी हो जाता है। एक रोज वो खत उसकी माँ के हाथ लग जाता है और वो जिम्मेदार साहब और राजू को तमाम माजरा बता देती है। राजू राम बाबू की मरम्मत करने के इरादे से कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि राम बाबू एक बेहद दौलतमंद खानदान का लड़का है। दौलत के लालच में वो राम बाबू से वादा कर लेता है कि उसकी शादी राधा से करा देगा। एक मर्तबा राधा और गोपी तूफानी बारिश में फंस जाते हैं। वहां राधा गोपी से पूछती है कि वो उसे इतना ज्यादा क्यों पसंद करता है। गोपी मासूमियत से कहता है कि वो कुछ नहीं समझ पाता। राधा कहती है कि शायद ये किसी पिछले जन्म के रिश्ते का असर है, और वो ख्यालों की दुनिया में डूब जाते हैं।

राजू जिम्मेदार साहब और अपनी बहन को राम बाबू और राधा की शादी के लिए राजी कर लेता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। इसके बावजूद कि राधा इस शादी पर खुश नहीं है, मगर अपने वालिद की खुशी के आगे वो सर झुका देती है। शादी के रोज सब गोपी से एक गाने की फरमाइश करते हैं।

गौरी का पीछा नहीं छोड़ता और एक रोज रघु यानी मुखरी की मदद से गौरी को बेआबरू करने की कोशिश करता है, मगर तभी गोपी आ जाता है और राजू की खूब मरम्मत करता है। राजू इंतकाम लेने के लिए गुंडों से गोपी को पिटवाता है और वो बेहद जख्मी हो जाता है। गौरी दिन रात उसकी खिदमत में लग जाती है। एक रोज जिम्मेदार साहब के घर में एक टेलीग्राम आता है कि राधा का शौहर राम बाबू इस दुनियाए फानी से कूच कर गया। सब पर गम का पहाड़ टूट पड़ता है। जिम्मेदार साहब जीते जी मर जाते हैं और गोपी को लगता है कि जैसे वह पत्थर का हो गया हो। गोपी राधा की दिलजोई के लिए अक्सर हवेली आने लगता है और उसकी तसल्ली के लिए अपने गीतों का इस्तेमाल करता है।

रघु गौरी को बहकावा देता है कि गोपी उससे इसलिए शादी नहीं करता क्योंकि राधा और गोपी एक दूसरे से प्यार करते हैं। गौरी ये सुनकर गम गुस्से से पागल हो जाती है और गांव में दोनों को बदनाम कर देती है। जब गोपी

को इसका इल्म होता है तो वो गौरी को बहुत सख्त सुस्त सुनाता है और गांव को छोड़ देने का इरादा कर लेता है। जब गौरी उसे रोक नहीं पाती तो वह राधा के पास जाकर सारा माजरा बयान करती है। राधा गोपी को रोकने के लिए घर से निकल पड़ती है। राजू हवेली में गौरी पर एक बार फिर हमला करता है मगर वो उसके चंगुल से निकल जाती है। राजू को जब मालूम होता है कि राधा गोपी के पास गई है तो वो ये अफवाह उड़ा देता है कि राधा गोपी के साथ गांव छोड़कर जा रही है। गांव के लोग गोपी के दुश्मन हो जाते हैं और कश्तियों में उसका पीछा करने निकलते हैं। उधर गोपी और राधा ये फैसला करते हैं कि बदनामी से बचने के लिए मर जाना ही बेहतर है। इसलिए दोनों कश्ती में सवार होकर उस तरफ जाते हैं जहां एक भंवर है ताकि खुद को उस भंवर के हवाले करके बदनामी से बच सकें और वो भंवर में डूब जाते हैं। राधा और गोपी प्यार की अजमत की मिसाल अपने पीछे छोड़ जाते हैं। गौरी अपनी गलती पर बेहद तिलमिलाती है और गोपी के इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती है। मगर प्यार कभी फना नहीं होता। इसके बावजूद कि गोपी और राधा के जिस्म मौत के मुंह का निवाला बन गए मगर उनका प्यार इतना अजीम था कि उसे पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए कुदरत ने उन्हें फिर इस दुनिया में भेजा। मगर नाव चलाने वाले और जमींदार की बेटी के रूप में नहीं बल्कि शहर के मॉडर्न माहौल में रहने वाले गोपीनाथ और राधा की शक्ल में। और यूं गोपी और राधा का मिलन पाए तकमील तक पहुंच गया।

कहकशां प्रोग्राम में सामिन भी आप सुन रहे थे मिलन फिल्म की कहानी और नगमे, जिसे तरतीब दिया था जनाब अनवार रहमान ने, रावी थे इकबाल वारसी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। फिल्मी नगमों के प्रोग्राम के आगाज में हमने कुछ नगमे लिए हैं नरगिस दत्त की फिल्मों से, जिनका आज यौम पैदाइश है। नरगिस 1 जून 1929 को कलकत्ता में पैदा हुई और उन्होंने वहीं अपनी तालीम हासिल की। तकरीबन 51 साल की उम्र में 3 मई 1981 को बम्बई में इंतकाल हुआ और वहीं आपकी तदफीन अमल में आई।

इब्तदा में आपने 1935 से जो काम शुरू किया, जब आप सिर्फ 6 साल की थी, तलाश यार एक फिल्म आई थी उसमें इन्होंने काम शुरू किया, बल्कि कहना चाहिए कि वो आपकी एक इब्तदाई फिल्म थी। उसके बाद 1942 में तमन्ना आई, तमन्ना में काम किया, फिर तकबीर 1943 में आई जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, और उसके बाद तो फिर मानो कामयाबी के दरवाजे उन पर खुलते चले गए। आज के प्रोग्राम में हम आपको उन्हीं की फिल्मों के कुछ नगमे सुनवा रहे हैं। आज के प्रोग्राम की इब्तदा उन्हीं के नगमों से कर रहे हैं।

अंदाज के बाद आवारा, चोरी चोरी और बहुत सी सीढ़ी 420 ऐसी फिल्में उन्होंने दी कि जिन्हें देखकर नाज़रीन उनकी अदाकारी से बेइंतहा महज़ूज़ हुए। हम आज के इस प्रोग्राम में उन्हें खिराज अकीदत कर रहे हैं, उन्हीं पर फिल्माए कुछ नगमों के साथ।

नरगिस दत्त की अदाकारी का जब जब जिक्र होगा तब तब एक फिल्म और आवारा का जिक्र जरूर आएगा। आवारा जो एक क्राइम बेस्ड स्टोरी फिल्म थी, इसने भी नरगिस को बहुत शोहरत अता की। नरगिस ने इसमें अपने फन का जादू जगाया और इस फिल्म को कहा जाए कामयाब बना दिया।

और दोस्तों, हिंदुस्तानी फिल्मों में खूबसूरत और लाजवाब अदाकारी करने वाली ये अदाकारा 3 मई 1981 को महज 51 साल की उम्र में बॉम्बे में इंतकाल कर गईं और अपने पीछे छोड़ गईं वो नगमे, वो फिल्में, वो अदाकारी कि हम जब भी वो फिल्में देखेंगे उनकी अदाकारी हमारे जहनों में जिंदा और ताबिंदा रहेगी।

और सभी ये तो रही बात अदाकारा नरगिस की। अब जिक्र करते हैं गुलूकारा सुमन कल्याणपुर का, जिनका कल 89 साल की उम्र में मुंबई में इंतकाल हो गया। आज के प्रोग्राम में कुछ नगमे सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में आप तमाम सामयीन के लिए। प्रोग्राम की ये उनकी आवाज़ में जो पहला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं वो है जिस नगमे के लिए सन 1975 में उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। फिल्म थी रेशम की डोरी।

और समली ये सुनी मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर को फिल्म है दिल एक मंदिर, नगमानिकार हर्ष जयपुरी, मौसीकार शंकर जय किशन।

जब जब फूल खिले, इस फिल्म का नाम आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। नगमा निगार थे आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और समझ लीजिए, अब सुनिए सुमन कल्याणपुर के साथ एक मरतबा फिर मोहम्मद रफी को फिल्म है फर्ज, नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: अब सुनिए पहली तारीख फिल्म का नगमा किशोर कुमार की आवाज में, मौसीकार हैं सुधीर फड़के।
1: दिन है सुहाना आज पहली तारीख है, दिन है सुहाना आज पहली तारीख है, जमाना आज पहली तारीख है, पहली तारीख है।

घर जरा जल्दी से आना, जल्दी से आना। शाम को पिया जी हमें सिनेमा दिखाना, हमें सिनेमा दिखाना। करो ना बहाना बहाना बहाना, करो ना बहाना आज पहले।

0: बाबू लाला जी की जान आज आया है काबू आया है काबू।
1: वो पैसा जरा लाना वो पैसा जरा लाना लाना लाना
0: वो पैसा जरा लाना आज पहली तारी

मुझे न सुनाना था, सुनाना सुनाना मुझे न सुनाना, आज पहली तारीख है जमाना, आज पहली तारीख है, पहली तारीख है जी, पहली तारीख है। दर के सामने आए मेहमान है, बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है, बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को बचाना, आज पहली तारीख है, जमाना आज पहली तारीख है, पहली तारीख है जी, पहली तारीख है।

देखो गम है कि पैसों से हाथ से, अरे लुटेगा खजाना खजाना खजाना, टूटेगा खजाना आज पहली।

0: हसीना मान जाएगी, इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ों में। नगमा निगार थे अख्तर रुमानी, मौसीकार कल्याण जी आनंद जी। इस नगमे के साथ ही आज का फिल्म मौसीकी का प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मैं आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। शाम के 4:50 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद आजम खान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी म्यांमार के सदर ओ मिन ऑनलाइन ने नई दिल्ली में दो तरफा बातचीत की है। भारत और ओमान के दरमियान जामे इकतसादी साझेदारी समझौता नाफिज हो गया है। अमेरिका ने ईरान में राडार और ड्रोन कंट्रोल मराकज पर हमले किए हैं, जिससे मगरबी एशिया खत्े में कशीदगी फिर से बढ़ गई है। मलेशिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी आयद कर दी है और हांगकांग में 20 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 10 तमगों समेत 19 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर वू मिन ऑन लाइन ने आज नई दिल्ली में दो तरफा बातचीत की। इस बातचीत में दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रबत को मजबूत करने पर तवज्जो मरकूज की गई। भारत और म्यांमार के दरमियान वसी तर शोबों में अच्छे ताल्लुकात हैं, जिनमें सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी शामिल है। म्यांमार के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। उनका कौमी राजधानी के राय पिथौरा सकाफती कॉम्प्लेक्स में एक नुमाइश देखने का भी प्रोग्राम है। इस नुमाइश में गौतम बुद्ध से वाबस्ता पवित्र पिपरावा बाकियात को रखा गया है और उसके साथ साथ इससे वाबस्ता कुछ कदीमी चीज़ें भी नुमाइश के लिए रखी गई हैं। म्यांमार भारत की पड़ोस मुकदम मशरकी मुल्कों से रबते बढ़ाने और महासागर पॉलिसियों के सिलसिले में अहम मकाम रखता है। सदर ओ मिन ऑन लाइन के भारत के दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर रुखी ताल्लुकात के मजीद मुस्तहकम होने का इम्कान है। म्यांमार के सदर भारत के 5 रोज़ा दौरे के तहत हफ्ते के रोज़ बिहार के गया पहुँचे थे। म्यांमार के सदर कल मुंबई भी जाएंगे, जहाँ वो कारोबारियों और सनअतकारों से बातचीत करेंगे। मुख्तलिफ मकामात

देखने जाएंगे। भारत और मालदीव के बीच नई दिल्ली में 8 जून से 11 जून के दरमियान जनरल सतह के ششمائی सरहदी मुजाकरात होंगे। इस साल बांग्लादेश में BNP की हुकूमत बनने के बाद से मुजाकरात पहली बार हो रहे हैं। बांग्लादेश के वफद को बांग्लादेश सरहदी गार्ड BGB के डायरेक्टर जनरल मेजर मोहम्मद अशरफुर रहमान सिद्दीकी की सरबराही हासिल होगी, जबकि भारतीय वफद की क्यादत सरहदी सिक्योरिटी फोर्स BSF के डायरेक्टर जनरल परवीन कुमार करेंगे। रेहड़ी पटरी वालों से मुतालिक प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि स्कीम को आज 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। मस्कूरा स्कीम से पिछले 6 साल में लाखों रेहड़ी पटरी वालों को कर्ज हासिल करने और अपनी रोजी रोटी को बरकरार रखने में सहूलत हुई है। साल 2020 में स्कीम शुरू होने के बाद से 1 करोड़ 12 लाख से ज़्यादा कर्जे तकसीम किए गए। मस्कूरा स्कीम की सताइश करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आसान कर्ज़ों की फराहमी, माली शमूलियत और तरक्की के लिए नए मौक़ों को यकीनी बनाकर PM स्वनिधि स्कीम से बेशुमार रेहड़ी पटरी वालों की ज़िंदगी बदल गई है। सामान खिदमत टैक्स GST की मजमू वसूलियाबी में गुज़श्ता महीने 3.2% का इजाफा हुआ और ये 1,94,000 करोड़ रुपये से तजावज़ कर गई। सामान और खिदमात की फराहमी में बेहतरी, निज दरामदात से होने वाली वसूलियाँ भी लगातार बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है। पिछले साल मई के महीने में GST की मजमूई वसूलियाँ भी 1,88,000 करोड़ रुपये थी। गुज़श्ता महीने अंदरूनी मुल्क लेन देन से मरकजी GST की वसूलियाँ भी 37,397 करोड़ रुपये रही, जबकि रियासती GST की मालियत 45,143 करोड़ रुपये रिकॉर्ड की गई। मरबूत GST 51,990 करोड़ रुपये रही। भारत ओमान जामे इक्तिसादी शराकत दारी माहिदा CEPA आज से नाफिस हो गया है। कॉमर्स और तजारत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि माहिदा दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी कलीदी रबतों को मुस्तहकम करेगा। एक कौमी रोजनामे में शाये एक मजमून में जनाब गोयल ने कहा कि इस माहिदे से ख़ासतौर से मुल्क के तलबा, दस्तकारों, खवातीन, किसानों, माहीगीरों और MSME इदारों को फ़ायदा होगा और इसके तहत नए बाजारों तक रसाई मुमकिन हो पाएगी। बरामदात को फ़रोग हासिल होगा, सरमाकारी राकिब होगी, रोज़गार के मौके पैदा होने में तेज़ी आएगी। भारत के ओमान के साथ गहरे इक्तिसादी और आवाम से आवाम के दरमियान रबते हैं, जहाँ तकरीबन 7 लाख भारतीय आबाद हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि ओमान में आबाद भारतीय शहरी सालाना $2 अरब की रकम अपने घरों को भेजते हैं, जबकि 6,000 से ज़्यादा भारतीय इदारे वहाँ काम कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमेरिका ने ख़त्म हफ्ता पर ईरान के राडार और ड्रोन कंट्रोल मराकज़ पर हमले किए, जिससे मगरबी एशिया खत्ते में फिर से कशीदगी बढ़ गई है। बैनुल अक्वामी आबी हदूद के ऊपर परवाज करने वाले अमरीकी MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन को ईरान की जानिब से मार गिराए जाने के बाद अमरीका ने फौजी कार्रवाई की है। ईरान ने जवाबी हमला करने की बात कबूल की है और उधर कुवैत ने कहा है कि उसके फजाई दिफाई निज़ाम के जरिए मिज़ाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया जा रहा है। हालिया हमलों से जंगबंदी का कमज़ोर होने का इशारा मिलता है। कशीदगी में लगातार इजाफा हो रहा है, क्योंकि इसराइल ने लिटानी दरिया से भी आगे तक लबनान में अपना कब्जा बढ़ा दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मास आज नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया डायलॉग की मुश्तरक तौर पर सदारत करेंगे। वजारत दिफा ने बताया कि डायलॉग के दौरान बातचीत में दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक ताउन को मुस्तहकम बनाने, फौजी इंटरप्रॉस्पेरिटी और मुश्तरक तरक्की और मौाक़े की मुश्तरक पैदावार समेत सनअती इश्तराक पर खास तवज्जो दी जाएगी। तवक्को है कि इस मीटिंग से दो तरफा दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे, स्ट्रेटेजिक एतबार और बाहमी ताउन में इजाफा होगा। भारत बहरुल कायल खत्ते में इस्तेकाम सिक्योरिटी को फ़रोग मिलेगा और दिफा और सिक्योरिटी मामलों में इश्तराक के नए मौके उजागर होंगे। दस रियासतों में राज्यसभा के 24 सीटों के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हर 2 साल बाद होने वाले इस चुनाव के तहत पोलिंग इस महीने की 18 तारीख को होगी। इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट शामिल है। साबिक वजीर आजम और JDS के रहनुमा HD देवेगौड़ा, मरकजी वजीर और BJP के लीडर जॉर्ज कोरेन और रवनीत सिंह राज्यसभा में अपोजिशन

0: इनके रहनुमा और कांग्रेस सदर मलिक अर्जुन खड़गे उन अरकान में शामिल है जिनकी रुकनियत की मुद्दत इस महीने मुकम्मल हो रही है। इधर महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा में एक एक सीट के राज्यसभा जमीनी चुनाव का नोटिफिकेशन भी आज जारी किया गया। कोलंबिया में सदारती इंतखाबात के इब्तदाई सरकारी नतज के मुताबिक इंतखाबात दूसरे मरहले में दाखिल होंगे। इससे पहले हुई पोलिंग से पता चलता है कि दाएं बाजू के उम्मीदवार डी ला एस्परेला सबसे ज्यादा वोटों के साथ आगे हैं और उनके बाद बाएं बाजू के सीनियर आइवान सिपिडा को वोट हासिल हुए हैं। हालांकि बाजू के लिए दरकार 50% से ज्यादा वोट किसी उम्मीदवार को नहीं मिले, जिसकी वजह से इम्कान है कि इस महीने की 21 तारीख को वोटिंग का दूसरा मरहला कराया जाएगा। खवातीन की सैफ चैंपियनशिप 2026 में भारत की फुटबॉल की टीम कल गोवा के मरागाव में दिफाई चैंपियन बांग्लादेश को 3-0 से हराकर ग्रुप बी में पहुंच गई है। लेंडा कॉम, पेरी या और मालविका ने भारत के लिए एक एक गोल किया। 5 बार की SAFF चैंपियन भारतीय टीम बुध के रोज सेमीफाइनल में ग्रुप ए की रनर अप टीम भूटान का सामना करेगी। हांगकांग में 20 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 10 तमगों समेत 19 तमगे जीते। इस तरह भारत ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया और मजमूई एतबार से दूसरे मकाम पर रहा। भारत को चांदी के 5 और कांसे के 4 तमगे भी मिले। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस एथलेटिक चैंपियनशिप में 19 तमगे जीतने पर भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर ओ मिन ऑनलाइन ने नई दिल्ली में दो तरफा बातचीत की है। भारत और ओमान के दरमियान जामे इकतदाई साझेदारी समझौता नाफिज हो गया है। अमेरिका ने ईरान में राडार और ड्रोन कंट्रोल मराकज़ पर हमले किए हैं, जिससे मगरबी एशिया खत्ते में कशीदगी फिर से बढ़ गई है। मलेशिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है और हांगकांग में 20 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 10 तमगों समेत 19 तमगे जीते हैं। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते
2: मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

शिवानी सुनने वाले सभी युवा श्रोताओं को बलविंदर कल्याणा की प्यार भरी नमस्कार। श्रोतो, कल का दिन यानी कि जो बीता कल था 31 मई 2026 का, वो हमारे लिए बेहद दुखद रहा। भारतीय फिल्म जगत की और रेडियो की आनवान शान पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर हमें अलविदा कह गई। उनके गाए हुए गीत, उनकी आवाज हमारे साथ है, आज भी है और कल भी रहेगी। आज के इस कार्यक्रम में हम सुमन कल्याणपुर को याद करेंगे और इसके साथ साथ उन विषयों पर भी चर्चा करेंगे जो जरूरी है युवाओं के लिए। सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 में ढाका, उस वक्त के जो ब्रिटिश भारत के ढाका में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। और उन्होंने शुरुआती दौर से ही शास्त्रीय संगीत

का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। वह एक भारतीय पार्श्व गायिका थी, भारत में सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिकाओं में से एक सुमन कल्याणपुर को माना जाता है। हिंदी, मराठी, असमिया, गुजराती, कन्नड़, मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी, बंगाली, ओडिया, पंजाबी के अलावा बहुत सारी भाषाओं में उन्होंने मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, मुकेश, गीता दत्त, आशा भोंसले, हेमंत कुमार, तलत महमूद, किशोर कुमार, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और शमशाद बेगम जैसी फनकारों के साथ गीत गाए और बहुत ही लोकप्रिय गीत रहे। आज के कार्यक्रम में हम आपको सुमन कल्याणपुर के गाए हुए वो गीत सुनाएंगे जिनमें उनके साथ अन्य कलाकार भी रहे हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत मोहम्मद रफ़ी के साथ।

जी हाँ दोस्तों, जाने वाले कभी नहीं आते, मगर उनकी यादें हमेशा हमेशा के लिए यहीं रह जाती हैं। तो सुमन कल्याणपुर, मोहम्मद रफ़ी को बिछड़े हुए भी हमें एक ज़माना हो गया, और जुलाई के महीने में रफ़ी साहब की बरसी भी आ रही है। लेकिन आज का दिन सुमन कल्याणपुर के नाम।

दिल एक मंदिर है। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा था शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में। जी हाँ दोस्तों, दिल एक मंदिर ही तो है जिसमें खुदा से लेकर खुद तक बैठा जा सकता है, और इसी में बैठी रहती हैं कुछ यादें जो हम तक कहीं ना कहीं से पहुंच जाती हैं समाचारों के माध्यम से या उन रास्तों से जिन रास्तों से हम और आप मिल रहे हैं, यानी कि रेडियो के माध्यम से। दोस्तों याद कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर को। सुमन कल्याणपुर, जिनका मूल नाम सुमन हेमंडी था, सुमन की हमेशा से चित्रकला और संगीत में रुचि रही थी। मुंबई के प्रसिद्ध सेंट कोलंबा हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें चित्रकला में आगे की पढ़ाई के लिए प्रतिष्ठित सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश मिला। इसके साथ ही उन्होंने पुणे के प्रभात फिल्म्स के संगीत निर्देशक और एक करीबी परिवार मित्र पंडित केशव राव भोले से शास्त्रीय गायन सीखना शुरू किया। सुमन के अनुसार शुरू में गायन सिर्फ उनका शौक था, लेकिन धीरे धीरे संगीत में उनकी रुचि बढ़ती गई और उन्होंने उस्ताद अब्दुल रहमान खान और गुरुजी मास्टर नवरंग से इसे गहराई से सीखना शुरू किया। सुमन हेमंडी ने 1958 में मुंबई के एक व्यवसायी रामानंद कल्याणपुर से शादी की और इस तरह सुमन हेमंडी से सुमन कल्याणपुर बन गई। वह शादी के बाद हर रिकॉर्डिंग सेशन के लिए उनके साथ जाती थी। उनकी एक बेटी है जिनका नाम चारुल अग्नि है, जो शादी के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गई है। लीजिए सुनते हैं सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ एक और गीत।

आपने साथी फिल्म का गीत सुना मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में ही। मजरू सुल्तानपुरी के ये बोल थे, नौशाद का संगीत था। दोस्तों, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ गायिका लता मंगेशकर से काफ़ी मिलती जुलती थी। उनके कई गीत तो बिल्कुल ही लता मंगेशकर की शैली के थे। उनकी आवाज़ और लता की समानता के बारे में कल्याणपुर बहुत असहज थी। इस समानता के बारे में उन्होंने एक बार उत्तर दिया था, मैं लता से काफ़ी प्रभावित थी। अपने कॉलेज के दिनों में मैं लता के गाने गाती थी, मेरी आवाज़ नाजुक और पतली थी, मैं क्या कर सकती थी। रेडियो सिलोन से भी रिले किया गया, गीत नामों की कभी घोषणा नहीं की गई, यहाँ तक कि अभिलेखों ने भी कभी कभी गलत नाम दिया। हो सकता है कि अधिक भ्रम हो। 1950 और 1960 के दशक में इस अवधि को हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्ण युग के रूप में संदर्भित किया गया था। इस समय शमशाद बेगम, गीता दत्त, लता मंगेशकर, सुमन कल्याणपुर, आशा भोंसले जैसी महिला पार्श्व गायिकाओं का बड़ा बोलबाला था। इसी अवधि के दौरान लता ने रॉयल्टी के मुद्दों पर रवि के साथ गाने से इनकार कर दिया और उन गीतों को रफ़ी के साथ सुमन कल्याणपुर द्वारा रिकॉर्ड किया गया और वो बहुत सारे गीत बड़े ही लोकप्रिय रहे। लीजिए सुनते हैं एक और गीत।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

आपने मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों को सुना। हसरत जयपुरी की ये शब्द रचना थी, शंकर जयकिशन का संगीत था और फिल्म का नाम था छोटी सी मुलाकात। दोस्तों, बातें हमने सुमन कल्याणपुर की, जिनका कि कल शाम 31 मई 2026 को देहांत हो गया। फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन गायिका थी सुमन कल्याणपुर। आज के इस कार्यक्रम में, यानी कि युववाणी में, हम उनके गाए हुए गीत आप तक पहुंचाते रहेंगे और उन विषयों पर भी चर्चा करेंगे जो जरूरी हैं युवा साथियों के लिए। लीजिए सुनते हैं एक गीत, फिर करेंगे चर्चा।

अभी आपने अनवर, डॉक्टर कमलेश अवस्थी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों को सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और फिल्म का नाम था नसीब। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। बात अगर साइबर क्राइम की करें तो साइबर अपराध

ऐसा अपराध है जिसे जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल हैं। किसी भी कंप्यूटर का आपराधिक स्थान पर मिलना या कंप्यूटर से कोई अपराध करना कंप्यूटर अपराध कहलाता है। कंप्यूटर अपराध में नेटवर्क शामिल होता है। किसी की निजी जानकारी को प्राप्त करना और उसका गलत इस्तेमाल करना, किसी की भी निजी जानकारी कंप्यूटर से निकाल लेना या चोरी कर लेना भी साइबर अपराध है। कंप्यूटर अपराध भी कई प्रकार से किए जाते हैं, जैसे कि जानकारी चोरी करना, जानकारी मिटाना, जानकारी में फेरबदल करना, किसी की जानकारी को किसी और को देना या कंप्यूटर के भागों को चोरी करना या नष्ट करना। साइबर अपराध भी कई प्रकार के हैं, जैसे कि स्पैम ईमेल, हैंकिंग, फिशिंग, वायरस को डालना, किसी की जानकारी को ऑनलाइन प्राप्त करना या किसी पर हर वक्त नज़र रखना। ये सभी साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है।

मेल हैंकिंग फिशिंग वायरस को डालना, किसी की जानकारी को ऑनलाइन प्राप्त करना या किसी पर हर वक्त नज़र रखना, ये सभी साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है।

राजकुमार, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा था शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में। दोस्तों, बात कर रहे थे साइबर क्राइम की। अगर बात भारतीय दंड संहिता की करें तो साइबर अपराधों से संबंधित इसमें क्या प्रावधान है, कौन कौन सी धाराएं लगती हैं, तो ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजना, इसके लिए आईपीसी की धारा 503 में कार्रवाई की जाती है। ईमेल के माध्यम से ऐसे संदेश भेजना जिससे मानहानि होती हो, उसके लिए आईपीसी की धारा 499 में कार्रवाई की जाती है। फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल करना, इसके लिए आईपीसी की धारा 463 का प्रावधान है। और फर्जी वेबसाइट या साइबर फ्रॉड के लिए आईपीसी की धारा 420 है। चोरी छुपे किसी के ईमेल पर नजर रखना, आईपीसी की धारा 463। वेब जैकिंग के लिए आईपीसी की धारा 383 का उपयोग किया जाता है। और ईमेल का गलत इस्तेमाल करने पर आईपीसी की धारा 500 का इस्तेमाल किया जाता है। दवाओं को ऑनलाइन बेचने पर NDPS एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और कार्रवाई के लिए हथियारों की ऑनलाइन खरीद बिक्री की पर कॉमर्स एक्ट का उपयोग किया जाता है।

आपने सुमन कल्याणपुर की आवाज को सुना। फिल्म के नाम था बात एक रात की। इस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था, संगीत एस डी बर्मन का था। दोस्तों, आज के इस युववाणी में आप सुमन कल्याणपुर के गाए हुए गीतों को सुन रहे हैं, जिनका कि कल 31 मई 2026 को निधन हो गया था। इसलिए आज का ये कार्यक्रम समर्पित है सुमन कल्याणपुर को, और इसके साथ साथ वो विषय जो जरूरी है। माना जाता है कि जिस समाज का युवा जागृत हो, उसका आधार प्रगति तथा बुलंदी की ओर होता है। युवा पीढ़ी हमारे समाज का दर्पण है, और हम अपना भविष्य अपने युवाओं की सोच के आधार पर ही तय कर सकते हैं। जिस युवा शक्ति का हम आज़ादी से पहले का वर्णन करते हैं, तो हृदय आज भी नई उम्मीदों से जाग उठता है। उसी युवा शक्ति की बात आज की जाए तो ऐसा लगता है कि आज का युवा अपने आप में ही बंदी बन गया है। देश को गुलामी से आज़ादी की ओर ले जाने वाला युवा आज आधुनिक समाज में किसी मानसिक गुलामी की तरह नजर आ रहा है। आधुनिकीकरण के कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक तत्व होते हैं। ऐसा लगता है कि आज की युवा पीढ़ी नकारात्मक पक्ष की ओर ज्यादा बढ़ रही है। जो युवा शक्ति साहस और उत्साह से भरा था, आज वह अपनी आत्मशक्ति से दूर नशे की गिरफ्त में आ रहा है। इसलिए आज का युवा मानसिक समस्याओं का शिकार होता जा रहा है। यह नशा उसे इतना खोखला किए जा रहा है कि वह आत्महत्या जैसे कदम उठा रहा है। दोस्तों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2019 में देश में 1,39,000 लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें 67% यानी 93,000 लोगों की उम्र 18 से 45 साल की थी। इन आत्महत्याओं में दूसरा सबसे बड़ा कारण नशा था। करीब 19% लोगों ने नशा और उससे जुड़ी समस्याओं के कारण खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली है। दरअसल हमारे युवाओं का एक बड़ा वर्ग नशे की चपेट में आ गया है। कोकीन, हेरोइन, ब्राउन शुगर, भांग, चर्स जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करके युवा अपना जीवन खराब कर रहा है। यह जहरीला पदार्थ उसे कुछ समय के लिए सुखद अनुभूति देता है, परंतु जैसे ही नशा का प्रभाव खत्म होता है, व्यक्ति फिर से उस नशे की चाहत रखता है। जब उसे नहीं मिलता, तो वह आत्महत्या जैसे कदम उठाता है।

दिल ने फिर याद किया। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। जीएल रावल ने इस गीत को लिखा था, संगीत सोनी कौमी का था। दोस्तों बात करें अगर आज के दिन की, यानी कि आज के दिन के इतिहास की, तो दुनिया में आज ही के दिन 1 जून को 1924 में चीन के ऐतिहासिक सिल्क रूट को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक बार फिर आधिकारिक रूप से खोला गया था, जिसने पूर्व और पश्चिम के बाजारों को जोड़ा था। 1 जून 1980 को केबल न्यूज नेटवर्क ने दुनिया के पहले 24 घंटे चलने वाले न्यूज चैनल के रूप में अपनी सेवा देनी शुरू की थी, जिसने पत्रकारिता के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया था। 2001 में आज ही के दिन नेपाल के शाही परिवार में एक दुखद और सनसनीखेज घटना घटी, जिसमें युवराज दीपेंद्र ने राजा वीरेंद्र और रानी ऐश्वर्या सहित अपने ही परिवार के कई सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोस्तों 1831 में ब्रिटिश नाविक और खोजकर्ता जेम्स क्लार्क रॉस ने आज ही के दिन चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। 1 जून 1926 को हॉलीवुड की सर्वकालिक महान और प्रसिद्ध अभिनेत्री, मॉडल और पॉप कल्चर आइकन मरलिन मुनरो का जन्म आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन यानी कि 1 जून 1996 को देश की राजनीति इतिहास में हरदनहली डोडेगौड़ा देवेगौड़ा ने भारत के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी।

0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर
1: हो। आजकल तेरे मेरे चर्चे हर जुबान पे। जी हाँ दोस्तों, ये आवाजें मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की थी। हसरत जयपुरी के बोल थे और शंकर जयकिशन की धुन थी। फिल्म का नाम था ब्रह्मचारी।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: लीजिए चलते चलते सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजें सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 6:05 पर आप सुनेंगे सराय की, 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, और 6:40 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, और 6:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार राजस्थानी में। ये समाचार हम आपको सुनवाएंगे हमारे जयपुर केंद्र से। और श्रोतो संध्या, 7 बजे आप सुनते हैं चौपाल। आज की प्रस्तुति रहेगी राजन मुदगल की। श्रोतो, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे हमारे ग्रामीण खेल विषय पर चर्चा, और विषय रहेगा नरमा कपास में समसामयिक कार्य। इसके साथ साथ जो विषय रहेगा जिस पर चर्चा होगी वो दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे करें। इनके साथ ही आप सुनेंगे मौसम और बाजार भाव। 7:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, और रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम। 8:30 पर आप सुनेंगे स्पॉट स्कैन, और 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, और 9 बजे आप सुनेंगे News@9 यानी कि अंग्रेजी में समाचार। ये समाचार हम आपको सुनवाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत, और 9:30 पर आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक का कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से। 10 बजे आप सुनते हैं खेल जगत, प्रस्तुति रहती है हमारे जयपुर केंद्र की। 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, और श्रोतो रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, और इसके साथ ही 11:10 पर हमारी आज की सभा का समापन होगा। एक बार फिर से आपको याद दिला दें, सुनना न भूलें चौपाल। आज की प्रस्तुति रहेगी राजन मुदगल की, और समय

0: मीडियम पे 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 6:05 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सराय की।
1: रेडियो दा सरायकी प्रोग्राम है। मैं हरजीत कौर तुहाडे किते सरायकी प्रोग्राम घिन के हाजिर हाँ। ते साडा अज दा सरायकी प्रोग्राम बहु खास है। ए श्री गुरु नानक देव जी दे जीवन दर्शन सिख्यावां अते गुरबाणी गावण ते आधारित है। श्री गुरु नानक देव जी दा जन्म 1469 विच 15 अप्रैल दे दिन खत्री घराने विच राय भोए दी तलवंडी नाम दे घरां विच थिया है। अजकल इस घरां दा नाम ननकाना साहिब है जो पाकिस्तान विच है। गुरु नानक देव जी दे जन्म वेले भविखवाणी कीती गई है कि इस को हिंदू ते तुर्क दुवे पूजणगे। ए सारा इंसाना को भगवान दी रचना मन के बराबर समझ सी। जिस वेले गुरु नानक देव जी दा जन्म थिया चफेरू चिट्टा चानन थिया है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेती में आधुनिक तकनीक, मशीनों और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने पर जोर दिया। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, प्रदेश की 3 सीटों के लिए निर्वाचन होगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, राजस्थान के नवाचारों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। उन्होंने इन नवाचारों का प्रभावी डॉक्यूमेंटेशन करने के निर्देश दिए। और प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी, कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और ओले गिरने से नुकसान के समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान की आज से शुरुआत हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रमासिया गांव से इसका शुभारंभ किया। अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग बढ़ाना, मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच किसानों को समय पर सलाह देना और पंचायत स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें दोगुनी हो गई हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने तय किया है कि किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अभियान चलाकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड से वंचित किसानों के कार्ड बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब खेती में आधुनिक तकनीक और मशीनों का उपयोग बढ़ाना होगा। सही बुआई, रोग से बचाव और कम बारिश की संभावना को देखते हुए वैज्ञानिक तरीके अपनाना समय की जरूरत है।
1: मिट्टी के सॉइल हेल्थ कार्ड बनाएंगे, निकाल के देखा कितना जिंक, कितना पोटास, कितना बोरान, और उस हिसाब से खाद का हिसाब लगाया और उत्तर डाला, तो पैसा भी बचेंगे, धरती मैया भी बचेगी। एक तो ये करेंगे, दूसरे उन्नत खेती करना। अभी अपन ने कृषि मेला किया था जहाँ सब किसान देखेंगे और कैसे उसका लाभ उठाया जा सकता है उसकी कोशिश करेंगे। सोयाबीन कैसे लगाना है, सोयाबीन कैसे बोए।

0: की ट्रेनिंग दे और एक बैलेंस खाद का उपयोग वो हमको किसान भाई बहनों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाना पड़ेगा बताना पड़ेगा।
1: 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के विशेष प्रयास किए जाएंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज जल से संबंधित उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति के लिए मिशन माहा का शुभारंभ किया। ये जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता और जल उपयोग दक्षता जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। दोनों मंत्रियों ने नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में इस मिशन की शुरुआत की। कार्यशाला में जल संकट के समाधानों पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। इस मौके पर जल शक्ति मंत्रालय और इसरो ने जल संसाधन आकलन, निगरानी

0: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज जल से संबंधित उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति के लिए मिशन माहा का शुभारंभ किया। ये जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता और जल उपयोग दक्षता जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। दोनों मंत्रियों ने नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में इस मिशन की शुरुआत की। कार्यशाला में जल संकट के समाधानों पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। इस मौके पर जल शक्ति मंत्रालय और इसरो ने जल संसाधन आकलन, निगरानी और प्रबंधन के लिए उपग्रह आधारित अनुप्रयोगों और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसमें 24 प्राथमिकता वाले अध्ययन और सहयोग के क्षेत्र पहले ही चिन्हित किए जा चुके हैं। राजस्थान सहित 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हुई। इसके साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नाम निर्देशन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इनकी जांच 9 जून को की जाएगी। 11 जून को अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे। आवश्यकता होने पर 18 जून को मतदान होगा। गौरतलब है कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए 3 सदस्य निर्वाचित होने हैं। भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत तथा कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के आज 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2020 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इस पहल के जरिए 75 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित किए गए हैं। पीएम स्वनिधि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई है, जिसने लाखों परिवारों को विश्वास, सम्मान और आत्मनिर्भरता का नया आधार दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों, आगामी कार्य योजनाओं और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र साहू ने आज बालोतरा जिले का दौरा कर अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं भी जानी। श्री साहू ने बालोतरा थाने का निरीक्षण कर सीएलजी सदस्यों से फीडबैक लिया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिले में आवश्यक संसाधनों की कमी को पूरा किया जाएगा। श्री साहू ने कहा कि नए पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग के बाद तैनाती कर नफरी की कमी को दूर किया जाएगा।
1: देखिए, पुलिस की नफरी नया जिला बना तो पुराने जिले से इनको एक आवंटित की गई है। इसके अलावा जो नए रिक्रूट्स हैं अराउंड 179 वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रशिक्षणाधीन। मेरे ख्याल से आने वाले नवंबर दिसंबर तक 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद जिला को उपलब्ध हो जाएंगे। तो देखिए, एक साथ इतनी सारी नफरी आ गई। इसके अलावा जो आगामी वर्षों में जो भर्तियां होंगी तो समय समय पे पूरा सरकार का ध्यान है, पुलिस को खाले का ध्यान है, वो उपलब्ध करा दी। तो आने वाले समय में जनसंख्या पुलिस का अनुपात है वो एक विजन 2047 डॉक्यूमेंट भी बनाया गया, आने वाले समय में नेचुरली इसमें वृद्धि होगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राज्य सरकार की नवाचारों का प्रभावी डॉक्यूमेंटेशन करने और सफलता की कहानियां तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आज जयपुर में अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्राम विकास चौपाल, ग्राम रथ अभियान, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान, चंदन वन, माय भारत और राज उन्नति जैसी सरकार की पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य प्रणालियों के रूप में पहचान मिली है। उन्होंने बताया कि कई राज्यों ने इन पहलों के कार्यान्वयन में रुचि भी दिखाई है। बैठक के दौरान प्रदेश में खनिज अन्वेषण, नीलामी प्रक्रिया, पेयजल, स्वच्छता, सिंचाई परियोजनाएं और ऊर्जा क्षेत्र सुधारों से जुड़े विषयों के संबंध में भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने आज प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश के विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को लगातार निरीक्षण करने को कहा। मुख्य सचिव ने योजना के पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष

0: विशेष बल देते हुए पीएम पोषण योजना के पोर्टल को तत्काल अपडेट करने के निर्देश दिए। झुंझुनू जिले के शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट परिसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय ने 13 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। विधायक राजेंद्र भांबू और जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने भवन निर्माण कार्य का आज भूमि पूजन किया। ये केंद्र अत्याधुनिक सुविधाओं वाला होगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन और शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर श्री भांबू ने कहा कि मंत्रालय ने राजस्थान के 7 डाइट परिसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया है, जिनमें झुंझुनू भी शामिल है। प्रदेश में मध्य और पूर्वी जिलों में आज भी आंधी बारिश का दौर जारी रहा। जयपुर में बादल छाए हुए हैं और मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं बारिश हो रही है। अलवर, टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा और सीकर जिलों में भी तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की बारिश तो कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। पाली में तेज हवाओं से कई पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। करौली में दोपहर बाद हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। नागौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां आज हुई ओलावृष्टि से कपास की फसलों को नुकसान पहुंचा है।
1: नागौर जिले में आज दोपहर में हुई बारिश से ओलावृष्टि ने काफी नुकसान पहुंचाया है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर करीब 1 बजे बारिश का दौर शुरू हुआ। कुछ ही देर में बारिश के साथ के ओले गिरने लगे, जिससे हाल ही बोई गई कपास की फसल नष्ट हो गई। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। श्याम लाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
0: चित्तौड़गढ़ में भी तेज आंधी के साथ कहीं कहीं ओले गिरे। इसके अलावा बूंदी, भीलवाड़ा और राजसमंद सहित कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी के समाचार हैं। राज्य में पिछले 3 दिन से जारी आंधी और बारिश के चलते ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान 40 डिग्री से नीचे, वहीं रात का पारा 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर ने कहा है कि अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा। 3-4 जून को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से एक बार फिर बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में तेज आंधी बारिश के आसार हैं। झुंझुनू में 17वीं बटालियन जाट रेजिमेंट का 60वां स्थापना दिवस समारोह उत्साह के साथ मनाया गया। समारोह में पूर्व सैनिकों, सैनिक परिवारों और वर्तमान सैनिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने सैनिकों के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान को लेकर चर्चा भी की। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले साल मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की बढ़ोतरी हुई, वहीं सेवा क्षेत्र में 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेती में आधुनिक तकनीक, मशीनों और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने पर जोर दिया। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों की द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, प्रदेश की 3 सीटों के लिए निर्वाचन होगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, राजस्थान के नवाचारों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। उन्होंने इन नवाचारों का प्रभावी डॉक्यूमेंटेशन करने के निर्देश दिए। और प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी, कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और ओले गिरने से नुकसान के समाचार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से झुंझुनू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख संदीप केडिया ने तैयार किया है। झुंझुनू जोन में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में 23,000 से ज्यादा घरों में सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। बिजली की मांग बढ़ने और सरकार की ओर से सब्सिडी बढ़ाए जाने के बाद छतों पर सोलर सिस्टम लगाने के काम में काफी तेजी आई है। जिले में रोजाना 70 से 80 आवेदक सोलर सिस्टम लगाने के लिए मिल रहे हैं। गाँव और कस्बों में शिविर लगाकर लोगों को सोलर सिस्टम के फायदे बताए गए। इसके बाद लोगों में सोलर पैनल लगवाने के लिए रुचि जागी है।

0: डिस्कॉम के एसई महेश टीबड़ा ने बताया कि जोन के 23,000 सोलर सिस्टम से 86,000 किलोवाट से ज्यादा बिजली उत्पादन हो रहा है। इससे डिस्कॉम को कई गांवों और ढाणियों तक बिजली सप्लाई में मदद मिली है। आमतौर पर पराली को किसानों और पर्यावरण के लिए बड़ी समस्या माना जाता है, किंतु जिले में पराली से बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन हो रहा है। इसके लिए मंडरेला रोड पर आधुनिक बायोमास पावर प्लांट लगाया गया है। इससे बिजली जरूरतें भी पूरी हो रही है, साथ ही प्रदूषण भी कम हो रहा है। इस संयंत्र से हर महीने 1 करोड़ से अधिक यूनिट का बिजली उत्पादन किया जा रहा है, जिससे जिले में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले कृषि कचरे को उपयोगी संसाधन में बदला गया है। साथ ही स्थानीय किसानों को भी अपने कृषि अपशिष्ट पराली का सही निस्तारण करने का जरिया मिल गया है। जिले में इन दिनों वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चल रहा है। इसके जरिए पानी बचाने और पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाई जा रही है। गंगा दशमी के अवसर पर बगड़ कस्बे के फतेह सागर तालाब से जिला स्तरीय अभियान का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर कलश यात्रा, पीपल पूजन, सरोवर पूजन और श्रमदान के कार्यक्रम रखे गए। इस अवसर पर उपस्थित प्रतिभागियों ने जल बचाने और स्वच्छता बनाए रखने का सामूहिक संकल्प लिया। सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने इस मौके पर कहा कि जल संरक्षण में आम लोगों की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सामूहिक भागीदारी के साथ जल संरक्षण के प्रयास करने पर पानी की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है। जिला कलेक्टर अरुण गर्ग की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई रखी गई। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस जनसुनवाई में जिले भर से परिवादी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिजली, पानी, सड़क, राजस्व और अन्य विभागों से जुड़ी समस्याएं रखी। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और मामलों के शीघ्र निस्तारण करने को कहा। जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से खाने पीने की चीज़ों के नमूने लिए गए। इनमें गड़बड़ियां सामने आने पर 2 दुकानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि संबंधित प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निलंबित करने के साथ ही मिलावटी चीज़ों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई। उन्होंने बताया कि विभाग को मिलावट की जानकारी देने वाले लोगों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा पिछले दिनों राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर SN धोलपुरिया ने की। उन्होंने CMHO कार्यालय में बैठकर अभियान की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान डॉक्टर धोलपुरिया ने झुंझुनू जिले के 236 उच्च जोखिम वाले गांवों में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। झुंझुनू जिला उपभोक्ता आयोग ने नई शुरुआत की है। आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील ने बताया कि अब उपभोक्ता और सेवा प्रदाता को सीधा पोस्टकार्ड भेजा जाएगा, जिसके जरिए दोनों पक्षों को मुकदमे की वास्तविक स्थिति बताई जाएगी। साथ ही आपसी समझाइश से मामले को निपटाने का मौका दिया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से हो रही प्राध्यापक कोच प्रतियोगी परीक्षा 2025 के लिए जिले में 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 31 मई से 5 जून तक चलने वाले इन परीक्षाओं में 56,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत इस बार मानसून में जिले में 33 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। झुंझुनू जिले के पंचगौरव में शामिल नीम के पौधों को इस मुहिम में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इस बार वन विभाग ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। झुंझुनू जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खेतीबाड़ी माए नूवी तकनीक मशीना और वैज्ञानिक तरीका काम लेवण माथे जोर दिनो। 10 राज्यां माए राज्यसभारी 24 सीटां रा द्विवार्षिक चुनाव री अधिसूचना जारी। प्रदेश माए 3 सीटां सारू चुनाव फैला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो राजस्थान रा नुआ कामा री देश माए सराहना भी। और प्रदेश का कई जिला माए आंधी बारिश रो सिलसिलो जारी। कठे कठे जोरदार बायरो बाजन और ओला पड़बाऊ नुकसान रा समाचार। समाचार सागे मैं सुदर्शन ना।

0: खबर अरब समाचार विगतवार। देश में आज खेत बचाओ अभियान शुरू करी चियो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश रा रायसेन जिला रा रमासिया गांव इनरी शुरुआत की नी। ई मौके वे कहो कि दुनिया भर में खाद रो मोल दूणो भेवण पाछे केंद्र सरकार किसाना ने सस्ती खाद मुहैया कराण तय किन्नो है। कृषि मंत्री कहो कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड नी बना सक्या किसाना सारू खास अभियान चलार ए कार्ड बनाया जावेला। वह कहो कि अब खेती माए सही बुआई बीमारियां बचाव और कम बिरखारी संभावना न ध्यान रखता था का वैज्ञानिक तरीका काम लेना वेला।
1: मिट्टी के सॉइल हेल्थ कार्ड बनाएंगे, निकाल के देखा कितना जिंक कितना पोटास कितना बोरान और उस हिसाब से खाद का हिसाब लगाया और उतना ही डाला तो पैसा भी बचेंगे धरती मैया भी बचेगी। एक तो ये करेंगे, दूसरे उन्नत खेती करना। अभी अपन ने कृषि मेला किया था जहाँ सब किसान देखेंगे और कैसे उसका लाभ उठाया जा सकता है उसकी कोशिश करेंगे। सोयाबीन कैसे लगाना है, सोयाबीन कैसे बोए उसकी ट्रेनिंग दे और एक बैलेंस खाद का उपयोग वो हमको किसान भाई बहनों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाना पड़ेगा बताना पड़ेगा।
0: 30 जून तक चलने वाला ई अभियान रातेत किसान क्रेडिट कार्ड प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड सरीखी योजनावां रो फायदो पात्र किसाना ताई पुगावण रा खास जतन करिया जावेला। ई अभियान रो मकसद खाद ने संतुलित तरीकों काम लेवण ने बढ़ावो देवणो किसाना ने मौसम जुड़ी जानकारी टेम सर देवणो और पंचायत लेवल माथा जनता री भागीदारी तय करनो है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज पानी जुड़िया हलका माए बेहतरी सारू मिशन महा री शुरुआत कीनी। वह नई दिल्ली माए जल अनुसंधान और विकास रवारा माए राखी जी राष्ट्रीय कार्यशाला रा उद्घाटन कार्यक्रम माए इनरी शुरुआत कीनी। इनरो मकसद पीवण रा पानी और जल संसाधन प्रबंधन आबो हवा माए बदलाव रो सामोकरण रो बूतो और पानी ने समझदारी काम लेवण सरीखा हलका माए नूवी खोज ने बधावो देवणो है। कार्यशाला माए पानी री परेशानी आगीकरण रा तरीका रा बारा माए विचार करियो चाट्यो है। ई मौके जल शक्ति मंत्रालय और इसरो जल संसाधन आकलन निगरानी और प्रबंधन सारू उपग्रह आधारित अनुप्रयोग और उन्नत प्रौद्योगिकियां ने मजबूत बनावण सारू एक करार माथे सही कीनी। राजस्थान समेत 10 राज्यों में राज्यसभा री 24 सीटों रा द्विवार्षिक चुनावी अधिसूचना आज जारी करती रिची। इंसा गई पर्चा दाखिल करण रो काम शुरू फेंक्यो है। प्रदेश राज्यसभा रा 3 सदस्यों रो चुनाव करो जावणो है। इंसारू नाम पाना 8 जून तई दाखिल करया जा सके है। चुनाव अधिकारी भारत भूषण शर्मा बतायो कि पर्चा विधानसभा भवन रा कमरा नंबर 106 माए चुनाव अधिकारी सामी सवारे 11 दोपहर पाछे 3 बजे तई दाखिल करया जा सके है। नाम पानारी जांच 9 जून न करी जावेला। पर्चा 11 जून न दोपहर पाछे 3 बजे ताई पाछा लिया जा सकेला। जरूरत पड़िया 18 जून न वोट पड़ेला और सिंजा 5 बजे पाछे वोटां री गिनती करी जावेला। ध्यान जोग है कि राजस्थान नु राज्यसभा सदस्य भाजपा रा रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस रा नीरज डांगी रो कार्यकाल 21 जून न पूरो फेरियो है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सरूविया आज 6 बरस पूरा फेंक्या। साल 2020 माय आज हीरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनरी शुरुआत कीनी ही। इनरो मकसद रेहड़ी पटरी वाला ने आसान कर्ज मुहैया करावणो है। योजना रे जरिए हाल ताई 75 लाख बत्ता लोगों ने 17,800 करोड़ रुपया रा कर्ज दिया चिया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सागे मुलाकात कीनी। ई मौके दोनों नेता जनता रा भलाऊं जुड़िया न्यारा न्यारा मुद्दा और आवती कार्य योजनावां रा बारा माए चर्चा कीनी। पुलिस महकमा माए मकान रहवास रो काम देख रहा एडीजी भूपेंद्र साहू बालोतरा जिला माए अपराध और कानून व्यवस्था रा हालात रो जायजो लीनो। वे पुलिस वाला सागर मीटिंग कर वारी समस्या

0: रे जानकारी लीनी। श्री साहू बालोतरा पुलिस थाना रो दौरो कर सीएलजी सदस्यों हुई जानकारी लीनी। ए मौके खबर नवीसा सागे बातचीत करता था काम वे कहो के जिला माए जरूरी साधना रे पूर्ति बेगी करी जावेला। एडीजी कहो के पुलिस लाइन सारू जमी आवंटन री कार्रवाई कर दी रिची है। श्री साहू कहो के पुलिस माए नुआ भर्ती हुआ कर्मचारियों री सिखावण पाछे तैनाती कर नफरी री कमी दूर करी जावेला।
1: कि पुलिस की नफरी नया जिला बना तो पुराने जिले से इनको एक आवंटित की गई है। इसके अलावा जो नए रिक्रूट्स हैं अराउंड 179 वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं प्रशिक्षणाधीन। मेरे ख्याल से आने वाले नवंबर दिसंबर तक 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद जिला को उपलब्ध हो जाएंगे। तो देखिए एक साथ इतनी सारी नफरी आ गई। इसके अलावा जो आगामी वर्षों में जो भर्तियां होंगी तो समय समय पे पूरा सरकार का ध्यान है, पुलिस को खाली का ध्यान है, वो उपलब्ध करा दी। तो आने वाले समय में जनसंख्या पुलिस का अनुपात है वो एक विजन 2047 डॉक्यूमेंट भी बनाया गया, आने वाले समय में नेचुरली इसमें वृद्धि
0: होगी। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप माना एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास राज्य सरकार का न्यू कराया जा रहा नुआ नुआ कामारी कामयाबी री कहानियां तैयार करने रा हुक्म दीना है। वे आज जयपुर माए अहलकारा सागर राखी जी मीटिंग माए बोल रहा है। मुख्य सचिव कहो के प्रदेश माए ग्राम विकास चौपाल, ग्राम रथ अभियान, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान, चंदन वन, माई भारत और राज उन्नति सरीखी सरकारी कोशिशा ने देश भर माए बेहतरीन कोशिशा रा तौरों पिछाण मिली है। मीटिंग माए प्रदेश माए खनिजा री खोज, नीलामी प्रक्रिया, पीवण रा पानी री उपलब्धता, साफ सफाई, पाना तून जुड़ी परियोजनावां और ऊर्जा हलका माए सुधारा रा बारा माए चर्चा करी जी। मुख्य सचिव प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना रा कामकाज रोई जायजो लीनो। वे राज्यरी स्कूलों माए विद्यार्थियों ने पौष्टिक भोजन मुहैया करावण सारू अहलकारा रे लगातार जांच रा हुक्म तीना। झुंझुनू जिला रा शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट परिसर माए सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनायो जावेला। इन सारू शिक्षा मंत्रालय 13 करोड़ रुपया मंजूर कीना है। विधायक राजेंद्र भांबू और जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग इरा काम रो आज भूमि पूजन कीनो। इ मौके विधायक भांबू कहो के मंत्रालय झुंझुनू समेत राज्य रा 7 डाइट परिसर माए सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनावण रो फैसलो कीनो है। झुंझुनू माए जाट रेजिमेंट री 17वीं बटालियन रो 60वां स्थापना दिवस समारोह उमाव सागे मनाईचियो। कार्यक्रम माए जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग फौजियां सामी आवण वाली चुनौतियां और वारा निपटारा रा बारा माए चर्चा कीनी। कार्यक्रम माए पहले वाला और मौजूदा फौजी और फौजियां रा परिवार वाला शामिल भया। मौसम प्रदेश रा बीचला और उगनी जिला माए आज ही आंधी बारिश रो सिलसिलो चालतो रहो। राजधानी जयपुर माए सिंजानी पोर बादला मंडिया और कुछ हल्का माए छांटो छिड़को भियो। अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा और सीकर जिला माए जोरदार बायरो बाजण सागे कठे कठे हल्की बारिश हुई तो कठे कठे उड़ा पड़िया। पाली माए बाजा जबरदस्त बायरा रे कारण कई रूखड़ा उखड़ गया और बिजली रा खंभा पड़ गया। करौली माए दोपहर पाछे बिरखा हुई जिनू गर्मियों थोड़ी साता मिली। दूजगानी नागौर माए ओला पड़माऊ कपास री साख और सूरज री रोशनी बिजली बनावण री मशीना ने नुकसान भियो।
2: नागौर जिले में आज दोपहर में हुई बारिश से ओलावृष्टि ने काफी नुकसान पहुंचाया। जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर करीब 1 बजे बारिश का दौर शुरू हुआ। कुछ ही देर में बारिश के साथ के ओले गिरने लगे जिससे हाल ही बोई गई कपास की फसल नष्ट हो गई। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। श्याम लाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
0: चित्तौड़गढ़ में तेज आंधी आवण सागे कठे कठे ओला पड़िया। बूंदी, भीलवाड़ा और राजसमंद समेत कुछ जिला माए जोरदार बायरो बाजण सागे छांटो छिड़को भेवण रा समाचार है। राज्य रा घणखर हलका माए लाड़ला 3 दिनों चाल रहा आंधी और बारिश रा सिलसिलाऊ दिन री बगत पारो 40 डिग्री सेल्सियस नीचे उतर गयो जदके रात री बगत ही तापमान

0: 25 डिग्री सेल्सियस रे आरएसआर दर्ज करियो चाह रियो है। मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब आवता एक सप्ताह ताई प्रदेश में आंधी बारिश रो सिलसिलो चाल तो रहवन रा आसार है। 3-4 जून ने बीकानेर जयपुर भरतपुर और अजमेर संभाग रा कुछ हल्का माए आंधी बारिश माए ओजू बढ़ोतरी री संभावना है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी री मद माए लारला महीना 1,94,000 करोड़ रुपयों बत्ती रकम भेड़ी करी ची। लारला साल मई महीना माए आ रकम 1,88,000 करोड़ रुपया ही। इन अवधि रे दौरान सामान री कर योग्य पूर्ति माए 26.9% जदकै सेवा हलका माए 22.2% री बढ़ोतरी दर्ज करी ची। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौतो CEPA आज लागू हो गयो। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बतायो कि इन करार उन दोनों देशों में माली और रणनीतिक रिश्ता और मजबूत बनेला। आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खेती बाड़ी माए नई तकनीक मशीना और वैज्ञानिक तरीका काम लेवन माथे जोर दिनो। 10 राज्यों में राज्यसभा 24 सीटों रा द्विवार्षिक चुनाव री अधिसूचना जारी। प्रदेश में 3 सीटों सारू चुनाव वेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो राजस्थान रा नुआ कामारी देश में सराहना भी। और प्रदेश रा कई जिला में आंधी बारिश रो सिलसिलो जारी। कठे कठे जोरदार बायरो बाजन और ओला पड़वाऊ नुकसान रा समाचार। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: पापा
2: मीडियम 526.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चौपाल।

कार्यक्रम सुननिया सगळा परिवाराने भाई राजन का घणा घणा राम राम, मोकळा मोकळा राम राम सा। भाई लोगों, आपणो भारत देश है जिको गावां गो देश है और गावां की जिकी संस्कृति परंपरा जीवन शैली की बात करा तो बा हमेशा समृद्ध रही है। ग्रामीण खेल जिका भी रहा है अपनी भारतीय संस्कृति की हमेशा एक अमूल्य धरोहर के रूप में सामने आया है। यह खेल ना केवल अपने मनोरंजन को साधन है बल्कि शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा निभाने लग रहा है। आधुनिक खेल के विकास से पहले बात करें तो ग्रामीण खेल ही ऐसा है जिका मूल तौर पर मनोरंजन और स्वास्थ्य को प्रमुख साधन है। ग्रामीण खेलों के अगर महत्व की आप बात करें, गावों के जिका भी लोग हा बने आपस में जोड़न को काम ग्रामीण खेल करया करता। आ खेलों भाईचारों, आपसी सहयोग, अनुशासन और एक मित्रवर्ती प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होया करती। सागे सागे देखा तो ऐ ऐसा खेल है जिका अपने शरीर ने स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त बनाए रखता है। प्रमुख ग्रामीण खेलों की बात करें आप तो कबड्डी, कुश्ती, खो खो, गुल्ली डंडो, रस्सो खींच, पिट्ठू और बैलगाड़ी दौड़, ऐ कई अपना प्रमुख खेल है। जिका मैं बात करा कबड्डी की तो भारत को एक लोकप्रिय ग्रामीण खेल है। एक माँ दो टीम हुए और खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ विरोधी टीम के खिलाड़ियों ने छू गए वापस आने को प्रयास करे और वो खेल शक्ति फूर्ति और रणनीति को विकास करें।

कुश्ती की बात करें तो गावा में प्राचीन कालू ओ खेल खेलो जान लाग रहे है और अखाड़ा में पहलवान नियमित इंगो अभ्यास करें। ओ खेल शारीरिक बल सहन शक्ति और सबो जरूरी आत्मविश्वास ने बढ़ावो देवे है। खो खो की बात करें भाई लोगों तो चाहे टाबर हो चाहे जवान हो सब में वो खेल अत्यंत लोकप्रिय है। इंगमा दौड़ने तेजी निर्णय लेने और टीम भावना को विकास हुए है। गुल्ली डंडा की बात करें तो अपने ग्रामीण क्षेत्र में वो एक पारंपरिक खेल के रूप में निकल गया है जिका गमा कम संसाधन में भी आपा एक अच्छो खेल खेल सका है। अगर आपा मूल रूप में बात करें तो आज क्रिकेट के प्रति आपनों रुझान ज़्यादा होने लाग रहे है लेकिन पारंपरिक रूप में देखा तो इन्हें क्रिकेट के रूप में ही देखो जावे है। रस्सा कस्सी की बात करें तो इंगमा दो टीमा रस्सी ने आपकी ओर खींचने को प्रयास करे और रस्सी के दूसरे छोर पर खड़े जिको भी खिलाड़ी है बिना आपकी तरफ रस्सी के माध्यम खींच कर ले आवे। वो खेल सामूहिक शक्ति और एकता को प्रतीक मान्यो जावे। इंग बात बात करें आपा पिट्ठू की तो सात पत्थरा ने एक के ऊपर एक रख के गेंद गिराणो और फिर बने वापस एक दूसरा के ऊपर जमाणो। ई खेल को मुख्य उद्देश्य वो ही हुआ है और वो बच्चा ने बहुत ज़्यादा अच्छो लगे है। बैलगाड़ी दौड़ को जो खेल है वो ग्रामीण क्षेत्र में जिका बैलगाड़ी दौड़ है बिंगो आयोजन करायो जावे है और अपनी ग्रामीण संस्कृति और पशुपालन जुड़ेड़ो खेल है। ग्रामीण खेलों के फायदा की आपा बात करें तो सबू पहली शारीरिक लाभ आपने खेलनिया खिलाड़ियों ने बहुत ज़्यादा हुआ है जिका ने शरीर ने स्वस्थ रखे मजबूत बनाने में खूब मदद करे सहन शक्ति और फुर्ती ने बढ़ावे और सबू जरूरी रोग प्रतिरोधक जी की क्षमता हुए बीमें भी बढ़ोतरी देखने मिल रहे हैं। इनके सागे सागे आपा अगर गौर करा तो आपने मानसिक लाभ भी काफ़ी तरीकों हुए है। खेलने या खिलाड़ी को आत्मविश्वास बढ़े निर्णय लेने की जिकी बिंगी क्षमता हुए विकसित हुए और मूल तौर पर कोई भी तनाव है वो खेल के सागे धीरे धीरे कम होने लग जाए। सामाजिक लाभ की आपा बात करा तो जब भी आपा ईसा खेलों को हिस्सों बना तो आपसी भाईचारों बढ़े टीम भावना को विकास हुए और सबू जरूरी अपनी सामाजिक एकता मजबूत हुए हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो आज मोबाइल टीवी और कई प्रकार का जिका इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिका में वीडियो गेम भी शामिल है आगे कारण के कि ग्रामीण खेलों की जिकी लोकप्रियता है समय के साथ कम होने लगी है। फिर भी आपा देखा तो स्कूल हो गया कॉलेज हो गया आमे के खेल प्रतियोगिता के माध्यमों और ग्रामीण खेलों के माध्यमों आने बढ़ावा दियो जान लाग रहे हैं। कबड्डी और खो खो वर्गा कई खेल हिस्सा है जिका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपकी पहचान बना चुका है। आज अगर बात करें भाई लोगों तो जी हाँ अपनी संस्कृति है भी यहीं अपना ग्रामीण खेल अपनी एक सांस्कृतिक विरासत है और आने संरक्षित करने खातर स्कूल कॉलेज में प्रतियोगिता आयोजित करनो युवा ने प्रोत्साहित करनो और ग्रामीण खेल महोत्सव को आयोजन मिल बांट के सबने करना चाहिए। ग्रामीण खेल अपनी भारतीय संस्कृति ग्रामीण जीवन को एक अभिन्न अंग है। वो खेल स्वास्थ्य मनोरंजन और सामाजिक एकता को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में निकल गया है। आपा जिका भी है पारंपरिक खेल है आने संरक्षित और प्रोत्साहित समय समय पर करता रहा ताकि आगे आने वाली जितनी भी अपनी पीढ़ियां हैं वहाँ फायदा उठा सके और अपनी जिकी सांस्कृतिक विरासत है वह हमेशा जिंदा रह सके। चला कार्यक्रम में भाई लोगों आगे की तरफ बातचीत आपा अभी और भी करांगा पर पहले सुनावा था ना वो भजन लियो सुनो सा।

0: कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
1: संदेश पहला भाई लोगों सुनियो आपा भजन चला आपा अपनी खेती पाती की दुनिया में और ई महीने आपने नरमे कपास में के कुछ समसामिक कार्य आपने किसान भाइयों ने कर लेना चाहिए भी की बात करा। नरमे कपास के खातर देखा तो आपा सगला जाना का अपना भारत की एक प्रमुख नकदी फसल है। राजस्थान पंजाब हरियाणा गुजरात और महाराष्ट्र में भी इनकी व्यापक खेती करी जावे है। ज़्यादा उत्पादन और अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करने खातर के आपा टेम टेम पर जिका भी अपना खेती पाती का काम करना है वह करता रहा और शुरुआत करा समसामिक करांगी तो सब जरूरी और सब पहले नंबर पावे खेत की जांच खेत को निरीक्षण फसल की नियमित आपा निगरानी करा ताकि कोई भी प्रकार का कीट रोग है या कोई ऐसा पोषक तत्व है जिका की कमी को आपा ने ठा पड़न लाग रहे हो तो बिंगो समय पर आपा पतो लगा लेवा और जाप तो करते वहाँ। इन बात करा आपा खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवार के है फसल के साग है जिका भी पोषक तत्व है पानी है और प्रकाश खातर के है आपने बूटा के साग प्रतिस्पर्धा करे इन खातर के आपा टेम टेम पर निराई गुड़ाई कर गए खेत ने खरपतवार मुक्त बना के रखा। इंगो मोटो मोटो फायदो आपने होगो कि आपने जितना भी पौधा है बांगी अच्छी बढ़वार होएगी ज़्यादा आपा उत्पादन ले सकेंगे और जितना भी कीट है या रोग है जिकी फसल की बढ़वार वाली स्टेज पर आवेगा वह में भी आपने टाइम के सागे कमी दिखने मिलेगी। पौधा की जिकी छंटाई है और गैप भराई है वह भी आपने बहुत सावधानियों समझदारियों करनी है। जिठे पौधा कम हुए बठे एक बार फिर वहाँ पर बुआई कर देवा या गैप भराई जरूर कर देवा ताकि क्या है कि ज़्यादातर घना पौधा है बाने हटागा आपा उचित दूरी जरूर बना कर रखा। सिंचाई प्रबंधन की बात करा तो कपास की फसल में आवश्यकता के हिसाब से आपने सिंचाई करनी चाहिए। ज़्यादा या कम पानी दोनों ही अपनी फसल खातर हानिकारक हुए हैं। इनके बात करें आपा उर्वरक प्रबंधन के ऊपर तो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की जिकी भी अनुशंसित मात्रा है बापा टेम टेम पर आपकी फसल में देता रहा और जरूरत होने पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव भी आपा ने अपनी फसल में करता रहना चाहिए। इस सारी प्रक्रिया में अगर आपा सब में ज़्यादा जरूरी और मूल चीज़ के बारे में बात करें तो जब भी अपना बड़ बेला हुआ है और आपा नई फसल की तैयारी में हुआ हमेशा आपा ध्यान रखा कोई भी फसल लगाने पहले आपा माटी जांच जरूर करवावा। माटी जांच कराया हूँ आपने अपने खेत की वर्तमान स्थिति को ज्ञान हो जाए और किसा जरूरी तत्व है जिका अपनी जमीन का मा विद्यमान है और किसा तत्वों की कमी है बांगो आपने ज्ञान हो जाए और बिंगा हिसाब हुई आपा अनावश्यक कोई भी रसायन के ऊपर खर्चो ना करा और अपनी खेत की जिकी जरूरत है अपनी जमीन और फसल की जिकी जरूरत है बिंग आधार पर ही आपा आपने फसल में रसायन है वह दे दीवा। आगे चला कीट नियंत्रण की बात करें तो कपास में किए कई प्रकार का कीट लागे जिया धोलती माखी है माहू कीट है जैसिड है थ्रिप्स है गुलाबी सुंडी है आगे आपा नियमित निगरानी कर जरूरत के हिसाब नियंत्रण उपाय अपनाता रहा। रोग नियंत्रण की बात करा तो कपास में कई बार के है जड़ गलन रोग है उकठा रोग है या पत्ती धब्बा रोग है दिखाई देवे आपने तो इंग खातर आपा जितना भी रोगग्रस्त पौधा है बाने हटा गए और तुरतापुरत उचित उपचार अपनी फसलों खातर आपा कर देवा। इंग अलावा फेरोमेन ट्रैप और पीलोजी को चिपचिपा ट्रैप को भी आपा प्रयोग कर सका हाँ जिका में है कि कीटा की निगरानी और नियंत्रण खातर आपा फेरोमेन ट्रैप और येलो स्टिकी ट्रैप वो लगावा तो अपना खातर काफ़ी फायदेमंद रहे। संतुलित वृद्धि प्रबंधन भी आपने जरूर करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा बढ़वार होने पर के है कि कृषि विशेषज्ञ है बाऊँ आपा जरूर सलाह लेवा और बांगी सलाहूँ वृद्धि नियंत्रक को भी आपा उपयोग कर देवा। बढ़वार हुए भाई लोगों बा इसी होनी चाहिए जिकाऊँ आपने किसान भाई ने फसल की आखिरी जिकी स्टेज आवे बै टाइम पर फायदों मिल रहे हैं। फसल की नियमित जिकी तुड़ाई है बिंगो भी आपने ध्यान रखना है जब नरमा कपास का टिंडा पूरी तरीके खुल जाए तो समय पर आपने तुड़ाई करनी चाहिए गिल्ली अवस्थामा अपध्यान राखा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: गीतों पहला भाई लोगों खेती पाती की आप बात करा हाँ। अब आपने किसान परिवार की बात करा तो खेती पाती के अलावा पशुपालन के माध्यमों भी अपना किसान भाई आपकी जिकी दैनिक आय है बिना बढ़ान को प्रयास करता रहे। और आपस अगला जाना भी यहाँ का अपना देश में पशुपालन है जिको वो कृषि को एक महत्वपूर्ण अंग है। गाय भैंस और कई प्रकार का दुधारू पशु किसान परिवार की आय को प्रमुख स्रोत है। ज़्यादा दूध उत्पादन पशुओं को अच्छो स्वास्थ्य है आ सब बातों को ध्यान रखने खातर बांगी उचित देखभाल जरूरी है। संतुलित आहार स्वच्छ वातावरण नियमित बांगो स्वास्थ्य प्रबंधन ऐसी सब चीज़ों को आप ध्यान रख के दुधारू पशुओं की जिकी उत्पादकता है बिना बढ़ा सका हाँ। अगर आप बात करें कि आप दुधारू पशुओं की देखभाल करा हाँ तो ब्यू के है दूध उत्पादन में आपने काफ़ी बढ़ोतरी देखने में मिले। पशु स्वस्थ रहे सामान्य तौर पर देखा तो पशु बीमार कम पड़े और रोगों को प्रकोप भी ऊपर कम हो। प्रजनन क्षमता जिकी है बा भी टाइम के सागे बढ़े और पशुपालक भाइयों की जिकी दैनिक आय है बा भी बढ़ने लग जाए। दुधारू पशुओं की अगर आप देखभाल करें तो भी मापा ने की चीज़ों को ध्यान रखना है।

सबसे पहले तो आपने एक संतुलित और पौष्टिक आहार बने खुआनो है। दुधारू पशुओं ने हरियो चारो, सूखो चारो और दाणो ए सारा संतुलित मात्रा में आपने खुआना चाहिए। आहार गमा प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन और ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। अगर एक संतुलित आहार की आप बात करें जिसको पौष्टिक भी हो और पशुओं खातर सारी जिकी शरीर की जरूरत है बने पूरी कर देवे, तो इमें आवे बरसीम, ज्वार, बाजरो, मक्को ए सारा जिया हरे चारा में आ जाए। भूसो और सूखो चारो, खली, चोकर और दाना को मिश्रण, इंगे सागे सागे खनिज मिश्रण और नमक। बिंग बाद आपा बात करा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था। कोई भी आपा ठाण बना रखियो है या पशुओं को पानी पीन को जिको भी स्थान बना रखियो है, तो वो हर टाइम पर स्वच्छ होना चाहिए और पशुओं ने आपा स्वच्छ और ताजो पानी ही पीने वास्ते उपलब्ध करावा। विशेष तौर पर दूध देने वाला जिका पशु है बने पानी की आवश्यकता साधारण पशु की तुलना में ज़्यादा पड़े है, तो आप ध्यान रखा कि जिद भी आपा बने पानी पियावा एकदम साफ सुथरो और ताज़ा पानी आपा बने पियावा। जिकी भी पशुशाला आपा बांगे खातर बना रखी है या आपा बनानी चाहवा, तो बिंग खातर आपा ध्यान रखा कि साफ सुथरी, सूखी और हवादार पशुशाला आपा बने उपलब्ध करवावा। गोबर और गंदगी की नियमित आपा सफाई करवाता रहा जिकाऊँ रोगाणुओं का विकास है वो ज़्यादा ना हुए। दूध निकालता टाइम भी आपा ध्यान रखा कि हमेशा दूध निकालन को टाइम है वो निश्चित होना चाहिए। दूध निकालन पहले और बाद में पशु के थना ने अच्छी तरीक़ों साफ पानी धो के साफ कर लेवा। स्वास्थ्य प्रबंधन पर चर्चा करा तो के पशुओं को समय समय पर आपा टीकाकरण जरूर करावा और कोई भी बीमारी का जब आपने लक्षण दिखाई देने लग जाए तो तुरंत आपा पशु चिकित्सक को संपर्क करा और जियाँ वे बतावे, जियाँ वे दवाई देवे भी हिसाब में आपा पशु को इलाज जरूर करावा। पशुओं ने प्रतिदिन जठ तक संभव हो सके कुछ टाइम खातर आपा खुल्लो छोड़ा ताकि बाने पर्याप्त व्यायाम करने भी मिल सके। जिका भी आपने ज्ञापन पशु है बांगी आपा विशेष देखभाल करा क्योंकि गर्भावस्था के दौरान के पशुओं ने पौष्टिक आहार, आराम और उचित चिकित्सा सुविधा आपने प्रदान करनी चाहिए। कई बार देखा आपा दुधारू पशुओं में कई प्रकार का रोग फैल जाए जिकाऊ के कि पशु परेशान होने लग जाए। मुख्य रोगों की बात करा तो खुरपका, मुंहपका का रोग आ गयो, गलघोटू रोग आ गयो, लंगड़ो बुखार है, थनेला रोग है या और भी कोई प्रकार को कृमि रोग है, तो आ रोगों की रोकथाम खातर नियमित टीकाकरण जरूरी है। अगर आपा अपने पशुओं ने संतुलित आहार देवा, नियमित टाइम पर वांगू दूध काढ़ा, तनाव मुक्त राखा बने, हमेशा पीण वास्ते साफ सुथरो, स्वच्छ और ताजो पानी उपलब्ध करावा, खनिज मिश्रण और नमक खुआवा और हरा चारा की जिकी पर्याप्त पर्याप्त व्यवस्था रखा, तो पशुओं को जिको दूध उत्पादन है वो टाइम के सागे बढ़ने लग जाएगो। पर इंग में आपा ने कुछ सावधानियां रखनी भी जरूरी है। जी हाँ, आपा कदे भी पशु ने फफूंद युक्त या सड़ो चारो ना खुआवा, पानी जद भी पिलावा साफ सफाई को ध्यान रखा, पशु की भी तरीकों गंदो पानी ना पीवे। अगर कोई भी पशु ईसो है जिको बीमार हो जाए तो बिना बाकी पशुओं आपा अलग रखा, पशुशाला में नियमित तौर पर साफ सफाई बनाकर रखा, क्योंकि दुधारू पशुओं की जिकी उचित देखभाल आपा करांगा तो बाऊ के है स्वास्थ्य भी अच्छो रहेगो, दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। संतुलित आहार, स्वच्छ पानी, नियमित स्वास्थ्य जांच और साफ सुथरा वातावरण के माध्यमों के है पशुपालक भाई ज़्यादा फायदों प्राप्त कर सके। तो इंग खातर आपा वैज्ञानिक ढंग इस्तेमाल कर गए दुधारू पशुओं की जिकी देखभाल करा तो आपने ज़्यादा फायदों देखने मिले। बड़ा कार्यक्रम आगे की तरफ और सुनवा थाने एक रागनी लो सुनो सा।

0: बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: संदेश से पहला भाई लोगों सुनिया पा रागनी बात करा अपने कने आज दो मंडियां का बाजार भाव पूर्ति होया है। शुरुआत करा सूरतगढ़ मंडी। सूरतगढ़ मंडी में भाई लोगों आज कणक बिकी 2421 रुपयाओं ले गए 2541 रुपया कुंटल। सरसों का भाव रहा 6736 रुपयाओं ले गए 7221 रुपया कुंटल। ग्वार बिक्यो आज 5460 रुपयाओं ले गए 5660 रुपया कुंटल। जैतसर मंडी में भाई लोगों सरसों बिक्की आज 7059 ले गए 7257 रुपया कुंटल। कणक का भाव रहा 2375 ले गए 2605 रुपया कुंटल। ग्वार बिक्यो आज 5462 रुपया कुंटल और चीना का भाव उगड़ा 5300 रुपया कुंटल। इन अलावा भाई लोगों आज अपने मौसम विज्ञान केंद्र जयपुरों मौसम की भी अपने कने सूचना है। आज एक परिसंचरण तंत्र उत्तर पूर्वी राजस्थान और एक अन्य दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्र के ऊपर बनेडो है। आज भी बीकानेर अजमेर जयपुर भरतपुर जोधपुर कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ भागा में मध्यमू तेज मेघ गर्जन और आंधी लगभग 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाबू हल्की मध्यम बारिश के साग और कठे कठे ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। बादल गर्जन के सागे सागे आंधी बारिश की जिकी गतिविधियां हैं आपने राज्य के कुछ भागा में आगामी एक हफ्ते तक जारी रहने की प्रबल संभावना है। 3 और 4 जून ने एक और बैक टू बैक जिको पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय होने पर एक बार फिर बीकानेर जयपुर भरतपुर और अजमेर संभाग का कुछ भाग में तेज आंधी और बारिश की गतिविधियां में एक बार फिर बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। इन दौरान कठे कठे तेज अंधड़ लगभग 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार सागे सागे बारिश होने की भी संभावना है। आंधी बारिश के प्रभाव आगामी एक हफ्ता तक अधिकांश भागा में अधिकतम तापमान 45 डिग्री नीचे दर्ज होगी और हीट वेव राहत बने रहने की प्रबल संभावना है। आई भाई लोगों अपने आगामी कुछ दिन आगे मौसम की जानकारी। अब चला आपा कार्यक्रम के अंतिम गीत की तरफ। लो सुनो सा

भाई लोगों, आज खातर तो इतोई। अब ये गीत कैसा आ गई, आज को चौपाल कार्यक्रम अठे संपन्न करणगी। भाई राजन ने आज्ञा दियो। राम राम सा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 7:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

निगाहें, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन थी। लीजिए एक बार फिर से सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज को। फिल्म का नाम है नगीना, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 8 बजने वाले हैं और ये वक्त होता है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से है।

आपने अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों को सुना। गीत समीर का और संगीत नदीम श्रवण का था। दोस्तों, आज की फिल्म का नाम है साजन। साजन 1991 में बनी हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है, जिसका निर्देशन लॉरेंस डिसूजा द्वारा किया गया है और सलमान खान, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित इसमें मुख्य भूमिकाओं में है। रिलीज होने के बाद फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी और इसका संगीत भी खूब सराहा गया था।

आपने एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ को सुना। दोस्तों आप सुन रहे हैं साजन फिल्म के गीत आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल से। इस फिल्म के निर्देशक लॉरेंस डिसूजा और निर्माता सुधाकर बोकाड़े हैं। इस फिल्म को लिखा है रीमा राकेश नाथ ने और मुख्य जो भूमिकाएं हैं उनमें संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, सलमान खान, लक्ष्मीकांत पेरडे, कादर खान, डीमा

ठाकुर और अंजना मुमताज हैं। इस फिल्म के सभी गीतों को समीर ने लिखा है और संगीत नदीम श्रवण का है। 30 अगस्त 1991 को ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसके सभी गीत

एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ को आप सुन रहे थे। दोस्तों, आप फिल्म साजन के गीत सुन रहे हैं। इस फिल्म के सभी गीतों को समीर ने लिखा है, संगीत नदीम श्रवण का है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी और 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी साजन।

श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे साजन फिल्म के कुछ गीत। मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी व अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। WTT फिडर टेबल टेनिस में दिव्यांशी भौमिक ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए महिला सिंगल्स का खिताब जीता। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता, फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 22वीं एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी। भारतीय पुरुष टीम ने U18 हॉकी एशिया कप में कोरिया को 4-1 से हराया और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से शुरू। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत का नेतृत्व करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं टेबल टेनिस से, जहां दिव्यांशी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। WTT फिडर टेबल टेनिस में भारत की दिव्यांशी भौमिक ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए महिला सिंगल्स का खिताब जीता। आइए जानते हैं उनके प्रदर्शन के बारे में।
1: दिव्यांशी भौमिक 15 वर्ष की आयु में टेबल टेनिस प्रतियोगिता में सिंगल्स खिताब जीतने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं। विश्व रैंकिंग में 211वें स्थान पर काबिज दिव्यांशी ने फाइनल में चीनी ताइपे की विश्व नंबर 38 ये ही तियान को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से पराजित किया। वे जापान की स्टार खिलाड़ी मीवा हरिमोतो के बाद WTT फीडर सर्किट में महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली दुनिया की दूसरी सबसे युवा खिलाड़ी मानी जा रही हैं। दिव्यांशी ने अपने शानदार अभियान में एक और स्वर्णिम उपलब्धि जोड़ते हुए महिला डबल्स वर्ग का स्वर्ण पदक भी जीता। दिव्यांशी ने सिंड्रेला दास के साथ मिलकर जापान की साची आओकी और कोकोना मुरामात्सु की जोड़ी को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराया। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: अब सीधे रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर, जहां डिफेंडिंग चैंपियन ने टाइटल डिफेंड करते हुए शानदार जीत दर्ज की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL का खिताब लगातार दूसरी बार जीता, फाइनल में RCB ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। आइए सुनते हैं विशेष शुक्ला की खास रिपोर्ट।
2: फाइनल मुकाबले में टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस 8 विकेट पर 155 रन ही बना सकी। पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले गुजरात के सलामी बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन इस अहम मैच में फ्लॉप रहे। सुदर्शन 12 और गिल 10 रन बनाकर आउट हुए। GT की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर एकमात्र सफल बल्लेबाज रहे। सुंदर ने नाबाद 50 रन की पारी खेली। रसिक सलामडार ने 27 रन देकर सर्वाधिक 3 विकेट लिए।

0: 156 रन के लक्ष्य के जवाब में वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली ने आरसीबी को तेज शुरुआत दी और पांचवे ओवर के भीतर 62 रन बना दिए। अय्यर ने ताबड़तोड़ 32 रन की पारी खेली। 89 रन पर 3 विकेट गवा देने के बाद विराट कोहली ने एक छोर संभाले रखा और 25 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह विराट का आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक था। विराट ने 42 गेंदों पर 3 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 75 रन की पारी खेलकर आरसीबी को 5 विकेट से जीत दिलाने और लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। कोहली ने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर आरसीबी को चैंपियन बनाया।
1: He finishes off in style with a 6. It's back-to-back titles for RCB. They won it after 18 years. They win it in the 19th.
0: आरसीबी ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बनाकर खिताब जीता। फाइनल में विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद विराट कोहली ने कहा कि मैं इसी तरीके से मुकाबले को अपनी टीम के लिए जिताना चाहता था।
2: Well, Virat, many congratulations yet again a player of the match. You saved the best for the last.
3: It's stuff that you dream of. I've thought of this moment many times that you know once when we win the IPL I should be standing there.

0: ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बनाकर खिताब जीता। फाइनल में विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद विराट कोहली ने कहा कि मैं इसी तरीके से मुकाबले को अपनी टीम के लिए जिताना चाहता था।
1: Well, विराट, many congratulations yet again a player of the match. You saved the best for the last.
2: It's stuff that you dream of. I've thought of this moment many times that you know once when we win the IPL I should be standing there hitting the winning runs and tonight it was possible. So yeah, just a dream day for us and as I mentioned straight after the game as well, we just felt really relaxed coming to the game today and really confident about how we wanted to go about our game and what kind of team we have and you, that gives you confidence to just you know see any kind of situation through. But yeah, in a chase I felt really comfortable out there knowing exactly what to do.
0: 2025 में RCB ने पंजाब किंग्स को हराकर IPL का पहला खिताब जीता था। रजत पाटीदार की कप्तानी में बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार खिताब जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के एलीट ग्रुप में शिरकत कर ली है।
2: So this one is for you again, RCB fans. Isalanu Cup Namdu.
0: वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। प्रतियोगिता में सबसे अधिक 776 रन बनाने के लिए वैभव को ऑरेंज कैप से भी नवाजा गया। वैभव ने सबसे अधिक 72 छक्के लगाए और उन्हें सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन के साथ साथ इमर्जिंग प्लेयर का भी अवार्ड मिला। अवार्ड लेने के बाद वैभव ने कहा, इस प्रतियोगिता से मेरे खेल में बहुत सुधार हुआ है।
3: इस सीजन सर प्रेशर के गेम में कैसे खेलना है, अपने गेम को कब किस तरीके से चेंज करना है? हर गेम में आप एक मोड से नहीं खेल सकते, आपको गेम के सिचुएशन को रीड करके खेलना पड़ेगा और टीम का क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग खेलना पड़ेगा। तो ये चीज काफी सीखने को मिला प्लेऑफ्स के गेम्स में भी।
0: 17 वर्ष तक IPL खिताब का इंतजार करने वाली RCB का यह लगातार दूसरा खिताब है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उत्कृष्ट प्रदर्शन भारत के युवा एथलीटों के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस उपलब्धि से आने वाले वर्षों में और भी भारतीय युवा इस खेल में भाग लेंगे। गृह मंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि खिलाड़ियों की उपलब्धि भारत की अपार खेल प्रतिभा का प्रमाण है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेल क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है और युवा शक्ति ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भारत ने हांगकांग में आयोजित हुई 4 दिवसीय प्रतियोगिता में 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया। चीन 14 स्वर्ण, 9 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ पहले, वहीं जापान 5 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर रहा। और अब रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। इंडोनेशिया के जकार्ता में कल से इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत का नेतृत्व करेंगे।
5: सिंगापुर ओपन जीतने के बाद आत्मविश्वास से भरपूर भारत की स्टार पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी कल से इंडोनेशिया ओपन में भाग लेंगे। भारतीय जोड़ी अपने पहले मुकाबले में 4वीं वरीयता प्राप्त मलेशिया के कांग खाई शिंग और आरोन ताई से भिड़ेंगे। पुरुष डबल्स में भारत की दूसरी जोड़ी MR अर्जुन हरहरन अमसा करुणन का मुकाबला मलेशिया के नूर मोहद अजरीन, आयुष अजरीन और तान वी क्यूंग से होगा। महिला सिंगल्स में PV सिंधु अपने अभियान की शुरुआत बुसानन आंग बांग रुंग फान से खेलेंगी। अन्य भारतीय खिलाड़ियों में मालविका मंसूर का सामना थाईलैंड की 7वीं वरीयता प्राप्त पोन पावी चोचुवोंग से होगा, जबकि उन्नति हुडा को पहले दौर में जापान की विश्व की नंबर 12वीं खिलाड़ी नोजुमी ओकुहारा जैसी मजबूत प्रतिद्वंदी मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले मुकाबले में इंडोनेशिया के अलवी फरहान से भिड़ेंगे। वहीं किदांबी श्रीकांत का सामना जापान की युशी तनाका से होगा। आयुष शेट्टी का मुकाबला चीन के वेंग होंग यांग से होगा, जबकि HS प्रणॉय आयरलैंड के एनट के खिलाफ चुनौती पेश करेंगे। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो के साथ रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद इंडोनेशिया की फेब्रियाना द्वीपुजी कुस्मा और मेलिसा ट्रियास पुष्पिता सारी के साथ खेलेंगी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
4: अब बात कर लेते हैं हॉकी की। पुरुष अंडर 18 हॉकी में आज एशिया कप के पूले मुकाबले में कोरिया को 4-1 से हराकर भारत ने शानदार जीत दर्ज की। कप्तान केतन कुशवाहा के 2 गोल किए। कुशवाहा ने 3rd और 36वें मिनट में गोल दागे, जबकि वरिंदर सिंह ने 5वें और शाहरुख अली 54वें मिनट में 1-1 गोल

0: किया। भारत अब 3 जून को अपने अंतिम पूले मुकाबले में चीनी ताइपे से भिड़ेगा। अब रुख कर लेते फुटबॉल की ओर। भारत ने महिला SAFF फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय टीम ने कल गोवा के मारगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-0 से हराकर चैंपियनशिप के ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं 11 जून से शुरू होने वाला फीफा फुटबॉल विश्व कप का प्रसारण भारत में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड करेगा। जी ने टूर्नामेंट से 10 दिन पहले आज फुटबॉल की विश्व संचालन संस्था फीफा के साथ 8 साल की भागीदारी की घोषणा की। रांची में आयोजित हुई फेडरेशन कप में 100 मीटर फ्रीस्टाइल दौड़ स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर ने कल मन की बात के 134वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने प्रतियोगिता में हुई कठिनाइयों और संघर्ष के बारे में जाना।
1: सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। 100 मीटर रेस में दौड़ना कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
2: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी।
3: सर, मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है, तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर, ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा, देखिए मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
3: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर वीर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है, एंड हमारे हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया, फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं, तो दोस्ती भी चाहिए सर। बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कॉम्पिटिशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है, और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप

0: देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
4: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
5: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
3: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
6: I am confident that this comprehensive agreement
7: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
6: Of our shared future.
3: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है।

सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों की विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई

0: किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481, 011-2371-7117 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
5: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू।

0: of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. That is all in the news at 9. Good night.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। आज के सुगम संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की गाई हुई कुछ गजलें।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज के कलाकार थे पंकज उधास। मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब हमारा अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से होगा।

0: डॉक्टर रूपाली मलिक। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है। श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331-4812-371-7117 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप इस पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमाशंकर वाजपेयी रायबरेली से। जी रमाशंकर जी।
1: जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि लू से बड़ी पुरानी कहीं सुनते आए हैं कि लू में प्याज बहुत ही बचाव करता है और अन्य कोई भी साधन जिस तरह से लू से बचा जा सके वो कृपया बताए।
2: रूपाली जी। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि लू के समय में प्याज से बहुत बहुत ही बचाव मिलता है, तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, बट फिर भी जो हम पुराने समय से ये जो धारणाएं चलती आ रही हैं इनमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। तो आप प्याज जैसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना फ्लूइड इनटेक यानी कि पीने की जो तरल पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लू के समय में बचने के लिए है एक एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक यानी कि तरल पदार्थ का सही मात्रा में आपको आपको लेना है, और इसके अलावा आपको गर्म जगह से बचना है। मतलब अगर घर से बाहर जितना हो सके उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, घर जितना हो सके घर के अंदर रहना है, तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। खाने पीने में आपको जो भी आपको अभी मौसमी फल जो मैडम ने अभी बताए तरबूज लीची आम इनका सेवन करना है, और तरल पदार्थ का आपको पर्याप्त मात्रा में सेवन करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है।
0: डॉक्टर रूपाली, आपने कहा कि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लिक्विड लेना चाहिए, तो किस तरह के तरल पदार्थों को लेना ठीक रहेगा ताकि जो शुगर का जो लेवल है वो बॉडी में वो कंट्रोल्ड रहे?
2: आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप आम रस आम पन्ना जो कि बहुत गर्मी के समय में बहुत ही एक कॉमन एक कूल ड्रिंक माना जाता है, बेल का रस, इस तरह के जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं आप उनको प्रिपेयर कीजिए, आप उनको लीजिए, और आप नॉर्मल अपना पानी लीजिए। और अगर आपको डिहाइड्रेशन क्रैम्प्स जैसी अगर फीलिंग आती है तब आप ORS का जो मेडिकल ORS जो अवेलेबल है उसका सेवन भी कर सकते हैं।
0: श्रीकांत झागड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी क्या पूछना चाहते हैं आप?
3: हेलो
0: जी
3: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: मैं श्रीपाद जाफरा बोल रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र से। मेरा मेरा दो सवाल है। ये बहुत अधिक गर्मी में जैसे थकान है, चिड़चिड़ापन है, बेचैनी लगती है, तो उसी स्थिति में क्या करना चाहिए? और दूसरा ये था कि ऐसे में मतलब ब्लड प्रेशर वालों ने क्या सावधानियां रखनी चाहिए, खासकर ना हाई बीपी वालों ने अपने।
1: हाँ जी, देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि जो हाई बीपी के जो मरीज होते हैं वो बहुत समय इस तरह की कुछ दवाइयों पे होते हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स। एंड वो जो लोग होते हैं दे आर प्री डिस्पोज टू हैव हीट स्ट्रोक, मतलब उनको हीट स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है या कोई और आपको बीमारी से अगर आप ग्रस्त हैं, कोई भी क्रॉनिक आपको डिजीज़ है, COPD, एस्थमा, ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को धूप से, गर्मी से बचा कर रखें, क्योंकि इसमें आपका जो कार्डियो रेगुलेटरी जो मैकेनिज़म्स हैं वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह के मरीज़ को खास ध्यान रखना है।

0: ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि जो हाई बीपी के जो मरीज़ होते हैं वो बहुत समय इस तरह की कुछ दवाइयों पे होते हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एंड वो जो लोग होते हैं दे आर प्री डिस्पोज टू हैव हीट स्ट्रोक, मतलब उनको हीट स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा
1: ज्यादा
0: होते
1: होते
0: हैं.
1: हैं।
0: तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है या कोई और आपको बीमारी से अगर आप ग्रस्त हैं, कोई भी क्रॉनिक आपको डिजीज़ है, COPD, एस्थमा, ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को धूप से, गर्मी से बचा कर रखें, क्योंकि इसमें आपका जो कार्डियो रेगुलेटरी जो मैकेनिज़म्स हैं वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के मरीज़ को खास ध्यान रखना है.
1: डॉक्टर पटनायक, आपसे हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि हीट वेव यानी लू क्या है।
2: देखिए, ये हीट वेव जो लू बोलते हैं बहुत भाषा में, तो हमारा जो समर टाइम में, जो ज़्यादातर कि अप्रैल मई जून, थोड़ा सा जुलाई पार्ट में भी, तो क्या टेम्परेचर जो तापमान है, ये तापमान है उसका साधारणतः नॉर्मल से कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो ये तो गर्मी का महीना है, गर्मी का महीना है तो टेम्परेचर साधारणतः ज़्यादा रहता है। लेकिन जो नॉर्मल होता है हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी, 30 साल का एवरेज जो उसको नॉर्मल बोलते हैं, उससे भी थोड़ा ज़्यादा होता है, कंटिन्यूसली कुछ दिन के लिए प्रिवेल करता है, तो वो हम उसको एक हीट वेव डिफाइन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम डेफिनेशन अगर हम करेंगे तो 40 डिग्री से अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो, एंड उसका जो नॉर्मल से 4.5 से 6.4 तक अगर हो गया तो हीट वेव हम बोलेंगे। अगर उस 6.4 से भी ज़्यादा डिपार्चर, जो कि नॉर्मल से ज़्यादा इतना हो गया, तो सीवियर हीट वेव बोलेंगे। तो ये एक डेफिनेशन के हिसाब में हम, जैसे कि नॉर्मल से अगर इतना दायरा है तो करते हैं। और एक डेफिनेशन ये भी है कि अगर 45 डिग्री हो गया तो हम उसको हीट वेव कर देंगे।
1: लेकिन क्या ये अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग होता है? जैसे
2: नहीं,
1: कोस्टल एरियाज के लिए अलग होगा, प्लेन्स के लिए अलग होगा.
2: हाँ, कोस्टल एरिया के लिए थोड़ा सा है कि कोस्टल एरिया में 37 डिग्री होने के बाद भी हमने हीट वेव करते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में जो ह्यूमिडिटी का थोड़ा प्रभाव रहता है ना, तो इससे कारण ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो अगर तापमान बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी जो एयर का ह्यूमिडिटी होता है कोस्टल एरिया में, उसको मिलता है, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा कोस्टल एरिया जो 40 डिग्री, 37 डिग्री से ज़्यादा होना वो कोस्टल एरिया है।
1: और प्लेन्स के लिए?
2: प्लेन्स के लिए 40 डिग्री से ज़्यादा होना।
1: एक और श्रोता है हमारे साथ, राजू लवानिया, आगरा उत्तर प्रदेश से. राजू जी
3: जी मेरा नमस्कार डॉक्टर साहब को, दीदी आपको भी
1: नमस्कार.
2: नमस्कार
3: डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे घरेलू नुस्खों में तो खैर जैसे आम का पना है, बेल का शरबत है, या नींबू पानी है, ये तो खैर पुराने जो नुस्खे हैं वो तो है ही, लेकिन मेडिकल साइंस में हीट वेव का परमानेंट ट्रीटमेंट और इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट क्या है?
0: जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है कि आप जो गर्मी वाली जगह है उससे दूर रहें. तो अगर कोई किसी को भी इस तरह के लक्षण अगर आते हैं तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को फटाफट से गर्मी वाली जगह से दूर मूव करना है. उसके बाद हमें उनको ठंडे पानी की पट्टी करनी है, और साथ में अगर पॉसिबल है तो एक पंखा करना है. आप थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके और पंखा करें. पंखा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे इवेपोरेशन से जब हीट उड़ती है तो उससे और ज़्यादा आपका हीट लॉस होता है, ज़्यादा देर की अगर आप खाली उस पर ठंडा कुछ रख देंगे. उसके अलावा आपको पंखा भी ऊपर से करना है, तो पंखे के आगे थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के थोड़ी ठंडी पट्टी करना. तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट इलाज है जो कहीं भी किया जा सकता है.
1: लू लगने पर क्या लक्षण दिखते हैं?
0: देखिए, लू के लक्षण बहुत तरह के हो सकते हैं. माइल्ड लक्षण हो सकते हैं जिसमें कि आपको हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, स्किन रैश हो सकते हैं, जिसको कि नॉर्मल भाषा में हम प्रिकली हीट बोलते हैं या घमोरियां बोलते हैं. तो उसमें आपको आपको थोड़ा पाउडर डाल लेना है, कुछ एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिनिक दवाई जैसे कि सिट्रोजीन वगैरह है उसका आप यूज़ कर सकते हो, और पानी आपको अच्छे से पीना, और ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं, और हल्के रंग के हल्के कपड़े, ढीले ढाले कपड़े वो आपको पहनने हैं. तो ये हुआ हीट रैश के लिए. हीट क्रैम्प्स में आपको हो सकता है कि थोड़ा अकड़न जकड़न महसूस हो, आपको हाथ पैर सीधा करने में दिक्कत लगे, मांसपेशियों में आपको जकड़न महसूस हो, तो इस स्थिति में आपको फ्लूइड्स का ध्यान रखना, ये डिसइलेक्ट्रोलीमिया जो हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस जो हो जाता है हीट के वजह से, वो उससे होता है, तो उस समय आपको मेडिकल जो ORS है

0: आप ना केवल जो बाकी तरल पदार्थ जो कि हम रूटीनली लेते हैं उसके अलावा आप मेडिकली जो ORS मिलते हैं, मेडिकल ORS, आप उनका सेवन करें अगर आपको हीट क्रैम्प जैसा सिस्टम हो।
1: गंभीर लक्षण क्या होते हैं?
0: गंभीर लक्षण हो सकते हैं आपको हीट एग्जॉशन या फिर हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक सबसे सिवियर वैरायटी है जिसमें कि आपको बेहोशी, आपका एक तो जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो 40 डिग्री कोर बॉडी टेम्परेचर, जो कि आपका रेक्टल टेम्परेचर आइडली होना चाहिए, ना कि सरफेस सतह वाला नहीं, कोर बॉडी जिसमें कि रेक्टल टेम्परेचर आइडियल माना जाता है, वो 40 डिग्री से ज़्यादा अगर आपका है तो वो, प्लस आपका कुछ भी बेहोशी का लक्षण, ऑल्टर्ड सेंसोरियम जिसको बोलते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इस तरह का कोई भी लक्षण है तो ये आप सबसे सिवियर फॉर्म जो होता है हीट स्ट्रोक का उसमें गिना
1: तो
0: जाता।
1: अगर ऐसी स्थिति हो तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले तुरंत
0: बिल्कुल
1: क्या सहायता उपलब्ध कराई जा सकती
0: आप
1: है?
0: फटाफट आप उनको ठंडी जगह, तो हल्के कपड़े, ढीले कपड़े और गीला करके, कपड़ा गीला करके पंखा उसके ऊपर करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इवन अस्पताल में भी जो सबसे पहला ट्रीटमेंट दिया जाएगा यही दिया जाएगा। हीट स्ट्रोक दो तरह का होता है, क्लासिकल और एक्सर्शनल। तो क्लासिकल में आपको यही सबसे इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव मेथड है। जो एक्सर्शनल होता है उसमें बहुत बार हम इमर्शन भी बोलते हैं कि आप उसको ठंडे पानी में इमर्स कर दो, कि कपड़े सब हटा के किसी ठंडे पानी के टब में लिटाना, वो एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक में होता है। बट जो आजकल जो मिलता है उसमें क्लासिकल हीट स्ट्रोक है और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर कोई बाहर हैवी वर्क कोई कर रहा है तो उसमें क्लासिकल और एक्सर्शनल दोनों तरह का हीट स्ट्रोक हो सकता है।
1: चौधरी महेंद्र सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। जी महेंद्र जी।
2: जी कनक जी नमस्कार।
1: नमस्ते।
2: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार।
0: धन्यवाद
2: जी। मैं चाहता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में कितना पानी पिए और कितना पानी जरूरी है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अच्छा एक स्वस्थ व्यक्ति पानी की पूर्ति हेतु बोतल लगवाता है, यानी डिस्टिल्ड वाटर कहें या कुछ भी कहें उसे, तो आवश्यक है या नहीं?
0: ये देखिए, एक किसी भी अडल्ट व्यक्ति की जो बॉडी होती है उसका 70-80% जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पानी है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर जो अडल्ट व्यक्ति है कम से कम उसको 8-10 ग्लास पानी डेली पीना है। ये नॉर्मल सिचुएशन की बात है, लगभग एटली कम से कम आपको 8 ग्लास पानी पीना है, क्योंकि आपका 70-80% जो आपका बॉडी का वेट है वो उसमें वाटर है, तो उसका जो रिप्लेनिश करने के लिए आपको कम से कम 2 लीटर आपको पानी पीना है। बट अगर हम आज के समय की बात करें, जब हम लू लगने की बात कर रहे हैं, तो उस समय आपको थोड़ा सा अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 से 3 लीटर आपको पीना ही है। इसके अलावा डिपेंडिंग कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, वहाँ कितनी गर्मी है, अगर आपको लगता है बहुत पसीना आ रहा है, बहुत वाटर लॉस है, तो आप इसके अतिरिक्त भी पानी पी सकते हैं। बट नॉर्मल स्थिति में 3-3.5 लीटर से ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वरना उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
1: और ये भी ध्यान रखना होगा कि हम पानी पीने के नाम पर या लस्सी पीने के नाम पर बहुत ज्यादा मीठी चीजें
0: बिल्कुल मीठा तो अतिरिक्त बिल्कुल ना लें, और पैक्ड इसलिए जूसेस जो है वो अवॉइड करें। नेचुरल अगर आप लें वो फिर भी
1: जो हमारे पुराने लस्सी, छाछ, बेल का शरबत, ऐसी चीजें ज्यादा अच्छी होती है। नींबू पानी
0: बिल्कुल।
1: डॉक्टर पटनायक, कई बार वार्म नाइट और वेरी वार्म नाइट की भी चेतावनी जारी की जाती है, तो ये कब किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है?
3: देखिए साधारण क्या होता है, तो दिन का तापमान तो हमेशा समर में हाई रहता ही है, तो उससे जो हम हीट वेव का डेफिनेशन करते हैं दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिन के साथ मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, हीट वेव हुआ, उसके बाद नाइट जब आता है तो नाइट में भी क्या होता है, जो नाइट का टेम्परेचर तापमान है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो ज़्यादा हानिकारक होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर में रहते हैं, ये दिन का भी गर्मी झेल लिया, उसके बाद जब नाइट का भी टेम्परेचर, अगर उनके पास एसी नहीं है जो यूज नहीं करते, तो उसको हम वार्म नाइट कहते हैं। तो उसमें तो मिनिमम टेम्परेचर जो है आपका नाइट का टेम्परेचर वो भी अगर 4.5 to 6.4 हो गया तो उसमें वार्म नाइट कर दे। तो वार्म नाइट जो है नाइट टेम्परेचर में, समर के टाइम में, लेकिन नाइट टेम्परेचर में अगर अधिक हो गया तो उसको वार्म नाइट कहे,
1: और वो भी खतरनाक
3: होता है।
1: धर्मवीर लाइन पर है हमारे साथ दिल्ली से। जी धर्मवीर जी।
4: हेलो नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ।

0: हमारे एक्सपर्ट को भी नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे हम गांधीनगर मार्केट में रहते हैं और दुकान हर प्रत्येक दुकान में एसी चलते हैं, एक एक दो दो, तो एक तो उनकी भी हीट निकलती है, मार्केट में निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी बच्ची से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग सावधानी क्या बरतें हैं, जाना भी जरूरी होता है। और दूसरा मेरा ये पूछना है कि डायबिटीज मरीजों को शिकंजी और ORS का घोल लेना ठीक है कि नहीं। और तीसरा एक और पुरानी एक बात याद आती है, बुजुर्ग कहते थे, जैसे कहते थे कि लोहा लोहे को काटता है, ऐसे जो गर्मी गर्मी को मारती है, बैलेंस बराबर करती है। अगर जितनी ज्यादा गर्मी हो आप चाय पी ले कॉफी पी ले तो बैलेंस बना रहता है, कोल्ड ड्रिंक लेना ठीक रहता है कि नहीं, कृपा करके।
2: हाँ जी, देखिए कोल्ड ड्रिंक लेना तो नहीं ठीक है ना, बट जो आप नेचुरल जो चीज़ें हैं जो आपको वैसे ठंडक प्रदान करती हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप बेल रस पी सकते हैं या फिर आप नींबू पानी ले सकते हैं, तो जो नेचुरल चीज़ें हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, तो जो तरल चीज़ें हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। इसका मतलब कोल्ड ठंडा लेने से आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक लेने से आपकी शरीर को कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें नहीं अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है, वो अवॉइड करनी है। और जो आपने कहा शुगरी ड्रिंक, क्या डायबिटीज़ के मरीज़ को हम दे सकते हैं? नहीं, वो अवॉइड करनी है। नींबू पानी अगर आप देंगे उनको तो आप बिना चीनी के दीजिए, नमक वाला नींबू पानी दे सकते हैं, सॉल्टेड नींबू पानी दे सकते हैं, या आप उनको लस्सी दीजिए, छाछ वाली जो होती है, जो कि नमकीन लस्सी होती है, तो उनको उस कोकोनट वाटर आप दे सकते हैं।
3: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम लू से सुरक्षा और सावधानियों पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DR पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप NewsON AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित उपाध्याय बिहार से। अमित जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी
4: हाँ हाँ जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। मैं सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ, अमित उपाध्याय। मैं ये मेरा ये सवाल था कि जैसे कि पिछले हम लोग देख रहे हैं तुलना करें और पिछले साल के और हर एक साल से तुलना करें तो गर्मी का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो जैसे कि अब पहले टेम्परेचर हाई, अभी मई में ही टेम्परेचर इतना 45 प्लस जा रहा है, 48 तक आ जा रहा है। तो हम ये मेरा ये प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर जो जिसका शरीर में कुछ नहीं है जांच करने पर भी, वो भी चलते चलते कभी कभी गिर जाते हैं अचानक से, उनका भी बेहोशी वह कुछ वैसे हो जाता है, तो हम लोग इसमें क्या और ऐड कर सकते हैं? जैसे कि खूब पानी पीना जो भी डॉक्टर साहब बताते हैं वो सब हम लोग करते हैं, इसमें और क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें? जी
2: देखिए, जब भी आप बाहर निकलें कुछ एक आप छतरी लें या कपड़ा लें, गमछा जैसा कि कहा जाता है, गीला करके लें तो और भी अच्छा है। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना। देखिए नॉर्मल व्यक्ति में भी ये चीज़ हो सकती है, जिसको पहले से कोई बीमारी है वो ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड है क्योंकि उसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। एंड स्पेशली जैसे कि कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो लेते हैं ख़ास तौर से, वो लोग बहुत ही प्रीडिस्पोज्ड होते हैं इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस के लिए, हीट स्ट्रोक के लिए, क्योंकि उसमें पूरा टेम्परेचर रेगुलेशन उनका डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो लोग खास ध्यान रखें। और जो नॉर्मल व्यक्ति है तो बाहर निकलते समय ये सब प्रिकॉशंस लें, फ्लूइड्स लें, तो इतना ही है आप कर सकते हैं। और अगर कोई सिम्टम आपको लगता है हीट एग्जॉशन का या हीट स्ट्रोक का, तो इमिडिएटली ठंडी जगह पे मूव करके गीला कपड़ा रख के आप हवा कर सकते हैं।
3: तो हीट वेव किसी को भी प्रभावित कर सकता है, पर जैसा कि आपने बताया कि जिनको शुगर है या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें इसका ज्यादा खतरा रहता है। और कौन कौन से ऐसे वर्ग है, मतलब कैटेगरी क्या क्या है जिनके लोगों को इसका खतरा?
2: किसी भी क्रॉनिक डिजीज का अगर कोई मरीज है, कोई अस्थमा है, कोई COPD है, कोई हार्ट डिजीज का पेशेंट है, कोई कैंसर कीमोथेरेपी पे है, ये सब भी प्रीडिस्पोज्ड है। बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ये सभी जो हाई रिस्क ग्रुप्स में ही आते हैं।
3: तो प्रेग्नेंट लेडीज के जो आपने बात की उसमें क्या असर पड़ता है उस पर, उसके होने वाले बच्चे पर हीट वेव का?
2: देखिए जब आप हीट, अगर आप हीट से एक्सपोज्ड है तो आपको पेरिफेरल वेजो डायलिटेशन होता है, यानी कि आपकी जो पेरिफ्रीज की जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट आपके बॉडी से बाहर निकल सके। उसकी वजह से थोड़ा वॉल्यूम जो है आपका बाकी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई, उसके लिए ब्लड कम हो जाता है। तो ऐसे में जो बच्चा है उसका ब्लड सप्लाई भी कम हो सकता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम कोशिश करें ऐसी गर्मी की जगह

0: से बचा कर रखें, और फ्लूइड फिर से वही बात है, तरल पदार्थ का जितना हो सके सेवन करें।
1: महाराष्ट्र से कोल्हापुर से विजय कुमार स्वामी है हमारे अगले श्रोता।
2: हाँ जी
1: जी,
2: हाँ कनक दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते।
2: हाँ दीदी को भी नमस्ते, सर नमस्ते।
0: नमस्ते।
2: हाँ विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवा तहसील शिवर जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैं।
1: जी जी।
2: हाँ मेरा सवाल यह है कि अभी दिन रात पंखे जो चालू है
1: जी,
2: इसका हमारे पर शरीर पर कुछ असर हो सकता है क्या?
1: पंखे का असर तो गलत नहीं होगा।
0: नहीं, पंखे से फायदा है, बट अगर 40 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है तब केवल पंखा चलाने से फायदा नहीं है। तब आप एसी चला के एसी का टेम्परेचर 27 डिग्री रख के साथ में आप पंखा चलाएंगे तो उससे और आपको 4 डिग्री कम महसूस होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एसी का टेम्परेचर 15, 20, 22, 21 नहीं रखना है, 27 रखना है
1: जी,
0: ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉसिबल। और साथ में आप थोड़ा फैन तब चलाएंगे तो वो और मदद करेगा। और जैसे कि पहले वो मैं पूछ रहे थे कि हम सब जगह एसी चल रहा है, इतना गर्म है, तो और हम क्या कर सकते हैं? आपको जितना हो सके अपने छतों पे ग्रीन प्लांटेशन करना चाहिए, उससे थोड़ा सा आपका जो है
1: घर का तापमान थोड़ा
0: तापमान जो है कंट्रोल रहेगा।
1: और घर के आसपास भी पौधे लगाने चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: हमारे एक श्रोता ने व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछा है डॉक्टर पटनायक कि आईएमडी की एडवाइजरी और मौसम संबंधी अपडेट आम लोग कहां से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
3: देखिए आईएमडी जो,
1: ये मयंक शेखर जी, मैं आपको नाम बता दूं, मयंक शेखर मिश्रा हैं, ये वाराणसी से उन्होंने पूछा है।
3: हाँ वाराणसी भी बहुत गर्मी जगह है और वहाँ भी बहुत लस्सी ये सब जो इसलिए भी चलता है। तो देखिए जो हम जो आईएमडी जो देता है सूचना जो हीट वेव का अर्ली वार्निंग जो बोलते हैं हम, वो बहुत सारे मैकेनिज्म में हम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहला तो एक है कि हम हमारा वेबसाइट में देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वेबसाइट नहीं करते अपडेट, मान लीजिए वेबसाइट नहीं देते। दो देन दूसरा हमारा जो ऐप वगैरह है उसमें भी हमारे इसका जानकारी देते हैं। ऐप के साथ साथ हम आजकल क्या कर रहे हैं, हर दिन एक वीडियो बनाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं उसको अपलोड किया जाता है, तो उसमें आपका पुरका जानकारी जो यूट्यूब में अपलोड किया जाता है तो जो जो लोग उसको भी एक्सेस करते हैं उसमें से मिल रहा है। आपको ऐप से मिलेगा, व्हाट्सअप में मिलेगा, देन सोशल मीडिया फेसबुक आईएमडी का अगर कोई है जिनका अकाउंट अगर करेंगे तो उसमें मिलेगा। तो ये तो ऑल इंडिया लेवल में भी है और हमारा जो रीजनल सेंटर पर जैसे कि वाराणसी से उन्होंने बताया भाई साहब, तो लखनऊ में हमारा जो रीजनल मेट सेंटर्स है वहाँ से जो रीजनल और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इंफॉर्मेशन, उनका वेबसाइट एक अलग होता है, उनका जो डाटाबेस है जहाँ जहाँ मैसेज जाता है उनका सारा सब उन्होंने रखा है। तो हर तरह का मीडियम से हम लोगों को प्रेषित करते हैं।
1: इन्होंने ये भी पूछा है कि दिन के कुछ वो विशेष समय क्या है जब लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए इतनी भीषण गर्मी में?
3: ठीक है, ये दिन में जब टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो लगभग अराउंड 2:30 के आसपास, 3:30 इसी में होता है दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर। लेकिन सुबह से गर्मी शुरू हो जाता है, गर्मी टेम्परेचर भी बढ़ता है और दूसरी बात क्या होता है कि जब नीचे का ज़मीन भी गर्म हो जाता है वहाँ से भी टेम्परेचर ऊपर रेडिएट होता है। तो ये दोनों का जब ये होता है तब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो आपका इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग उसी टाइम में 2:30 के बाद आता है, जबकि पहला 12 बजे मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं आता है, 2:30 के बाद 3 बजे अराउंड उसमें आता है कि जब दोनों तरफ से रेडिएशन आता है। तो इसलिए उसी टाइम में नेचुरली जब डायरेक्ट सनलाइट है 11 बजे के बाद एटलीस्ट डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा तेज है उस टाइम अवॉइड करना चाहिए। जब मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है, जब गर्मी धरती के नीचे गर्मी हो गया, गर्म हवा भी नीचे से फेंक रहा है, तो वो भी 3-4 बजे तक तो अवॉइड करना,
1: मतलब 11 से 4 तक अवॉइड करना चाहिए जहां तक हो सके। अगला सवाल है रवि जवालिया जी का हरिद्वार से।
4: नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार
4: जी, मैं रवि जवालिया जड़मीरपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ और सभी सभी विशेषज्ञ को और आपको भी नमस्कार बोल रहा हूँ जी, और आप सभी को और मेरे सभी श्रोता गणों को भी अभिभावक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी।
1: जी आपको भी।
4: हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कोरजेशन मशीन से गत्ता कंपनी में काम करता हूँ, वो मशीन थोड़ी हीट जनरेट करती है तो मुझे वहाँ पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी शायद गर्मी का एहसास होता ही है सभी को, तो मैं अपने

0: जम से बात खत्म, मुझे पता है मैं श्रोताओं से भी जान मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि क्या मुझे उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए मैम जी।
1: ये जहाँ काम करते हैं वो मशीन से गर्मी निकलती है काफी, तो क्या सावधानी इनको बरतनी चाहिए?
2: तो जितना हल्का कपड़ा हो सके आप उतना हल्का कपड़ा पहने, और फिर वही अगर एक गीला कपड़ा आप सिर के आसपास लगा सकते हैं तो वो आई थिंक आपको थोड़ा मदद करेगा। और लिक्विड चीजें लेते
1: ये तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बार बार बता रही हैं कि आपको जितना हो सके उतना तरल पदार्थ लिक्विड लेना है,
2: और आसपास कहीं पंखा है तो आप पंखा
1: बीच बीच में आप जा सकते हैं वहाँ। डॉक्टर रूपाली, बहुत छोटे बच्चे जो अभी अपनी स्थिति नहीं बता सकते हैं, ऐसे बच्चों के अभिभावक कैसे समझ पाएंगे कि बच्चे को लू लग गई है?
2: जी बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तो बच्चों को गर्मी के समय जैसा सर ने बताया 11 से 4 के बीच में आप घर से बाहर ना भेजें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा लू लगने का रिस्क होता है। और बच्चों को हमें बहुत इंश्योर करना है कि वो कम से कम 8 गिलास पानी ज़रूर पिए, क्योंकि इस समय हो सकता है बच्चा पानी कम पी रहा है, तो हमें उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों का फ्लूइड इंटेक ठीक रहे, 11 से 4 के समय वो बाहर ना निकले। और बाकी अगर लगता है कि बच्चा कुछ भी सुस्तीपन दिखा रहा है,
1: जैसे बहुत छोटा बच्चा, बिल्कुल जो बहुत, का
2: बिल्कुल
1: है,
2: बिल्कुल सुस्तीपन, दूध नहीं पीना अगर बच्चा इतना छोटा है, बिल्कुल अगर दूध नहीं पीना या बुखार होना तो इमिडिएटली आपको किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी को विजिट करना है और उनकी मदद लेनी है। और बच्चों को भी ढीले कपड़े, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हल्के फुल्के हवादार ढीले कपड़े।
1: अगला सवाल है राकेश जी का शिमला से।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
3: जी, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल तो ये कि जब गर्मी बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, वो कितना घातक है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे कि अब हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में गर्मी भी बढ़ रही है, तो इसमें मैदानी क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा? ये मेरे दोनों सवाल है।
1: जब हिल स्टेशन पर गर्मी बढ़ने लगी है तो प्लेन्स पे और भी गर्मी होगी, इनका ये पूछना है कि क्या असर पड़ेगा प्लेन्स पर?
4: देखिए, जैसा कि हिल स्टेशन में थोड़ा सा हमारा ये है कि हिल स्टेशन में थोड़ा तापमान प्लेन स्टेशन से थोड़ा कम रहता है, ठीक है, तो इसलिए जैसा कि प्लेन स्टेशन से भी लोग जाते रहते हैं, तो बट आजकल क्या होता है, क्लाइमेट चेंज है तो हिल एरिया में भी जो जैसे कि पहला इतना गर्मी नहीं होता था, आजकल हिल एरिया में भी गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए तो हिल स्टेशन के लिए तो गर्मी आपका धीरे धीरे भी हो रहा है, पहले जो इतना नहीं हो रहा था इसलिए, लेकिन प्लेन एरिया में तो आपका उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्लेन एरिया में तो थोड़ा गर्मी का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो ऑलवेज थोड़ा सा ज़्यादा है हिल स्टेशन के ऊपर, तो इसलिए हिल स्टेशन में जब हो रहा है तो उसका प्रभाव प्लेन में नहीं है, लेकिन उसका प्लेन में भी रहेगा, जब हिल में हो रहा था तो प्लेन में भी रहेगा।
1: डॉक्टर पटनायक, हीट एक्शन प्लान्स क्या है?
4: हाँ, हीट एक्शन प्लान क्या होता है कि पहला क्या हो रहा था, जब ये एक्शन प्लान नहीं होता था तो हीट क्या धीरे धीरे किल करता है, तो हीट वेव के कारण भी धीरे धीरे ग्रेजुअली डेथ जो है नंबर ऑफ डेथ बढ़ता गया, तो गुजरात साइड में पहला ये महसूस हुआ कि बहुत सारे जो हीट रिलेटेड डेथ बढ़ रहा है, तो देखा गया कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत अनजान के कारण लोग क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं जानते थे, इसलिए बहुत एक्सपोजर होता था, क्या लेना है उनको पता नहीं था, तो इसलिए लोग थोड़ा डेथ 2010-12 में ऐसा हुआ, तो उसमें हीट एक्शन प्लान जब स्टार्ट हुआ उसमें क्या होता है, एक जो जो भी राज्य में जहां हीट रिलेटेड ये सब इफेक्ट रहता है तो उन्होंने वन बाय वन थोड़ा हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो पहला मान लो गुजरात में हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो हीट एक्शन प्लान में क्या होता है, ये बहुत सारे म्यूनसिपल लोग जो होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, IMD के जो अर्ली वार्निंग देते हैं और ये बाकी जो एडवाइजरी इशू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पानी, ये सारे जो है एक तरीके से रहता है, तो पहला उनको क्या होता है, एक हमारे डिपार्टमेंट से अगले 5 दिन अगले 7 दिन के लिए तापमान कैसा रहेगा वो एक पहला इन्फॉर्मेशन हो गया, तो वो इन्फॉर्मेशन के बाद फिर म्यूनसिपल जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, अगर पानी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर ज़्यादा लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो उनको फिर मेडिकल अटेंशन देना जाता है।
1: डॉक्टर पटनायक, अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का, हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DR पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक, आप दोनों का स्टूडियो

0: खेल जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवाएंगे कबड्डी खिलाड़ी कृष्णा वृद्धा से संजय दत्त की बातचीत। यह आकाशवाणी नागौर केंद्र का अंशदान है।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल के माध्यम से हम आपको बहुत सारे मनोरंजक कार्यक्रम के साथ साथ ज्ञानवर्धक जानकारियाँ भी प्रदान करते हैं, और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम आपको उन प्रतिभाओं से भी मुखातिब करवाएं जिन्होंने और न केवल प्रदेश का बल्कि देश का भी नाम रोशन किया है। हम उन प्रतिभाओं को भी तराशते हैं जिन्होंने खेलों में भी अपना मुकाम हासिल किया है। इसी कड़ी में आज हमने आपने आकाशवाणी के स्टूडियोज में आमंत्रित किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्लेयर कृष्णा वृद्धा को। हम आपको बता दें, कृष्णा वृद्धा ने अक्टूबर 2025 में बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स में इनकी पूरी टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो आज बातचीत इनसे की जाएगी। सबसे पहले तो आकाशवाणी की स्टूडियोज में कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सर।
1: तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें। जैसा कि आपको पता है कि नागौर जैसी ऐतिहासिक, जिसमें मीराबाई वीर तेजाजी जैसी पृष्ठभूमि रही है, तो उस जैसे शहर से और आपने इतने बड़े लेवल पर एक मुकाम हासिल किया और नागौर ज़िले का नाम रोशन किया, तो वो सफ़र कैसा रहा? आपने कहाँ से मतलब कबड्डी को एज ए खेल चुना और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कैसे ये सफ़र रहा आपका?
2: मैंने पहले अपने गांव से स्टार्ट किया था खेलना, ऐसे पेरेंट्स का सपोर्ट और गांव में प्रैक्टिस की, उसके बाद यहाँ नागौर में प्रैक्टिस करने आई। अभी यहाँ पे मुझे 2 साल हो गए सोनजी सर के पास प्रैक्टिस करते हुए।
1: कृष्णा जी, हमें बताइए कि खेलों के प्रति आपका रुझान कैसे पैदा हुआ और कबड्डी को ही आपने क्यों चुना? क्योंकि महिलाओं के लिए एथलेटिक्स एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
2: हमारे गांव में लगभग कबड्डी खेलते थे सभी, तो हमारे भैया वगैरह सब कबड्डी खेलते थे, तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया।
1: तो कहने का मतलब यह है कि आपके घर में एक खेलों का वातावरण रहा और एक पृष्ठभूमि मतलब घर में ही तैयार हो गई थी कि खेलों में जाना ही है। हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व, जब आपने पहली बार भारत की जर्सी पहनी थी, तो वो लम्हा कैसा था, वो पल कैसा था, आपको कैसा महसूस हुआ?
2: हर एक खिलाड़ी का सपना होता है अपने देश के लिए खेलना, तो बहुत अच्छा लगा था उस वक्त।
1: और साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे, सबसे चुनौतीपूर्ण जो लम्हा आपका, जो कोई याद हो आपको, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जब खेल रहे थे, तो सबसे कठिन और विरोधी टीम कौन सी थी और आप लोगों ने, आपकी पूरी टीम ने किस तरीके से उस चुनौती को पार किया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की समस्याएँ आती हैं?
2: सबसे ईरान की टीम।
1: ईरान की टीम, तो ऐसा क्या स्ट्रेटजी आप लोगों ने प्लान की थी कि उससे आप ओवरकम हो पाए?
2: हमारे कोच वगैरह ने हमें पहले ही बता दिया था उनके बारे में, तो सबने मिलके एक साथ की और वो हो गया।
1: अच्छा, हम देखते हैं कि कबड्डी जो है कि एक परंपरागत खेल है, भारत में बहुत पुराने समय से कबड्डी खेला जा रहा है। आज के दौर में हम बात करते हैं, तो आज आप क्या देखती हैं कि कबड्डी में कुछ बदलाव आपको नजर आता है, किन टेक्निक्स का विकास हुआ है, किस तरीके से मतलब कबड्डी

0: डेवलप हुई है, क्योंकि पहली कबड्डी जो पहले हमारे परंपरागत पूर्वज लोग खेलते आ रहे थे और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कबड्डी है, क्या अंतर है?
1: अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले ये गेम सिर्फ ताकत का था, इस वक्त ये गेम दिमाग और स्किल का भी है। इसमें ताकत की ज़रूरत तो होती है, पर स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
0: स्किल जी, अब हम बात करते हैं कि नागौर में, आप नागौर से संबंध रखती हैं और नागौर से आपने ये सफ़र अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक तय किया था। नागौर में अगर खेल सुविधाओं की हम बात करें तो क्या मतलब आपका डेली रूटीन रहता है, और नागौर जैसे ज़िले में खेलों के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब किस तरीके का परिदृश्य है, क्या रुझान है लोगों का?
1: यहाँ पे हम स्टेडियम प्रैक्टिस करते हैं सर के पास, तो अच्छा सभी गेम्स हैं, बैडमिंटन है, जैसे कुश्ती है और ट्रैक वगैरह सब की व्यवस्था है, हैंडबॉल का भी है, सब चीज़ों का है। तो अभी भी स्टेडियम में हो रहा है काम, बन रहा है, जिम वगैरह सब है। कबड्डी की तो सभी सुविधाएं हैं, सभी गेमों की सुविधाएं मिलेंगी आपको।
0: जी बहुत अच्छी बात है। देखो नागौर में रूढ़िवाद और अंधविश्वास भी काफ़ी है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज बेटियां हर क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल कर रही हैं, तो आपको भी ऐसी कोई चुनौती का सामना करना पड़ा कि एकदम से ये खेलों में जा रहे हो आप?
1: नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं अभी तक।
0: साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे कि सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं खिलाड़ियों के लिए, प्रोत्साहन के लिए, कि उनको बहुत सारे संबल दिए जा रहे हैं, चाहे वो आर्थिक संबल हैं या फिर किसी भी प्रकार की सहायता दी जा रही है, तो उनको लेकर के आपका आपके क्या विचार हैं?
1: मैं अभी हमारे जैसे ये हुए थे तो उनके भी, उनके लिए भी दिया गया था हमें, जैसे कि अमाउंट मिला तो वो आ गया अभी। तो उनका जैसे एशियन गेम थे ना, उनका आ गया अभी, और सभी जैसे जूनियर वगैरह में मेडल वगैरह के फॉर्म भरे हैं तो वो अभी बाकी है।
0: कृष्णा जी, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि आप, जैसे कि आपका डेली रूटीन है, उसमें खिलाड़ियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनकी डाइट एक तो, और फिर उनकी लाइफस्टाइल और डेली रूटीन क्या है, वो बहुत मायने रखता है एक खिलाड़ी के लिए, क्योंकि इसमें एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है ताकि वो आपका फ्लो बना रहे खेल के प्रति। तो उसके लिए आप कितना समय देती हैं और क्या आपका डेली रूटीन रहता है सुबह से लेकर के शाम तक की, आपकी पूरी जो दिनचर्या का शेड्यूल है उसको बताएं?
1: सुबह हमारा ग्राउंड लगता है 5:30, 5:30 से हमारा 8:30 तक प्रैक्टिस होती है, जिम वो जाते हैं और ऐसे स्किल वगैरह भी करते हैं, और फिर दिन में रेस्ट, और शाम को लगता है हमारा ग्राउंड 5:30 से 7:30 के बाद ही ऑफ होता है।
0: तो इसमें आप किस तरीके से, आप किस प्रकार की डाइट लेते हैं, क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं वो थोड़ा बताएं?
1: जैसे जिम वगैरह करते हैं तो वहाँ पे तो हमारे वो ट्रेनर भैया सर हैं, तो वो करवाते हैं हमें जिम में सब, और जैसे हम खुद करते हैं तो सर हैं, सर करवाते हैं, सोनजी सर, और डाइट वगैरह तो सब यही जो बिदाम वगैरह ये सब लेते हैं।
0: एक और चीज़ आती है कि आप युवा हैं अभी और साथ साथ खेलों के साथ साथ पढ़ाई का भी हमें एक बैलेंस करके चलना होता है, क्योंकि एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है खेल के साथ साथ, तो इन दोनों चीज़ों में सामंजस्य कैसे बनाते हो, मतलब संतुलन कैसे? अभी फ़िलहाल आप क्या पढ़ाई कर रही हैं और खेल के साथ साथ आप पढ़ाई को कितना समय दे पाती हैं, क्योंकि आजकल युवाओं में इस सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर हम खेल पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमारी पढ़ाई छूट जाएगी, वो पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है, तो इन दोनों के बीच में संतुलन कैसे करते हो?
1: अभी तो मैं कॉलेज में हूँ सेकेंड ईयर, तो इतना टाइम तो नहीं मिलता, पर मिलता है तो करते हैं, कोशिश तो करते हैं।
0: अच्छा, जैसे कभी खिलाड़ियों को एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है कि खेल के दौरान उनको अक्सर चोट भी लग जाती है, तो इंजरी के दौरान किस प्रकार के चैलेंजेस आ जाते हैं, फिर आप कैसे मतलब अपने आप को वापस खड़ा करते हो, कैसे मजबूत रहते हो, उसके लिए क्या तकनीक अपनाते हो?
1: हम फिजियो वगैरह ये करते हैं पहले, और फिर तो रेस्ट जैसे हो गया तो फिर अगर फिजियो से नहीं हुआ तो फिर तो डॉक्टर वगैरह को दिखाते हैं, फिर अगर कुछ ज़्यादा हुआ तो फिर तो रेस्ट, फिर उसके बाद ही वापस करते हैं।
0: जी
1: रेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
0: राजस्थान कबड्डी एसोसिएशन, इसका आपने नाम सुना होगा। अब हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो इसका क्या रोल है, मतलब कबड्डी की जो प्रतिभाएं हैं राजस्थान में उनको तराशने में राजस्थान कबड्डी एसोसिएशन का कितना रोल रहा आपकी सफलता में?
1: राजस्थान कबड्डी एसोसिएशन का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि ये एक फेडरेशन है, फेडरेशन का रोल सब

0: महत्वपूर्ण है, तो वही सब करवाते हैं, टूर्नामेंट्स वगैरह उनके हिसाब से सब होता है। तो
1: तो हाल ही में बहरीन में जो आयोजित हुई थी अंडर 18 एशियन यूथ गेम्स में आपकी टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया था, तो इसके अलावा आप किन किन प्लेटफॉर्म्स पर और खेल चुकी हैं उसके बारे में भी बताएं।
0: मैं अंडर 18 से पहले भी बहुत सारे टूर्नामेंट खेल चुकी हूँ। सबसे पहले सब जूनियर खेला था, उसके बाद स्कूली 17 खेला जिसमें ब्रॉन्ज मेडल था, उसके बाद जूनियर खेला, उसके बाद फिर जूनियर खेला उसमें ब्रॉन्ज मेडल था, उसके बाद खेलो इंडिया, उसके बाद फिर जूनियर और अंडर 18 नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट और अंडर 18 इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट।
1: जी, तो मतलब आप कबड्डी से कब से जुड़े हैं वैसे?
0: मैं कबड्डी से यहाँ 2022 के बाद मैंने खेलना स्टार्ट कर दिया था।
1: तो इन 4 सालों के अंदर ही आपने इतनी जल्दी दो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिता में शामिल हो गए, तो कैसे अपने को एकदम से तैयार कर लिया?
0: ऐसे मैं खेलती थी पहले, पर ऐसे कोई ऐसे नहीं था कि कबड्डी में ही जाना है,
1: जी
0: सब खेलते थे तो मैं भी खेल लेती थी। तो मेरे जैसे गांव में प्रैक्टिस करते थे तो वहाँ पे हमारे सर थे रतन जी सर, उन्होंने हमें प्रैक्टिस करवाई, फिर ऐसे जूनियर वगैरह खेल लिए थे पहले ही, फिर यहाँ पे आई तो उसके बाद सर के पास प्रैक्टिस की, अच्छी प्रैक्टिस हुई तो इंडिया खेल लिए।
1: तो एक आम जो युवा है, मतलब जो अभी पढ़ रहा है या लिख रहा है, तो अगर वो खेलों में आना चाहता है तो उसको अचानक से अगर लग रहा है कि मुझे खेलों में जाना चाहिए, तो कैसे मतलब वो जुड़ेगा, उसके लिए क्या एक रोड मैप रहता है?
0: ऐसे अचानक से तो खेल में आना नहीं हो सकता, क्योंकि खेल उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, ऐसे डिसिप्लिन में भी रहना पड़ता है, तो अचानक से सब कुछ तो नहीं होता सर।
1: लेकिन शुरुआत मतलब कब उसको शुरू कर देना चाहिए कि हाँ इस ये मोमेंट है, या स्कूल में किस क्लास से या फिर किस एज ग्रुप
0: अगर ऐसे
1: से?
0: कोई बच्चा बचपन से खेल रहा है तो उसे तो स्टार्ट कर देना चाहिए, और अगर ऐसा है कि कोई बच्चा 11th 12th में स्टार्ट कर रहा है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं उस वक्त भी, जूनियर सब जूनियर स्कूली सभी में मिल जाना।
1: जी, अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे नागौर के जो युवा हैं, महिलाएं हैं जो आपके इस इंटरव्यू को सुन रही हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि खेलों में मतलब क्या भविष्य देखती हैं आप? क्या एक संदेश रहेगा आपका ओवरऑल कि उनको जुड़ना चाहिए, और जुड़ना चाहिए तो किस प्रकार से उनको जुड़ना चाहिए?
0: अगर खेलों से जुड़ना है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, और वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं खेलों से जुड़ने के लिए, कबड्डी में भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अभी लीग वगैरह हो रहे हैं, सभी टूर्नामेंट्स भी आते हैं, तो अगर गेम से जुड़ना है तो बहुत हैं, और अगर प्रैक्टिस करनी है तो भी यहाँ पे नागौर में तो अच्छी है, प्रैक्टिस होती है स्टेडियम में।
1: तो श्रोताओं, आज हमारे बीच थी कृष्णा विरदा। आपने हाल ही में जो बहरीन में अंडर 18 एशियन यूथ गेम्स हुए थे उसमें भारतीय टीम को गोल्ड मेडल हासिल कराया था। आपने न केवल नागौर का बल्कि राजस्थान, पूरे देश का नाम रोशन किया। आज आपने अमूल्य विचार हमारे आकाशवाणी की स्टूडियोज में हमारे साथ साझा किए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कबड्डी खिलाड़ी कृष्णा वृद्धा से संजय दत्त की बातचीत। ये आकाशवाणी केंद्र नागौर का अंशदान था।

0: अब हम आपको सुनवाते हैं शतरंज खिलाड़ी आशी उपाध्याय से गोपाल लखन की बातचीत।
1: श्रोताओं, खेल जगत कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक नन्ही सी शतरंज खिलाड़ी जिसका नाम है आशी उपाध्याय। आशी, आपका आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में स्वागत है, वेलकम।
2: धन्यवाद।
1: आशी, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इतनी छोटी हैं, शतरंज का शौक कैसे लग गया?
2: जब मैं 6 साल की थी तब एक दिन मेरी मम्मा मेरी बड़ी बहन को एक चैप्टर पढ़ा रही थी, नाम रोशन करने वाला बालक। वो विश्वनाथन आनंद सर पे था और उससे मुझे पता चला कि शतरंज भी कुछ होता है। उसके बाद मेरी मम्मा ने मुझे एक चेस बोर्ड ला के दिया, फिर जब मेरा इंटरेस्ट उसमें बढ़ने लगा तब मम्मा ने एक एकेडमी ज्वाइन कराई थी।
1: फिर आपको समझ में आने लगा कि कैसे खेला जाता है?
2: हाँ जी, मेरी मम्मा ने मुझे सबसे पहले सिखाया था।
1: तो मम्मा आपकी पहली टीचर है?
2: हाँ जी।
1: मतलब जो आपकी गुरु है, कोच, जिन्होंने आपको शतरंज के प्रति इंस्पायर किया है, उसकी तरफ मोड़ा है। जब आपने पहला मैच खेला था आशी, और आप कह रही हैं कि 6 साल की थी तब से आपने शुरू किया था, तो पहला मैच शायद 6.5-7 साल की उम्र में खेला होगा
2: जी।
1: बताइए कैसा रहा अनुभव?
2: मुझे याद है कि मैं जब पहली बार एक स्टेट टूर्नामेंट था जो कि जयपुर में था वो मैं खेल रही

0: थी तब मैं बिल्कुल बिगनर थी और मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं आता था, और मैं ऑब्वियसली हार गई थी, पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था पहली बार खेल के, और उसके बाद मैंने रेगुलर टूर्नामेंट्स खेले।
1: अच्छा, पहली बार जब मैच खेलने गई थी तो नर्वसनेस थी? जयपुर में हुआ था वो मैच?
0: हाँ जी, जयपुर में ही था और तब तो मैं बहुत ही छोटी थी।
1: कौन से मोहरों से खेलने का मौका मिला आपको?
0: ब्लैक।
1: ब्लैक। अच्छा, आशी, पहले मैच में हारने के बाद में फिर आपने देखा होगा कि काफ़ी चैलेंज हैं इसमें, आपको किस तरह के चैलेंज लगते हैं शतरंज के खेल में?
0: आपको हमेशा अपने ओपोनेंट से ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और ओपोनेंट के थ्रेट्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है, खुद भी अपने थ्रेट्स लगाने पड़ते हैं। अगर आप इतना अटेंटिव नहीं रहते हो तो हार सकते हैं।
1: हमने सुना है कि शतरंज को देखने के लिए ऑडियंस नहीं होती, जबकि और गेम्स में ऑडियंस होती है, काफ़ी शोरगुल होता है और वो उससे हम प्रभावित भी होते हैं, हमारे गेम में कुछ अच्छा हो जाए जैसे क्रिकेट या फुटबॉल, लेकिन चेस में ऐसा नहीं है, तो जो माहौल होता है बिल्कुल शांत पीसफुल होता है। पहला जो आपको कैसा लगता है बिना ऑडियंस के खेलना?
0: बिना ऑडियंस के खेलना थोड़ा बेटर होता है, क्योंकि चेस में आपको सोचना पड़ता है, तो ऑडियंस से जनरली आप डिस्टर्ब होते हैं।
1: जब आपको बाहर जाना पड़ा टूर्नामेंट खेलने, मम्मा साथ गए थे, पापा कैसे सपोर्ट मिला
0: हमेशा
1: परिवार
0: मेरी
1: का?
0: मामा साथ गई हैं ज़्यादातर, पापा भी कभी कभी कुछ टूर्नामेंट्स में मुझे लेके गए हैं, बट ज़्यादातर मेरी मामा साथ जाती हैं। कभी कभी मेरी सिस्टर भी जाती है, या फिर उसे काफ़ी सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, घर पे रहना पड़ता है। और हमेशा मेरे कोच नितुल सर ने बहुत सपोर्ट किया, वो भी साथ में टूर्नामेंट्स जाते हैं।
1: चेस खेलने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती है, अभ्यास बहुत करना पड़ता है, कोचिंग भी लेनी पड़ती है, ऐसे में आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती?
0: जी होती है, मैं स्कूल तो इतना रेगुलरली नहीं जा पाती हूँ, बट आई ट्राई टू स्टे इन टच विद स्टडीज़। मैं स्कूल के साथ साथ पढ़ाई करती हूँ, मैं स्कूल तो नहीं जा इतना जा पाती हूँ, बट घर पे पढ़ाई करती हूँ।
1: जैसे आपने बताया था शुरू में कि मम्मा एक किस्सा पढ़ा रही थी और जो नाम रोशन करने वाला बालक, और उसको सुनकर आपने चेस खेलने का निर्णय किया, तो मम्मा ने आपको ज़्यादा सपोर्ट किया, पापा भी उतना ही सपोर्ट करते हैं खेलने के लिए, या वो कहते हैं कि नहीं पहले एकेडमिक पढ़ाई पूरी कर लो?
0: नहीं, दोनों ही बिल्कुल सपोर्ट करते
1: दोनों
0: हैं।
1: सपोर्ट करते हैं। छोटे टूर्नामेंट से जब फिर बड़े टूर्नामेंट में गए आप, इंटरस्टेट अभी अभी आपने जीता है, कैसा रहा? ये बड़ा मैच था और काफ़ी सारा प्रेशर रहा होगा दिमाग पर।
0: हाँ जी, जब मैंने पहली बार नेशनल टूर्नामेंट खेला था तब तो मेरी कोई रैंक नहीं आई थी, बट जब मैंने सेकंड अपना नेशनल टूर्नामेंट खेला तब मैं 9 साल की थी, वो अंडर 9 नेशनल था, और तब मैं 4th आई थी।
1: फिर फोर्थ आने पर आपको कुछ अच्छी
0: हाँ
1: फीलिंग
0: जी
1: आई?
0: बिल्कुल, उसमें क्योंकि काफ़ी मुझे अच्छा उसके लिए
1: अच्छा, जब आपने मैच जीता फिर मम्मी पापा ने शाबाशी दी आपको,
0: हाँ
1: कुछ
0: जी
1: यूं लगा कि आज आशी ने बहुत बड़ा नाम किया है,
0: जी
1: क्या कहा?
0: जब मैं पहली बार स्टेट में मेडल लेकर आई थी, तब मैं अंडर 11 स्टेट में 2016 में सेकंड आई थी, और मेरा अखबार में पहली बार नाम आया था, तो मैं बहुत खुश हुई थी। तो मैंने मामा से कहा था कि देखो मैं भी नाम रोशन करने वाला बालक बन रही हूँ।
1: तो इस बात को लेके मम्मा बहुत खुश हुई
0: हाँ
1: है
0: जी
1: ना? अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि हमारा कोई रोल मॉडल होता है उस गेम से रिलेटेड, या कोई और भी हो सकता है, चेस को लेकर आपका कोई रोल मॉडल है, आदर्श
0: हाँ
1: प्लेयर?
0: जी मैंने स्टार्ट भी विश्वनाथन आनंद सर को देख के किया, और वही मेरे रोल मॉडल हैं।
1: क्या खासियत है उनमें?
0: इंडिया के तो वो बेस्ट प्लेयर हैं ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, और वो काफ़ी अटैकिंग खेलते हैं और मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ।
1: अच्छा, अटैकिंग खेलना भी एक आर्ट है इसमें शतरंज में, तो फिर डिफेंस भी होता होगा,
0: जी बिल्कुल होता है,
1: किस तरह से बचाते हैं अपने आप को?
0: ओपोनेंट की थ्रेट्स को रोकते हैं, उनको हम पे अटैक करने से रोकते हैं, और अपने थ्रेट्स लगाते हैं, उन पे काउंटर अटैक करते हैं।
1: सामने शतरंज की बिसात बिछी हुई है और सामने वाला खिलाड़ी अपनी चाल चल रहा है, ऐसे में उसके मन को पढ़ना, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये एक खिलाड़ी को आना चाहिए,
0: जी
1: किस तरह से पढ़ते हैं आप अपने विरोधी खिलाड़ी को?
0: जनरली ओपोनेंट की साइकोलॉजी उसकी मूव्स में दिख जाती है, क्योंकि मतलब अगर वो थोड़ा स्लो खेलता है या फिर थोड़ा अटैकिंग खेलता है, उससे पता चल जाता है कि वो डर रहा है या फिर वो कैसे खेल रहा है, उसके क्या प्लान्स हैं, वो किस साइड अटैक करने की कोशिश कर रहा है।
1: तो ऐसा नहीं लगता कि शतरंज एक साइको गेम है, मनोवैज्ञानिक,
0: हाँ
1: और
0: जी
1: काफ़ी सारी चीज़ें आपको माइंड में ही चलती रहती है कि इस तरह से मुझे अपना गेम बचाना है और इस तरह से अटैक करना है?
0: हाँ जी जी बिल्कुल, हमेशा हर गेम से पहले हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और हर गेम से पहले नहीं तो आपको एक जनरल अपनी जो सारी ओपनिंग्स वगैरह पहले से ही प्रिपेयर करके रखनी पड़ती है।
1: आशी, आपके कोच आपको किस तरह सिखाते हैं?
0: मेरे कोच मुझे ओपनिंग्स वगैरह प्रिपेयर कराते हैं, कई बार गेम्स से पहले भी चेंज करनी पड़ती है ओपोनेंट को देख के, उसके अलावा

0: मुझे जनरली वो मिडिल गेम, एंड गेम, इन सब के बारे में वो मुझे काफ़ी प्रिपेयर कराते हैं।
1: कहते हैं कि एक स्टूडेंट मतलब एक खिलाड़ी में और उसके कोच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, और
0: जी
1: कोच कभी कभी नाराज़ होते हैं, तो फिर हम उनको किस तरह से रिएक्ट करते हैं? अपने आप को एडजस्ट करने में टाइम लगता है आपको?
0: हाँ जी, कभी कभी सर डांट देते हैं तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब होती हूँ, बट इतना ऐसे कोई प्रॉब्लम
1: ऐसे में
0: नहीं
1: फिर
0: है।
1: मम्मी सपोर्ट करती है पापा, या कोच सर खुद ही आपको सपोर्ट करते हैं?
0: डिपेंड्स ऑन, कभी कभी मम्मा, जनरली सर का ही सपोर्ट करती है कि अगर सर डांट रहे हैं तो सही है।
1: क्योंकि कोच आपकी बेहतरी के लिए
0: हाँ
1: है।
0: जी
1: अच्छा, जब हम चूंकि अभी मैच खेल रहे हैं और अभी हमारी उम्र भी काफ़ी छोटी है, तो हम फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं कि मुझे चेस में ही आगे अपना करियर बनाना है, या मैं एकेडमिक कुछ अच्छा अचीव करके और किसी सर्विस में जाऊंगी। कुछ प्लान कर रखा है आपने? इसमें भी आपके मम्मी पापा कुछ हेल्प करते होंगे?
0: अभी तो मेरा चेस का ही है। मैं जब तक मेरा चेस में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं चेस को ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज करूँगी।
1: जब हार जाती हैं तो किस तरह रिएक्ट करती हैं?
0: अगर मैं कोई ऐसा लगता है मुझे मैंने अपना बेस्ट नहीं खेला, तो मैं अपने आप से नाराज़ होती हूँ। और उसके अलावा वैसे अगर ओपोनेंट ज़्यादा अच्छा खेल रहा है मुझसे, तो फिर यही है कि मैंने इतना अच्छा नहीं खेला।
1: कभी ऐसा हुआ एक आशी के आप जीत रही थी और जीतते जीतते हार गई?
0: हाँ जी, ऐसा बहुत बार होता है।
1: ये कैसे होता है? गलतियां करते हैं खिलाड़ी या कुछ और कारण होता है?
0: कई बार होता है कि आप जीत रहे हो, जीतते जीतते आपसे एक मिस्टेक हो गई। चेस में आप लास्ट में भी कोई भी मिस्टेक कर दो तो कभी भी हार सकते हैं। लास्ट मोमेंट तक कुछ डिसाइडेड नहीं होता, गेम किसी भी साइड जा सकता है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि आप हारते गेम भी जीत जाओ या जीतते गेम भी हार जाओ।
1: हर एक माता पिता चाहते हैं कि जब भी हमारे बच्चे खेलने के लिए जाएं किसी टूर्नामेंट में, तो हमेशा जीत कर आएँ। कोच का भी थोड़ा प्रेशर रहता है कि मेरा स्टूडेंट बेस्ट करे। जब आप खेलने जाती हैं तो प्रेशर में रहती हैं कि नहीं मुझे जीतना ही है, और अपने मम्मी पापा या अपने कोच के जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरना है, ऐसा कुछ प्रेशर रहता है?
0: कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, कि जीतना तो है, वो तो है ही, बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आप अपना अच्छा गेम खेलो। सर जो है वो मेरे, वो तो इसमें ज़्यादा फोकस करते हैं कि मैं गेम कैसा खेल रही हूँ, और रिजल्ट तो इम्पोर्टेंट है ही।
1: शतरंज के गेम में चूंकि प्रेशर बहुत रहता है, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए क्या आप कोई योगा या कोई मेडिटेशन इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ करती हैं?
0: नहीं, मैं ऐसे तो कुछ नहीं करती हूँ।
1: अच्छा, मम्मी और पापा के साथ में खुश रहती हैं, है
0: हाँ
1: ना?
0: जी
1: और शतरंज में अभ्यास करके ही आप अपने आप को टेंशन फ्री कर लेती हैं, ऐसा?
0: हाँ जी
1: चूंकि अभी तो आप खुद काफ़ी छोटी हैं, फिर भी हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। आपकी उम्र के जो जितने भी खिलाड़ी हैं उनके लिए क्या मैसेज करना चाहेंगी आप?
0: हर बच्चे में अपना अपना एक टैलेंट होता है, तो अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या किसी स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में, तो कोई और भी फील्ड चूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई में ही जाएं या किसी और पर्टिकुलर फील्ड में ही जाएं, अपनी पसंद की कोई भी फील्ड चुन सकते हैं।
1: अपने खेल में और अपने पढ़ाई में किस तरह बैलेंस करती हैं?
0: मेरी पढ़ाई में बैलेंस करने के लिए मेरी मम्मा और ट्यूशन टीचर्स मेरी हेल्प करते हैं, और स्कूल भी काफ़ी सपोर्टिव है। स्कूल के टीचर्स भी मुझे बता देते हैं कि ये पीछे से पढ़ाई में हुआ है, ये सब कवर करना है।
1: चलिए आशी, हम आपके लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप शतरंज में बड़ा नाम बने इंडिया का, और पूरे देश में अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, और वो जो आपने कहानी पढ़ी थी विश्वनाथन आनंद की, नाम रोशन करने वाला बालक, उसी की तरह आशी उपाध्याय भी शतरंज की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बने, नाम कमाए।
0: थैंक
1: आज आप
0: यू।
1: आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे शतरंज खिलाड़ी आशी उपाध्याय से गोपाल लखन की बातचीत। श्रोताओं, अब समय हो चला है, अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।

हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 10:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

किशोर कुमार की आवाज, जावेद अख्तर के बोल, आर डी बर्मन का संगीत और फिल्म का नाम सागर। लीजिए सुनिए ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज को आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन थी। फिल्म का नाम था राजा और रंक। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का एक और नगमा लता मंगेशकर की आवाज में।

अंतिम प्रस्तुति फिल्म चांदनी से लता की आवाज, आनंद बख्शी के बोल और संगीत शिवहरी का है।

0: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी व अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया।

0: दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन औंग लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर.एन. नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेड बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, both